फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी छिंदवाड़ा का प्रसारण है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 30वीं तिथि। तदनुसार 20 जून सन 2026 प्रातः के 5:57 होने ही वाले हैं। अब आरंभ होता है हमारा आज का प्रसारण।

ये आकाशवाणी छिंदवाड़ा है। प्रातः के 6 बजे हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

जीवन में हर व्यक्ति धन संपत्ति यश वैभव बल बुद्धि की लालसा रखता है। इसमें कुछ बुरा भी नहीं है। ये अभिलाषा तब अनुचित हो जाती है जब मनुष्य स्वार्थ के वशीभूत हो जाए। तात्पर्य यह कि जब तक मनुष्य अपने बल अपने धन और अपने ज्ञान को समाज के लिए उपयोगी नहीं बनाता उसका अर्जन व्यर्थ है। जो अपने धन बल बुद्धि को स्वयं को समाज के लिए मानवता के लिए समर्पित कर देते हैं वे अपने नाम और कर्म के साथ युगों युगों तक पूजे जाते हैं।

संसार में व्यक्ति की महानता उसके कर्मों पर आधारित होती है। यदि मनुष्य सत्कर्म करता रहता है, अपने जीवन को दूसरों के लिए समर्पित कर देता है, तो जीवन रहते ही लोग उसे इतना महान बना देते हैं कि वो उनका भगवान हो जाता है। ऐसे मनुष्य न केवल जीवन में बल्कि जन्म जन्म के लिए अमर और मानवता के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण बन जाते हैं।

मनुष्य के पास ही होती है, ठीक उसी तरह जिस तरह मृग की नाभि में कस्तूरी। जो मनुष्य अपनी इस शक्ति को पहचान पाते हैं वे असाधारण हो जाते हैं। ये संभव है केवल योग और ध्यान से।

आज की वंदना में सामूहिक स्वरों में देशगान के साथ आपने सुने पंडित राजन साजन मिश्र, जगजीत सिंह और श्रुति साडोलीकर के गाए भजन। आपका दिन शुभ हो, इसी मंगल कामना के साथ अब संपन्न होती है वंदना।

श्री रामचरित रूपी पवित्र मानस सरोवर के जल में अपने मन को स्नान करा और भवानी तथा शंकर का स्मरण करके गोस्वामी तुलसीदास ने रामकथा का प्रारंभ किया है। सर्वप्रथम पुण्यभूमि प्रयाग में दो श्रेष्ठ मुनियों भरद्वाज तथा परम ज्ञानी याज्ञवल्क का मिलन और संवाद वर्णित है। भरद्वाज मुनि प्रयागवासी हैं। माघ में जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब सब लोग श्रद्धा तथा आदर पूर्वक तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी स्नान के लिए आते हैं। एक बार जब पूरे मकर भर स्नान करके ऋषि मुनि अपने अपने आश्रम लौट गए तो भरद्वाज मुनि ने महर्षि याज्ञवल्क के चरण पकड़कर उन्हें अपने आश्रम में रोक लिया। परम ज्ञानी याज्ञवल्क से उन्होंने अपना ज्ञान प्रकट करते हुए अपनी शंका उनके सम्मुख रखी। हे मुनिवर, भगवान शिव समेत सभी देव मुनि जिन राम की उपासना करते हैं वो राम कौन है?

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। ये आकाशवाणी का छिंदवाड़ा केंद्र है। महेंद्र कपूर के स्वर में

0: महेंद्र कपूर के स्वर में अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। ये आकाशवाणी का छिंदवाड़ा केंद्र है। लीजिए अब सुनिए चिंतन।
1: धन कमाने की अभिलाषा हर व्यक्ति को होती है, होना भी चाहिए। घर गृहस्थी के लिए धन तो पहली आवश्यकता है। भारतीय संस्कृति में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को जीवन का लक्ष्य माना गया है। इन चारों में अर्थ की स्थिति धर्म के तत्काल बाद और काम से ठीक पूर्व में है। क्रम का यह निर्धारण बड़ा वैज्ञानिक है। अर्थ लक्ष्य चतुष्मी में से एक अलग होता हुआ भी सबको जोड़ने वाली एक योजक कड़ी है, क्योंकि धन से ही धर्म पूरा होता है और धन से ही सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति होती है। माता पिता के प्रति हमारी कितनी भी अच्छी कर्तव्य भावना क्यों ना हो, परंतु अर्थाभाव में चिकित्सा आदि संभव ही नहीं है। बच्चों को अच्छी शिक्षा देना हो तो पैसों की आवश्यकता है। समाज में सम्मान के साथ जीना हो तो अनेक सामाजिक कार्यों को संपादित करना होता है, जो आर्थिक संपन्नता से ही पूरे होते हैं। सुख दुख के कोई भी काम हो, अर्थ के बिना कुछ भी संभव नहीं है। इस तरह हमने देखा कि धन है तो बहुत ही महत्व की वस्तु, परंतु बिना परिश्रम के ये किसी के पास नहीं पहुंचता। धन चाहे नौकरी के द्वारा मिल रहा हो या व्यापार व्यवसाय के द्वारा, परिश्रम तो सभी में करना होता है। बिना मेहनत के कहीं कुछ भी हासिल नहीं होता, फिर धन तो बिल्कुल भी नहीं मिल सकता। मान लीजिए भाग्य से मिल भी गया तो उसकी रक्षा के लिए तो परिश्रम करना ही होगा ना। इसलिए तो शास्त्रों में बताया गया है कि निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घ सूत्रता, ये छह बातें मनुष्य को परिश्रम नहीं करने देती। इसीलिए इनसे सावधान रहना चाहिए। ये गुप्त शत्रु के समान छिपकर वार करते हुए विकास को रोक देते हैं। दीर्घ सूत्रता का मतलब है किसी भी कार्य को आज ना करते हुए कल पर टाल देना, कि अभी नहीं बाद में कर लेंगे। धीरे धीरे व्यक्ति आलसी होता चला जाता है और आलसी व्यक्ति का कोई भी काम समय पर पूरा नहीं होता। जब समय पर कार्य पूरा नहीं होगा तो मन में तरह तरह के भय उत्पन्न होने लगते हैं और मुंह छिपाने की स्थिति निर्मित हो जाती है। धीरे धीरे ये भय झुंझलाहट और क्रोध में बदलने लगता है। क्रोधी को समाज में सम्मान मिलने की तो बात ही छोड़ दीजिए, बल्कि उसे तिरस्कार ही मिलता है। परिणाम स्वरूप वो अकेला पड़ जाता है। अकेला व्यक्ति अपना ज्यादा से ज्यादा समय नशा करके या नींद लेकर काट देता है और जीवन का अधिकांश भाग व्यर्थ करता चला जाता है। इसलिए हम कोई भी काम करें, इन छह बुराइयों को अपने पास फटकने न दें, यही सफलता की।
0: अभी आप सुन रहे थे चिंतन। आलेख था डॉक्टर श्रीमती माया प्यासी का, वाचक स्वर था शैलेंद्र जोगी का। हम आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.2 MHz पर।

ये आकाशवाणी छिंदवाड़ा है। श्रोताओं, आज के शेष कार्यक्रमों में क्या खास है जानने के लिए लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण। अब से थोड़ी देर बाद 6:50 पर सुनिए हेलो छिंदवाड़ा। 7:20 पर होगा कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। 7:35 पर सुनिए सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गंगा। 8:30 पर फिल्म संगीत।

नमस्ते रूपा होगा दिन में 10:05 पर, जिसमें मन की बात का विषय होगा नारी शक्ति, कठिन परिस्थितियों में उम्मीद की किरण। चर्चा का विषय होगा योग और स्वस्थ जीवन। लोक संगीत का कार्यक्रम माटी की स्वर आप सुनेंगे दिन में 10:35 पर। साथ ही होंगे विविध भारती सेवा के कार्यक्रम दिन में 9 से 10 तक और 11 से शाम 5:30 तक। युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी होगा आज शाम 5:30 पर, जिसमें आज की बात का विषय होगा शरणार्थियों के जीवन से जुड़ी चुनौतियां। साथ ही होगा क्रम साहित्य सरिता, जिसमें बात करेंगे विक्रम सेठ की और सुनवाएंगे तरुणों की पसंद के गीत। आज शाम 6 आप सुनेंगे लोक संगीत का कार्यक्रम माटी के स्वर और फिल्म संगीत 6:30 पर। शाम 7:20 पर होगा ग्रामीण जनों का कार्यक्रम किसान वाणी, जिसमें आज की बात का विषय होगा इन विधियों से करें उर्वरकों का बेहतर प्रबंधन। चर्चा करेंगे सवा की उन्नत खेती पर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम मेरी पसंद आप सुनेंगे रात्रि 8 और गैर फिल्मी गजलें 8:30 पर। रात्रि 9 से 11 तक अनुप्रसारित किए जाएंगे विविध भारती सेवा के कार्यक्रम, जिनका अनुप्रसारण आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से किया जाएगा। तो श्रोताओ, ये थी आज के शेष कुछ खास कार्यक्रमों की जानकारी कार्यक्रम विवरण में। ये आकाशवाणी का छिंदवाड़ा केंद्र है FM 102.2 MHz पर।

0: श्रोताओं, आपको बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त आज दिनांक 20 जून 2026 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा हुगली पश्चिम बंगाल से वितरित की जाएगी। 20 जून तक सूचना समाप्त हुई।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
0: ये आकाशवाणी का छिंदवाड़ा केंद्र है। सुबह के 6:50 हुए हैं। लीजिए श्रोताओं, सुनिए कार्यक्रम हेलो छिंदवाड़ा। कार्यक्रम हेलो छिंदवाड़ा में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। लीजिए श्रोताओं, आज हेलो छिंदवाड़ा में सुनिए जिला जनसंपर्क कार्यालय छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से प्राप्त समाचार। किसान कल्याण वर्ष के अंतर्गत प्राकृतिक खेती कार्यशाला का आयोजन। किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्राकृतिक खेती को अपनाना जरूरी, यह कहा सांसद श्री साहू ने। किसान कल्याण वर्ष के अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र छिंदवाड़ा में प्राकृतिक खेती विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में किसानों को प्राकृतिक खेती के महत्व, इसके लाभ एवं कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त करने के तरीकों की जानकारी

की गई। कार्यशाला में मुख्य अतिथि सांसद श्री विवेक बंटी साहू रहे। इस अवसर पर श्री शेषराव यादव, महापौर श्री विक्रम अहके, पूर्व विधायक श्री नत्थन शाह कवरेती, श्री अजय सक्सेना सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं कलेक्टर श्री हरेंद्र नारायण, कृषि विभाग के अधिकारी तथा किसान उपस्थित थे। सांसद श्री साहू ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मंशा है कि किसानों की आय में वृद्धि हो। किसानों की आय तभी बढ़ सकती है जब खेती की लागत कम होगी और उत्पादन बेहतर होगा। इसी उद्देश्य से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये प्रसन्नता का विषय है कि छिंदवाड़ा जिले के किसान प्राकृतिक खेती की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जिले में लगभग 5000 एकड़ भूमि में किसान प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, जो एक सकारात्मक बदलाव है। कलेक्टर श्री हरेंद्र नारायण ने कहा कि वर्तमान समय में ये समझना आवश्यक है कि प्राकृतिक खेती क्यों जरूरी है। लगातार रासायनिक खाद एवं कीटनाशकों के उपयोग से सबसे पहले किसान और उनका परिवार प्रभावित होता है। प्राकृतिक खेती से जहां मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है, वहीं स्वास्थ्य के लिए भी बेहतर एवं सुरक्षित खाद्यान्न का उत्पादन होता है। उन्होंने उपस्थित किसानों से अपील करते हुए कहा कि कार्यशाला में प्राकृतिक खेती के संबंध में जो भी जानकारी एवं अनुभव प्राप्त करें, उसे अपने गांव एवं आसपास अन्य किसानों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि अधिक से अधिक किसान प्राकृतिक खेती के लाभों को समझकर इसे अपना सकें। कार्यक्रम में नगर निगम महापौर श्री विक्रम अहके एवं श्री शेषराव यादव ने भी प्राकृतिक खेती के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ये खेती की ऐसी पद्धति है जिससे किसान कम लागत में बेहतर उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं और भूमि की गुणवत्ता को लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं। कार्यशाला के दौरान प्राकृतिक खेती कर रहे किसानों ने भी अपने अनुभव साझा किए। किसान श्री राहुल वसूले एवं श्री संजय गुप्ता ने बताया कि प्राकृतिक खेती अपनाने से उनकी खेती की लागत में कमी आई है, आय में वृद्धि हुई है और खेतों की उर्वरता में भी सुधार हुआ है। उन्होंने अन्य किसानों से भी प्राकृतिक खेती अपनाने का आह्वान किया। कार्यशाला में कृषि विशेषज्ञों द्वारा किसानों को प्राकृतिक खेती की तकनीक, जैविक संसाधनों के उपयोग एवं इसके व्यवहारिक लाभों की विस्तार से जानकारी दी गई। न्यूमैटिक प्लांट से मक्का बुवाई का सफल लाइव प्रदर्शन कार्यशाला के दौरान कृषि अभियांत्रिकी विभाग द्वारा आंचलिक मक्का अनुसंधान केंद्र चंदन गांव में लैंडफोर्स कंपनी के सहयोग से न्यूमैटिक प्लांटर के माध्यम से 1 हेक्टेयर क्षेत्र में मक्का बुवाई का सफल लाइव प्रदर्शन किया गया। इस दौरान किसानों को आधुनिक यंत्रीकृत खेती की तकनीक, न्यूमैटिक प्लांट की कार्यप्रणाली, उपयोग विधि एवं इसके लाभों की जानकारी दी गई। इस अवसर पर श्री शैलेंद्र रघुवंशी, श्री मेर सिंह, श्री संदीप रघुवंशी, उपसंचालक कृषि श्रीमती सरिता सिंह, आंचलिक अनुसंधान केंद्र प्रमुख श्री आरसी शर्मा, परियोजना संचालक आत्मा श्री धीरज ठाकुर, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख श्री आर के झाड़े, उपसंचालक उद्यानिकी श्री एम एल उइके, सहायक कृषि यंत्री श्री समीर कुमार पटेल, लैंडफोर्स कंपनी के श्री आशीष पटेल सहित अन्य अधिकारी एवं प्रगतिशील कृषक उपस्थित थे।

आकाशवाणी छिंदवाड़ा से अभी आप सुन रहे हैं हेलो छिंदवाड़ा। हेलो छिंदवाड़ा में आगे बढ़ते हैं, आपको कुछ और समाचार सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त का वितरण आज। पीएम किसान उत्सव दिवस के रूप में मनाया जाएगा वितरण कार्यक्रम। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मुख्य आतिथ्य में पश्चिम बंगाल के तारकेश्वर हुगली में आज यानी 20 जून 2026 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 23वीं किश्त का वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर 23वीं किश्त वितरण दिवस को पीएम किसान उत्सव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानों को प्रतिवर्ष 6000 रुपये की सहायता राशि 3 समान किश्तों में प्रदान की जाती है। 23वीं किश्त के अंतर्गत छिंदवाड़ा जिले के 2,27,000

435 किसानों के आधार लिंक बैंक खातों में 45,49,00,000 रुपये की राशि हस्तांतरित की जाएगी। प्रत्येक पात्र किसान को 2,000 रुपये की किश्त का लाभ मिलेगा। कलेक्टर श्री हरेंद्र नारायण ने सीईओ जिला पंचायत, जिले के सभी राजस्व अनुविभागीय अधिकारियों तथा उपसंचालक कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जिले में पीएम किसान उत्सव दिवस के आयोजन संबंधी आवश्यक दिशा निर्देश जारी करते हुए निर्धारित कार्यवाही सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। जिले में कार्यक्रम के सफल आयोजन एवं किसानों की अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्थाएं करने के भी निर्देश दिए गए हैं। माचागोरा ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना का राष्ट्रीय वॉश विशेषज्ञों ने किया विस्तृत निरीक्षण, कार्यों की सराहना। जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नामित राष्ट्रीय वॉश विशेषज्ञ श्री सुनील कुमार गर्ग एवं श्री शिवजी रामजी ने 14 जून 2026 से 18 जून 2026 तक माचागोरा ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना का विस्तृत एवं गहन निरीक्षण किया। 5 दिवसीय निरीक्षण के दौरान विशेषज्ञ दल ने योजना के सभी प्रमुख घटकों का सूक्ष्म परीक्षण करते हुए इंटेक वेल, जल शोधन संयंत्र, उच्च स्तरीय जलाशयों, पंपिंग व्यवस्थाओं तथा वितरण नेटवर्क का अंतिम छोर तक पहुंचकर अवलोकन किया। निरीक्षण के दौरान योजना से संबंधित तकनीकी एवं प्रशासनिक अभिलेखों, गुणवत्ता नियंत्रण संबंधी दस्तावेजों, प्रगति प्रतिवेदनों एवं अन्य महत्वपूर्ण रिकॉर्ड्स का भी विस्तृत परीक्षण किया गया। विशेषज्ञ दल ने योजना से आच्छादित विभिन्न ग्रामों का भ्रमण कर ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों, ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों तथा ग्रामीणों से संवाद स्थापित किया तथा योजना के क्रियान्वयन संबंधी जानकारी दी।

निरीक्षण के अंतिम दिवस 18 जून 2026 को विशेषज्ञ दल ने कलेक्टर श्री हरेंद्र नारायण के सौजन्य भेंट कर निरीक्षण के दौरान प्राप्त निष्कर्षों एवं अवलोकनों की जानकारी दी। विशेषज्ञों ने योजना के प्रभावी क्रियान्वयन, गुणवत्तापूर्ण निर्माण, बेहतर परियोजना प्रबंधन तथा विभिन्न हितधारकों के समन्वित प्रयासों की सराहना करते हुए सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की। ये संपूर्ण निरीक्षण जल निगम परियोजना क्रियान्वयन इकाई छिंदवाड़ा के महाप्रबंधक श्री अविनाश देवाकर के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। निरीक्षण के दौरान उप महाप्रबंधक श्री बसंत कुमार बेलवंशी एवं श्रीमती प्रियांश जैन दुबे, श्री विनय कुमार बारेवार सहित जल निगम TPIA सुपरविजन एवं क्वालिटी कंट्रोल ठेकेदार संस्था तथा IAS की टीम के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे और विशेषज्ञ दल को आवश्यक तकनीकी एवं प्रशासनिक जानकारी उपलब्ध कराई गई। इन्हीं समाचारों के साथ संपन्न होता है आज का हेलो छिंदवाड़ा। हम आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से बोल रहे हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 मेगा हर्ट्ज पर। श्रोताओं, सुबह के 7 बजने ही वाले हैं, कुछ ही पलों में दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे हिंदी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। ओडिशा में वे आज मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनके 68वें जन्मदिन पर भेंट करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस दौरान वे 47,000 करोड़ रुपये से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। पश्चिम बंगाल के 2 दिन के दौरे में आज प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। वे राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे।

0: प्रधानमंत्री कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का लक्ष्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और मंदिर क्षेत्र में पश्चिमी महाराष्ट्र मंदिर विकास योजना के तहत चल रही विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। श्री शाह कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने विश्व के मौजूदा अस्थिर दौर में राष्ट्रीय हितों, रणनीतिक स्वायत्तता और विविध मतों के साथ संतुलन बनाए रखते हुए सभी देशों के साथ बेहतर संबंधों पर बल दिया है। कल शाम नई दिल्ली में भारत अमेरिका फोरम को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने जटिलताओं और चुनौतियों का सामना करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में भारत और अमरीका की साझेदारी मजबूत करने पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने बैंकों, परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनियों और ऋण लेने वालों के बीच साजिश पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। न्यायालय ने डूबे ऋण को निपटाने के तरीके पर भी सवाल उठाए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी मोहन की पीठ ने कहा कि बैंक करदाताओं के पैसे ऋण के रूप में दे रहे हैं, लेकिन वसूलने के प्रभावी उपाय नहीं किए गए हैं। अदालत ने जनता के पैसे के दुरुपयोग पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इस राशि का उपयोग जनकल्याण में होना चाहिए। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। श्री अग्रवाल वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय में सचिव हैं। 17 से 19 जून के दौरान कार्यबल की पूर्ण बैठक में ये निर्णय लिया गया। विदेश मंत्रालय ने श्री अग्रवाल के चयन को भारत के लिए बड़ी जीत बताया है। उत्तर प्रदेश ब्रिक्स देशों के साथ व्यापार, प्रौद्योगिकी और निवेश संपर्क बढ़ा रहा है। राज्य सरकार ने बताया है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान ब्रिक्स देशों और साझेदार देशों को 5 अरब 36 करोड़ डॉलर मूल्य से अधिक का निर्यात किया गया। आगरा में ब्रिक्स एमएसएमई फोरम में ब्रिक्स देशों और सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एकदिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। मेजबान टीम 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुकी है। दोहा डायमंड लीग में भारत के जेवलिन खिलाड़ी नीरज चोपड़ा कल रात सीजन की पहली प्रतियोगिता में चौथे स्थान पर रहे। नीरज चोपड़ा ने अपने तीसरे प्रयास में 85.69 मीटर भाला फेंक कर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का छिंदवाड़ा केंद्र है, FM 102.2 MHz पर।
3: Most TVs keep you tied to the city, but you deserve the freedom to explore. Introducing the Maruti Suzuki e-Vitara with its massive 61 kilowatt-hour battery and a range of 543 km. The horizon is finally yours. Own it for ₹10.99 lakh. With a battery EMI of just ₹3.99 per kilometer, backed by India's largest charging network, India Goes Electric.
4: वात रोग, उदर रोग, मूत्र रोग, चर्म रोग, मानसिक रोग, श्वास रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, स्त्री रोग के इलाज हेतु विभिन्न पंचकर्म विधियों व आयुर्वेदिक दवा का प्रयोग आज ही संपर्क करें डॉक्टर निधि जैन, आदिवासी संग्रहालय के सामने छिंदवाड़ा। कॉल करें 9794543985।
5: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
6: ओह लवली, वेल डन।
5: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।

0: होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स,
1: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
0: नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
1: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
0: आप कौन?
2: आरबीआई कहता है,
3: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
4: आया खुशियों का पैगाम, पीएम किसान,
5: पीएम किसान।
6: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
4: अन्नदाता का बढ़ता मान, पीएम किसान।
7: Experience grand in every drive with a Grand Vitara, because some journeys deserve more than just movement, they deserve presence. This is your final opportunity to pre-book the Grand Vitara at just ₹8,999 per month. Yes, ₹8,999 per month. And not just that, enjoy all at an effective price starting at ₹9.82 lakhs. Step into a world of refining performance and intelligent design. Six airbags as standard, premium comfort, advanced hybrid technology crafted to stand apart. This month, make it yours. Experience grand in every drive with a Grand Vitara. Visit a near Nexa showroom today.
1: Nexa.
8: नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें। ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें हैं आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
9: सुनो ना।
10: हाँ?
9: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
10: तो रोका किसने है? हाँ?
9: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
10: मुझसे।
9: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
10: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
9: पर उससे मेरा क्या फायदा?
10: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
9: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
10: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
9: ओ, 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
11: हम आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। सुबह के 7:10 होने ही वाले हैं। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे प्रादेशिक समाचार।

0: आकाशवाणी भोपाल है, प्रादेशिक समाचार थोड़ी ही देर में।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा बंगाल दौरे पर, रायरंगपुर में 47,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास। बंगाल में किसानों को सम्मान निधि की मिलेगी सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में विकसित भारत रोजगार योजना के तहत बांटी 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर आज इंदौर के सावेर में देंगे प्रधानमंत्री आवास योजना की सौगात। और प्रदेश में मानसून 8 से 10 दिन लेट, आज भोपाल इंदौर समेत 38 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। ओडिशा में वे आज मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनके 68वें जन्मदिन पर भेंट करेंगे और दोनों संथाली जहरा तथा हो जहरा के पावन स्थलों पर प्रार्थना करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रायरंगपुर में मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में 47,000 करोड़ रुपये के से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। पश्चिम बंगाल दौरे में प्रधानमंत्री आज हुगली के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे और पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करते हुए 9,44,00,000 किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपये से अधिक की राशि अंतरित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के युवा आने वाले वर्षों में वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी होंगे।
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70,00,000 जॉब सृजित हुई है। करीब 20,00,000 युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
0: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल आज इंदौर जिले के सावेर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 42,000 से अधिक हितग्राहियों को 2,500 करोड़ रुपए से अधिक की आवास स्वीकृतियां प्रदान करेंगे। इसके तहत 38,000 से अधिक परिवारों को नवीन पक्के आवासों में गृह प्रवेश कराया जाएगा। इस दौरान वे 2,935 करोड़ रुपये की लागत वाली करीब 48 किलोमीटर लंबी इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड 4 लेन परियोजना का भूमि पूजन भी करेंगे। वहीं कल केंद्रीय मंत्री ने सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के साथ ऊर्जा और स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा बैठक भी की। भोपाल में एमपीआईडीसी मुख्यालय में रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता को लेकर राज्य स्तरीय परामर्श कार्यशाला आयोजित की गई। रक्षा मंत्रालय के उप महानिदेशक सुशील कुमार सतपुते ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य तभी साकार होगा जब उद्योग, एमएसएमई, स्टार्टअप और शिक्षण संस्थान साझा मंच पर आकर नवाचार आधारित रक्षा विनिर्माण को आगे बढ़ाएंगे। कार्यशाला में देशभर के 40 से अधिक प्रमुख उद्योगों और शोध संस्थानों ने भाग लिया। भोपाल में कल दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होने वाली नीट परीक्षा को लेकर नगरीय यातायात पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। शहर में परीक्षा के लिए कुल 32 केंद्र बनाए गए हैं और मेट्रो निर्माण कार्य के चलते कुछ मार्गों पर यातायात प्रभावित रहेगा, जिसके लिए वैकल्पिक मार्ग सुझाए गए हैं। पुलिस ने परीक्षा केंद्रों के आसपास ध्वनि विस्तारक यंत्रों और वाहन पार्किंग पर प्रतिबंध लगाया है। परीक्षार्थियों से कम 30 मिनट पहले केंद्र पहुँचने की अपील की गई है। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर EIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर एक विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम नक्सलवाद के उन्मूलन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों के बारे में बताएंगे।
3: नरेंद्र मोदी सरकार की सुरक्षा अभियान, नक्सलियों की फंडिंग पर रोक और प्रभावित इलाकों में तेज विकास

0: कारियों की संयुक्त रणनीति के चलते देश को नक्सलवाद और माओवादी आतंक से मुक्त करने में सफलता मिली है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2024 में 217 माओवादी मारे गए, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 256 हो गई। सुरक्षा अभियानों के साथ साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ाया गया। नक्सलियों की फंडिंग रोकने में राष्ट्रीय जाँच एजेंसी NIA ने भी अहम भूमिका निभाई। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार।
1: राज्य शासन ने 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए जिलेवार कार्यक्रमों की मुख्य अतिथि सूची जारी कर दी है। प्रदेश में जिला, विकासखंड और पंचायत स्तर पर सामूहिक योग कार्यक्रम होंगे, जिनमें विद्यालयों, महाविद्यालयों और तकनीकी शिक्षा संस्थानों की भागीदारी रहेगी। भारत सरकार ने इस वर्ष की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग रखी है। पासपोर्ट आवेदनों के पुलिस सत्यापन में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए प्रदेश पुलिस को विदेश मंत्रालय द्वारा 5 लाख से कम आवेदन श्रेणी में देश में प्रथम स्थान दिया गया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में आयोजित समारोह में मध्य प्रदेश पुलिस को इंस्टीट्यूशनल परफॉर्मेंस अवार्ड फॉर स्टेट पुलिस से सम्मानित किया। पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा ने बताया कि अप्रैल 2025 से मार्च 2026 के बीच प्रदेश में कुल 3,35,000 से अधिक पासपोर्ट सत्यापन समयबद्ध तरीके से पूरे किए गए। प्रदेश में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत भोपाल मंडल के 15 रेलवे स्टेशनों पर अब ड्राइव इन सिनेमा की शुरुआत की जाएगी। साथ ही यहां स्टार्टअप्स और अन्य व्यावसायिक गतिविधियां भी संचालित होगी। इस योजना का उद्देश्य स्टेशनों को आधुनिक यात्री सुविधाओं से सुसज्जित बहुआयामी शहरी केंद्र के रूप में विकसित करना है, ताकि वे व्यापार, पर्यटन और रोजगार सृजन के प्रमुख केंद्र बन सकें। आकाशवाणी की 90 वर्षों की स्वर्णिम यात्रा के अवसर पर आकाशवाणी के उद्घोषकों द्वारा लिखी गई अनाउंसर्स डायरी पुस्तक का विमोचन आज भोपाल के श्यामला हिल्स स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में होगा। पुस्तक के प्रधान संपादक पुरुषोत्तम श्रीवास ने बताया कि इसमें 21 राज्यों के 41 उद्घोषकों के आलेख शामिल हैं। समारोह के मुख्य अतिथि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर अमिताभ पांडे होंगे, जबकि अध्यक्षता विविध भारती मुंबई के सेवानिवृत्त वरिष्ठ उद्घोषक जी श्याम करेंगे। पुस्तक पर चर्चा के लिए वरिष्ठ पत्रकार राजेश बादल और डॉक्टर श्रीकांत पांडे भी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग 26 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के उपलक्ष्य में 17 से 26 जून तक देशभर में नशा मुक्त भारत सप्ताह मना रहा है। इस अभियान की थीम नशा मुक्त भारत अभियान विकसित भारत की पहचान है। सप्ताह भर चलने वाले इस अभियान में जागरूकता रैलियां, युवा अभियान, नुक्कड़ नाटक, निबंध और पोस्टर प्रतियोगिताएं तथा सोशल मीडिया अभियान आयोजित किए जा रहे हैं। अब बात मौसम की। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून 8 से 10 दिन की देरी से 25 जून तक पहुंचने का अनुमान है, जबकि सामान्यतः मानसून 15 जून के आसपास प्रवेश करता है। मौसम विभाग ने आज भोपाल, इंदौर समेत प्रदेश के 38 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर 1:30 बजे से चेन्नई के MA चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मेजबान भारतीय टीम पहले ही 2-0 की बढ़त के साथ श्रृंखला अपने नाम कर चुकी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में तुलसीनगर पुलिया से निपानिया तक सड़क और सीवर लाइन निर्माण कार्य का भूमि पूजन एवं शुभारंभ किया। खंडवा के कृषि महाविद्यालय में आज किसानों को प्राकृतिक खेती की तकनीकों से परिचित कराने के लिए एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जाएगी। आगरमालवा के ग्राम गाता में 750 बीघा शासकीय गोचर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराते हुए सीमांकन किया गया। राजगढ़ में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत निर्माण श्रमिकों के लिए विशेष पंजीयन शिविर आयोजित किया गया। बैतूल में कलेक्टर डॉक्टर सौरभ संजय सोनवणे और पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र जैन ने नीट परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। और इंदौर, धार, झाबुआ और अलीराजपुर जिलों में रेशम समृद्धि योजना के तहत वर्ष 2026-27 के लिए नवीन कृषकों का ऑनलाइन पंजीयन प्रारंभ कर दिया गया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

से बोल रहे हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 MHz पर। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत।

0: कुछ बातें कुछ गीत।
1: नमस्कार श्रोताओ, स्वागत है आपका कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में। आज इस कार्यक्रम में आपके साथ हूं मैं, आपका दोस्त अमित सोनी। आप सभी को मेरा नमस्कार, सुप्रभात। श्रोताओं, क्या कभी सोचा है आपने कि यदि संगीत ना होता तो क्या होता? क्या तब भी पक्षियों का कलरव होता? क्या तब भी नदियां कलकल की ध्वनि के साथ ही बहती? क्या तब भी बारिश की बूंदें वही आनंद दे पाती? क्या हमारा हृदय भी ऐसे ही धड़कता? क्या तब भी रेडियो होता? और अगर होता भी तो क्या हमारा और आपका योग ऐसे ही होता? दोस्तों, ये सभी बातें अकल्पनीय के साथ साथ अविश्वसनीय सी भी लगती हैं। तो भाई, जब ये संगीत इतना ज़रूरी है हमारे और आपके होने में, तो क्यों ना बातों के बीच हो जाए सुंदर सा संगीत, एक गीत।

श्रोताओं, सिर्फ कुछ मिनटों को हमारे जीवन में अगर हम देखें, जो गीत से भरे हुए हैं, संगीत से भरे हुए हैं, वो हमारे मन मस्तिष्क को ताजगी और एक नई ऊर्जा से भर देते हैं, और ये नई ऊर्जा दिन भर हमारे साथ यूं ही बनी रहती है। यही तो शक्ति है हमारे संगीत की। संगीत हमें न केवल मनोरंजित करता है, बल्कि ये हमें स्वर के माध्यम से ईश्वर से भी जोड़ता है। जिस तरह एक योगी ध्यान और प्राणायाम के अभ्यास से मन और शरीर को परिष्कृत करता है, वही काम संगीतज्ञ स्वर और ताल के माध्यम से करता है, और ये बात पूर्णतः वैज्ञानिक और तर्कसंगत है। वास्तव में संगीत और योग अलग अलग नहीं हैं, एक ही हैं। विविध रागों को गाना या सुनना वैसा ही है जैसा विविध आसन और प्राणायाम का अभ्यास करना। योग में जिस तरह अलग अलग आसन और प्राणायाम शरीर और मानसिक कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं, उसी तरह अलग अलग रागों का प्रभाव भी न केवल मनुष्य बल्कि पशु पक्षियों और पेड़ पौधों को स्वास्थ्य लाभ देने वाला होता है। योग में सिरदर्द के लिए अनुलोम विलोम की क्रिया है, तो संगीत में राग भैरवी सिरदर्द में लाभकारी है। योग में कपाल भाती डायबिटीज में राहत देता है, तो यही काम संगीत में राग जयजयवंती और राग जौनपुरी करते हैं। श्रोताओं, हमारा योग हो या संगीत, दोनों ही हमारी सांस्कृतिक विरासत और समृद्धशाली ज्ञान परंपरा के प्रतीक हैं। इनसे जुड़ना, इन्हें अपनाना, जीवन में इनका उपयोग करना जितना ही आवश्यक है, उससे कहीं अधिक

अनिवार्य है। आज जब संपूर्ण विश्व योग को अपना रहा है, विश्व भर में योग दिवस मनाया जा रहा है, ये हर भारतीय को गर्व से भर देने वाली बात है। कल यानी कि 21 जून को संपूर्ण विश्व में 12वां योग दिवस मनाया जाएगा, साथ ही विश्व संगीत दिवस भी। इस योग दिवस की थीम होगी एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। तो आइए जुड़िए अपनी जड़ों से, संगीत से, योग से। चलते चलते सुनिए आप ये गीत और दीजिए अनुमति मुझे अपने दोस्त अमित सोनी को कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत से। नमस्कार।

0: बातें कुछ गीत।
1: कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत अभी आप सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से प्रसारित किया जा रहा था। लीजिए श्रोताओं, अब सुनिए सदाबहार फिल्मी नगमों की गीत गंगा।

गीत गंगा की ये पहली प्रस्तुति थी उजाला फिल्म से मन्ना डे और साथियों की आवाजों में। शैलेंद्र का गीत था, शंकर जयकिशन का संगीत। आकाशवाणी से छिंदवाड़ा से अभी आप सुन रहे हैं सदाबहार फिल्मी नगमों का कार्यक्रम गीत गंगा।

0: शिखर गोल्ड तेल,
1: हर किराना स्टोर पर उपलब्ध शिखर गोल्ड तेल।
2: आया खुशियों का पैगाम पीएम किसान,
3: पीएम किसान।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।

0: जब भी
1: उपासना फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में। इंदिवर ने इस गीत को लिखा था, संगीत था कल्याण जी आनंद जी का।
2: Most TVs keep you tied to the city, but you deserve the freedom to explore. Introducing the Maruti Suzuki e-Vitara. With its massive 61 kilowatt-hour battery and a range of 543 kilometer, the horizon is finally yours. Own it for rupees 10.99 lakh with a battery EMI of just rupees 3.99 per kilometer. Backed by India's largest charging network, India Goes Electric.
3: Nexa.

0: है तो टेली लॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: आकाशवाणी छिंदवाड़ा से अभी आप सुन रहे हैं सदाबहार फिल्मी नगमे कार्यक्रम गीत गंगा में।

0: आहिस्ता आहिस्ता फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। इस गीत में आवाज़ थी सुलक्षणा पंडित की, गीत लिखा था नक्श लायलपुरी ने और संगीतकार थे खयाम। आकाशवाणी छिंदवाड़ा से इस गीत को आपने सुना सदाबहार फिल्मी नगमों के कार्यक्रम गीत गंगा में।
1: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
2: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
3: बन गया बजट?
2: हाँ,
3: 5,000 बच गए।
2: तो नई साड़ी ले ले।
3: ना,
2: पिछले महीने तो ली थी।
3: एक और
2: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
3: बढ़िया,
2: जाओ भाई।
4: RBI कहता है,
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
6: आया खुशियों का पैगाम, पीएम किसान।
7: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।

किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में अभी आप अधिकार फिल्म का गीत सुन रहे थे। इसी के साथ संपन्न होती है आज की गीत गंगा। ये आकाशवाणी छिंदवाड़ा है। सुबह के 8 बजने ही वाले हैं। अब दिल्ली से होगा समाचार प्रभात।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
1: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
0: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय, कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष। बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय, कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाए, योग को जीवन का हिस्सा बनाए। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
1: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
0: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष। बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
1: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
0: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष, बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आया खुशियों का पैगाम पीएम किसान, पीएम किसान।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली से पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे। 9 करोड़ से अधिक किसान होंगे लाभान्वित। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के उपाध्यक्ष नियुक्त। भारत ने आतंकवाद वित्त पोषण से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल। सेबी ने मृत निवेशकों के शेयर उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया आसान बनाई। और भारत और अफगानिस्तान के बीच एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच आज चेन्नई में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री आज

0: ओडिशा के मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनके 68वें जन्मदिन पर भेंट करेंगे।
1: राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मिलकर पवित्र संथाली जोहरा और हो जोहरा स्थलों पर पूजा अर्चना करेंगे और स्थानीय शिक्षण और कौशल विकास संस्थानों का दौरा करेंगे। इससे आदिवासी समुदायों के सशक्तिकरण के प्रति देश की प्रतिबद्धता जाहिर होगी। इसके बाद दोनों नेता रायरंगपुर में एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और ऊर्जा, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और औद्योगिक बुनियादी ढांचे जैसे प्रमुख क्षेत्रों में नई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। रायरंगपुर से प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
0: पश्चिम बंगाल के दौरे में आज प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। वे राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके तहत देश के 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुगली के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल होंगे और कलकत्ता में रेड रोड पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में नेतृत्व करेंगे। इसी अवसर पर वे 3 स्वदेशी युद्धपोत INS दुनोगिरी, INS संशोधक और INS अग्रय राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री कई महत्वपूर्ण परियोजना का भी उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। कृषि क्षेत्र में श्री मोदी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत करेंगे। संदीपन दासगुप्त के साथ काशफिन नाहर, आकाशवाणी कोलकाता।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और मंदिर क्षेत्र में पश्चिमी महाराष्ट्र मंदिर विकास योजना के तहत चल रही विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। श्री शाह कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। कार्यबल की पूर्ण बैठक में यह निर्णय लिया गया। विदेश मंत्रालय ने श्री अग्रवाल के चयन को भारत के लिए बड़ी जीत बताया है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैर कानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज जानकारी सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने वाली सरकार की परिवर्तनकारी पहलों के बारे में।
3: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने भारत के हाईटेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। सशक्त भारत के 2 महत्वपूर्ण आधार हैं, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। सरकार की नीतियों और फैसलों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनी बल्कि अब निर्माण और डिजाइन से जुड़े कई इकाई भी काम कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। इस योजना के तहत सिलिकॉन फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर इकाई, असेंबली और टेस्टिंग सुविधाओं तथा चिप डिजाइन के लिए 50% तक वित्तीय सहायता दी गई। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया, जिसके लिए 1,000 रुपए का प्रावधान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों के सहयोग से शोध और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, नई तकनीकों का विकास करना और भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मिशन 1.0 ने इस जटिल उद्योग की मजबूत नींव रखी है।
4: हम अपने सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में ये हासिल कर पाए हैं। 75,000 से ज्यादा इंजीनियर इस क्षेत्र में प्रशिक्षित हो चुके हैं। 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज छात्रों को चिप डिजाइन करना सिखा रही हैं और भारत में 2 नैनोमीटर चिप्स डिजाइन की जा रही हैं, जो दुनिया की सबसे एडवांस चिप्स हैं। इनमें NVIDIA और इंटेल की चिप्स भी शामिल हैं और ये सभी अब भारत में ही डिजाइन की जाती हैं।
3: भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरी तरह काम करने की अनुमति दी है। अब निजी संस्थाएं रॉकेट लॉन्च, उपग्रह निर्माण और संचालन, डेटा संग्रह और वितरण तथा ग्राउंड स्टेशन जैसी गतिविधियां कर सकती हैं। इस नीति के बाद भारत में स्पेस स्टार्टअप्स की संख्या 2014 में केवल 1 से बढ़कर 400 से अधिक हो गई है। इससे देश की निजी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग $8 अरब से अधिक की है और अगले 8 से 10 वर्षों में इसके 4 से 5 गुना बढ़कर

0: 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। आकाशवाणी के साथ बातचीत में अनिल प्रकाश, स्पेस इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक ने बताया कि भारत में अब 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप्स हैं।
1: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पेस सेक्टर रिफॉर्म, स्पेस की स्थापना और प्राइवेट पार्टिसिपेशन में को बढ़ावा देने वाली नीतियों ने एक नई क्रांति की शुरुआत की है। आज भारत में 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप कार्यरत है, जो सेटेलाइट, लॉन्च व्हीकल, अर्थ ऑब्जर्वेशन और डाटा सर्विस जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन कर रहे हैं।
0: सेमीकंडक्टर मिशन की उपलब्धियों और तेजी से बढ़ती निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के माध्यम से भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए कल होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभ्यास संचालित करेगा। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए ये मॉक ड्रिल की जा रही है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने मृत निवेशकों के शेयरों के आसानी से हस्तांतरण के उद्देश्य से कानूनी उत्तराधिकारी और दावेदारों को प्रतिभूति अंतरित किए जाने के तरीके को सरल बनाया है। कल मुंबई में बोर्ड की 214वीं बैठक में सेबी ने बाजार क्षमता बढ़ाने, अनुपालन में आसानी और नियामक व्यवस्था में मजबूती के लिए कई सुधारों को मंजूरी दी। और अब खेल खबरें। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। भारत 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुका है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद विशाल। टेलीग्राम पर केंद्र सरकार की रोक पर दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। दैनिक जागरण की सुर्खी है टेलीग्राम पर प्रतिबंध सही। फुटपाथ पर पैदल चलना लोगों का मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का ये निर्णय, दैनिक ट्रिब्यून सहित कई अखबारों में है। इस खबर पर नवभारत टाइम्स ने पहला हक शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, सुरक्षित फुटपाथ केवल सड़क सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा नहीं, ये पर्यावरण और लोगों के सेहत से भी जुड़ा है। पाकिस्तान अपने ही भस्मासुरों का शिकार, आतंकियों की है खुली पनाहगाह, संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि अनुपमा सिंह का ये बयान अमर उजाला में है।
2: धन्यवाद फरहत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली से पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे। वरिष्ठ भारतीय नौकरशाह विवेक अग्रवाल वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के उपाध्यक्ष नियुक्त। भारत ने आतंकवाद वित्त पोषण से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल। और सेबी ने मृत निवेशकों के शेयर उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया आसान बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Naresh Mago. The headlines. President Draupadi Murmu and Prime Minister Narendra Modi to inaugurate and lay foundation stone of development projects worth over 47,000 crore rupees in Odisha's Mayurbhanj district today. Prime Minister Modi to release 23rd installment of the PM Kisan to over 9 crore farmers from Hooghly in West Bengal. Senior Indian bureaucrat Vivek Agrawal appointed as Vice President of Financial Action Task Force FATF. New Delhi reiterates its commitment to combat terror financing. NTA to conduct nationwide mock drill today ahead of NEET UG re-examination scheduled for tomorrow. SEBI clears channel for easier transfer of shares to legal heirs of deceased investors. And in men's cricket, India to take on Afghanistan in third and final ODI of the series in Chennai this afternoon. In a rare confluence of constitutional leadership and developmental vision, Prime Minister Narendra Modi is visiting Odisha this morning, where he will join President Draupadi Murmu in her home district of Mayurbhanj. The visit coincides with the President's 68th birthday and the celebrations marking 2 years of the Odisha government. Our correspondent reports from Rairangpur.
5: In a rare and significant engagement, the President and the Prime Minister will jointly offer prayers at the sacred Santhali Jahera and Ho Jahera groves and visit local educational and skilled

0: फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम की ये पहली प्रस्तुति थी। लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत था फिल्म स्वीकार किया मैंने। निदा फाजली ने इस गीत को लिखा था, संगीत था उषा खन्ना का। आकाशवाणी छिंदवाड़ा से अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत।
1: आया खुशियों का पैगाम पीएम किसान,
2: पीएम किसान।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।

0: तुम्हारी कसम फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे, मुकेश और आशा भोसले की आवाज़ों में। आनंद बख्शी ने गीत लिखा था, राजेश रोशन की तर्ज थी। आकाशवाणी छिंदवाड़ा से अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत।
1: आया खुशियों का पैगाम, पीएम किसान।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।

आशा भोसले और शैलेंद्र सिंह का गाया गीत अभी आप सुन रहे थे। जावेद अख्तर ने इस गीत को लिखा था, संगीत राहुल देव बर्मन का था। ये गीत था फिल्म सागर से। आकाशवाणी छिंदवाड़ा से अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में अगला गीत सरफरोश फिल्म से, कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजें, समीर का गीत, जतिन ललित का संगीत।

सरफरोश फिल्म का गीत अभी आपने सुना, कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजें थीं, समीर का गीत था, जतिन ललित का संगीत था। सैनिक फिल्म से कार्यक्रम का ये अगला गीत कुमार सानू और साधना सरगम की आवाजों में।

कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज़ों में अभी आप सैनिक फिल्म का गीत सुन रहे थे। समीर ने इसे लिखा था, नदीम श्रवण का संगीत था और इसी गीत के साथ ख़त्म होता है फिल्म संगीत का आज का ये कार्यक्रम। श्रोताओं आपको बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त आज दिनांक 20 जून 2026 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा हुगली पश्चिम बंगाल से वितरित की जाएगी। ये

0: आकाशवाणी का छिंदवाड़ा केंद्र है एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर।
1: नए जमाने की नई तस्वीर, अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें हैं आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
0: हम आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से बोल रहे हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, सुबह के 9 बजने ही वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे विविध भारती सेवा के कार्यक्रम, जिनका अनुप्रसारण हम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से करेंगे।

0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक।
1: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
2: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 22 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये है प्रोग्राम म्यूजिकल दिल लगी और मैं हूँ आपके साथ भावना।

0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं चित्रलोक,
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। कार्यक्रम के अंत में तेरे नाम फिल्म का गीत अलका याग्निक की आवाज़।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओपी नैयर।
1: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओपी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता। आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर।

आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है एक ऐसे निर्माता और निर्देशक पर जिसने अपनी फिल्मों में जिंदगी के यथार्थ को दिखाया।

बासु भट्टाचार्य का जन्म सन 1934 में कोलकाता में हुआ था। उनका परिवार कासिम बाजार पश्चिम बंगाल का रहने वाला था। बहुत बचपन में जब बासु भट्टाचार्य ने सत्यजीत रे की फिल्में देखी तो उनका फिल्मों से लगाव बढ़ गया। खास तौर पर 1956 में आई फिल्म अपराजितो ने उन्हें बहुत ज्यादा प्रभावित किया था और उन्होंने ये तय कर लिया था कि जीवन में वो कुछ ना कुछ तो ऐसा करेंगे कि फिल्मों में काम करने की स्थिति बन जाए।

बासु भट्टाचार्य जब मुंबई आए तो उनका मकसद था राज कपूर के साथ काम करना, क्योंकि आवारा और श्री 420 जैसी फिल्मों ने उन्हें बहुत ज्यादा प्रभावित किया था।

लेकिन मुंबई आते ही इत्तेफाक ये हुआ कि बासु भट्टाचार्य बिमल रॉय की फिल्म टोली में एज असिस्टेंट डायरेक्टर शामिल हो गए। सन 1958 में आई मधुमति और सन 1960 में आई फिल्म सुजाता में बासु भट्टाचार्य बिमल रॉय के सहायक निर्देशक रहे।

जाहिर है कि अब बासु भट्टाचार्य का फिल्म करियर धीरे धीरे अपनी दिशा ले रहा था। इसी बीच जाने माने गीतकार शैलेंद्र ने फिल्म बनाने का फैसला किया और इसके लिए उन्होंने चुनी एक अनमोल कृति, हिंदी के सुप्रसिद्ध कथाकार और उपन्यासकार फणीश्वरनाथ रेणु की मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम।

फिल्म तीसरी कसम का निर्माण शुरू हुआ और इसके लिए बासु भट्टाचार्य को बतौर निर्देशक चुना गया। जो बासु भट्टाचार्य राज कपूर के साथ फिल्में बनाना सीखना चाहते थे, आखिरकार उनकी फिल्म यात्रा एक तरह से राज कपूर के साथ ही शुरू हुई और उन्होंने फिल्म तीसरी कसम में राज कपूर को डायरेक्ट किया। तीसरी कसम के बनने में कई परेशानियां आईं। इस फिल्म का निर्माण एक तरह से संघर्षों से भरा रहा था, पर यह फिल्म हिंदी की एक कालजयी फिल्म साबित हुई। फिल्म तीसरी कसम को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार भी हासिल हुआ था।

देश विदेश में फिल्म तीसरी कसम की बहुत ज्यादा तारीफ हुई। इस बीच बासु भट्टाचार्य ने सन 1966 में ही एक और फिल्म बनाई, उसकी कहानी। मुख्य कलाकार थे अंजू महेंद्रू और दीना पाठक।

बासु भट्टाचार्य को ये समझ में आ गया था कि उनकी एक खास तरह की शैली है, फिल्में बनाने का उनका अपना एक खास मुहावरा है, और इसीलिए बासु भट्टाचार्य ने अपनी तरह का सिनेमा बनाया। मुंबई में फिल्म फाइनेंस कॉरपोरेशन के जरिए उन्होंने अपनी फिल्म बनाई अनुभव। साल 1971 में आई फिल्म अनुभव के मुख्य सितारे थे संजीव कुमार और तनुजा। बासु भट्टाचार्य की खासियत रही है वैवाहिक रिश्तों की जटिलता, और वैवाहिक रिश्तों के तनाव पर वो बहुत बारीक काम अपनी फिल्मों में करते रहे हैं। फिल्मों के जानकार ये कहते हैं कि बासु भट्टाचार्य ने जीवन में वैवाहिक संबंधों की पड़ताल पर एक ट्रायोलॉजी बनाई है, और 1971 में आई फिल्म अनुभव इसी ट्रायोलॉजी का यानी इस फिल्म त्रयी का पहला हिस्सा साबित हुई।

सन 1972 में फिल्म अनुभव को दूसरी सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल हुआ था। इस बीच बासु भट्टाचार्य ने एक फिल्म बनानी शुरू की डाकू, पर वो फिल्म पूरी नहीं हो पाई। अनुभव से जुड़ी एक दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में बासु भट्टाचार्य संजीव कुमार की बजाय इस फिल्म में प्राण को लेना चाहते थे। उन्होंने काम भी शुरू कर दिया था, पर उन्हें लगा कि संजीव कुमार इस फिल्म के लिए बेहतरीन साबित होंगे और उनका ये विश्वास रंग लाया। फिल्म अनुभव एक बेमिसाल फिल्म मानी जाती है।

जैसा कि हमने कहा, बासु भट्टाचार्य वैवाहिक संबंधों की जटिलता के एक अनमोल फिल्मकार हैं। अनुभव के बाद वैवाहिक संबंधों पर उनकी एक और फिल्म आई, आविष्कार। आविष्कार बड़े सितारों से सजी फिल्म थी। इस फिल्म में राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर ने काम किया था। एक बार फिर संगीतकार थे कनू रॉय।

राजेश खन्ना को इस फिल्म में सर्वश्रेष्ठ अभिनय का फिल्म फेयर पुरस्कार हासिल हुआ था। राजेश खन्ना की करियर की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सार्थक फिल्म मानी जाती है आविष्कार।

सन 1976 में बासु भट्टाचार्य ने फिल्म संगत बनानी चाही, हालांकि ये फिल्म पूरी नहीं हो पाई और सन 1979 में बासु भट्टाचार्य वैवाहिक संबंधों की पेचीदगी पर अपनी तीसरी फिल्म लेकर आए गृह प्रवेश।

अनुभव, आविष्कार और गृह प्रवेश, ये तीन ऐसी फिल्में हैं जिनके जरिए बासु भट्टाचार्य वैवाहिक संबंधों की जटिलता की जांच करते हैं, उसकी पड़ताल करते हैं और उसके अलग अलग आयामों को सामने लाते हैं। संजीव कुमार उनके प्रिय सितारे थे, वही फिल्म गृह प्रवेश में नजर आए, साथ में शर्मिला टैगोर और सारिका। गुलजार ने इस फिल्म के गाने लिखे थे।

वासु भट्टाचार्य की फिल्में अपनी कहानी, अपनी जटिलता और अपने संगीत के लिए खास तौर पर याद की जाती हैं। वासु भट्टाचार्य ने बहुत ज्यादा फिल्में नहीं बनाई, लेकिन उन्होंने जो फिल्में बनाई वो अपने आप में संपूर्ण हैं। वो ऐसी फिल्में हैं जो जीवन के यथार्थ को दर्शाती हैं। सन 1986 में उनकी एक फिल्म आई पंचवटी। पंचवटी में दीप्ति नवल और सुरेश ओबेरॉय मुख्य सितारे थे। सार्थक फिल्मों की दुनिया में फिल्म पंचवटी एक

0: महत्वपूर्ण फिल्म के तौर पर याद की जाती है। यहां एक बात और आपको बता दें, सन 1979 में बासु भट्टाचार्य निर्माता बने और उन्होंने सई परांजपे की फिल्म प्रोड्यूस की स्पर्श, नसीरुद्दीन शाह और शबाना आजमी के बेमिसाल अभिनय वाली फिल्म स्पर्श समानांतर सिनेमा आंदोलन की एक बेहतरीन फिल्म मानी जाती है।
1: सच, आपकी संस्था से जो मैंने पाया है वो मैं कभी बता नहीं पाऊंगी।
2: और आपका आना संस्था के लिए कितना फायदेमंद हुआ है ये मैं आपको बता नहीं सकता। बहुत खुश हैं आजकल बच्चे, जैसे पहली बार उन्हें ममता मिली हो।
0: सन 1997 बासु भट्टाचार्य ने अपनी आखिरी फिल्म बनाई आस्था। मुख्य सितारे थे रेखा, ओमपुरी और दिनेश ठाकुर।

20 जून 1997 को इस असार संसार को छोड़कर एक लंबी यात्रा पर चले गए बासु भट्टाचार्य। बासुदा इस दुनिया से विदा हो गए, पर रह गया उनका सिनेमा, उनका वो सिनेमा जो मानवीय संबंधों की पड़ताल करता है। ये वो सिनेमा है जो अपनी तरह से निराला है और इसीलिए लोग इन फिल्मों को खोज खोज कर देखते हैं और एक फिल्मकार के रूप में बासु भट्टाचार्य को याद करते हैं। वैसे बासु भट्टाचार्य का सबसे बड़ा योगदान कुछ फिल्म समीक्षक तीसरी कसम को मानते हैं। तो अब आपसे विदा लेने से पहले तीसरी कसम में कही गई ये सीख।

0: पास जाना है।
1: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था जानी मानी निर्माता निर्देशक बासु भट्टाचार्य पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
2: आज के फनकार।

0: 21 जून को है विश्व योग दिवस और इस बार की थीम है बढ़ती उम्र के साथ योग। विविध भारती लेकर आ रहा है एक विशेष कार्यक्रम। हमारे खास मेहमान हैं योगीराज भारत भूषण भारतेंदु, जो आपको बताएंगे कैसे योग बदल सकता है आपका जीवन।
1: बूढ़े बच्चे जवान सभी को करना चाहिए। पहला तो है श्वास से रिलेटेड, श्वास के एक्सरसाइज प्राणायाम तो सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऑफिस वाले हैं तो उनके लिए 10 से 15 सूर्य नमस्कार अच्छे से।
2: आलेख है फिरोज खान का, वाचन स्वर नवनीत चौबे की।
3: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है सिवनी जिले की चिट्ठी। आलेख फिरोज खान, वाचन स्वर नवनीत चौबे। सिवनी जिले में मानसून के आगमन का इंतजार करते हुए किसान खरीफ फसलों की तैयारी में लग गए हैं। पिछली रबी फसल में अच्छी पैदावार मिलने से किसानों में उत्साह है। पिछले वर्ष जिले में 4 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में खरीफ फसलों की बोनी हुई थी। इस बार खेती का रकबा और बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। किसानों को नई तकनीकों की जानकारी देने के लिए जिले में कृषि रथ रवाना किया गया है। यह रथ सभी विकास खंडों की ग्राम पंचायतों का भ्रमण करेगा। कृषि वैज्ञानिक और विभागीय अधिकारी किसानों को उन्नत खेती, जैविक कृषि और सरकारी योजनाओं की जानकारी देंगे। साथ ही फसल विविधीकरण और मृदा स्वास्थ्य पर भी मार्गदर्शन दिया जाएगा। गंगा दशहरा के अवसर पर जिले में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्य आयोजन लखनवाड़ा के वैन गंगा घाट पर हुआ। जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और ग्रामीणों ने श्रमदान कर स्वच्छता अभियान चलाया। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर आरोह 2026 का समापन उत्साह के साथ हुआ। जिले भर के 2500 से अधिक खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों का प्रशिक्षण प्राप्त किया। इस दौरान नशा मुक्ति का संकल्प भी दिलाया गया। इसी क्रम में कृषि विज्ञान केंद्र सिवनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात का सामूहिक श्रवण किया गया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, किसानों और नागरिकों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण, स्वच्छता, पर्यावरण और युवाओं की उपलब्धियों पर अपने विचार साझा किए। फिट इंडिया अभियान के तहत विश्व साइकिल दिवस पर सिवनी में संडे ऑन साइकिल रैली निकाली गई। रैली का उद्देश्य लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देना था। प्रतिभागियों ने नियमित साइकिल चलाने का संकल्प लिया। खेल जगत से एक अच्छी खबर आई है। एशिया कप में भारतीय अंडर 18 महिला हॉकी टीम को कांस्य पदक दिलाने वाली सिवनी की खिलाड़ी नौसीन नाज का सम्मान किया गया। उन्होंने टूर्नामेंट में सर्वाधिक 12 गोल किए थे। कलेक्टर ने उन्हें सम्मानित करते हुए 50,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की। जिले में पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी जागरूकता बढ़ रही है। दल सागर तालाब में आयोजित श्रमदान अभियान में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और नागरिकों ने मिलकर सफाई की। कार्यक्रम के दौरान जल संरक्षण और हरित सिवनी बनाने का संकल्प लिया गया। इस बीच प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी UCC को लेकर जन परामर्श प्रक्रिया शुरू हो गई है। सिवनी के शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आयोजित बैठक में नागरिकों से सुझाव लिए गए। जन सुनवाई कार्यक्रम के माध्यम से जिले के लोगों की समस्याओं का निराकरण भी लगातार किया जा रहा है। मई माह के पहले सप्ताह से अब तक करीब 800 आवेदनों पर सुनवाई की गई है। भूमि विवाद, आवास, पेयजल और आर्थिक सहायता जैसे मामलों पर आवेदन प्रस्तुत हुए। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जिले में सड़क दुर्घटनाओं की घटनाएं चिंता का विषय बन गई हैं। मई माह के पहले सप्ताह से अब तक 12 सड़क दुर्घटनाओं में 17 लोगों की जान गई, वहीं 22 लोग घायल हुए हैं। इसके अलावा डूबने और आग की घटनाओं में भी 2 लोगों की मृत्यु हुई। सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में भी सिवनी लगातार आगे बढ़ रहा है। साहित्य प्रेमियों को जोड़ने के लिए जिले में नियमित रूप से काव्य गोष्ठियां और विचार मंचों का आयोजन किया जाता है। इस कड़ी में एक कवि सम्मेलन और मुशायरा आयोजित किया गया।

खेलों की बढ़ती लोकप्रियता के बीच जिले में क्रिकेट प्रतियोगिताओं का आयोजन भी जारी है। धनोरा ग्राम में आयोजित DPL क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला रोमांचक रहा। मंडला की टीम ने लखनादौन को 3 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम किया। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कल सिवनी के फुटबॉल स्टेडियम में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष योग दिवस की थीम स्वस्थ आयु के लिए योग रखी गई है। कलेक्टर नेहा मीना के निर्देश पर कार्यक्रम की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सिवनी विकास खंड के केकड़वानी आंगनवाड़ी केंद्र में कार्यकर्ता कौशल्या सरोआम और सहायिका लीलाबाई यादव ने अपनी मेहनत और समर्पण से पोषण वाटिका विकसित कर एक मिसाल पेश की है। जून 2024 से शुरू की गई इस वाटिका में आम, पपीता, केला, सहजन, टमाटर, पालक और अन्य फल सब्जियां उगाई जा रही हैं। यहां तैयार होने वाले फल बच्चों और उनके परिवारों को वितरित किए जाते हैं, जबकि सब्जियों का उपयोग आंगनबाड़ी के पोषण आहार में किया जाता है। जिले में मुख्यमंत्री दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत सिवनी जिले के रामगोपाल कहार को 2 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि का स्वीकृति पत्र प्रदान किया गया। रामगोपाल ने बताया कि यह आर्थिक सहायता उनके वैवाहिक जीवन की नई शुरुआत को मजबूती देगी। सिवनी जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे शिवनी जिले की चिट्ठी। आलेख था फिरोज खान का, वाचन स्वर थे नवनीत चौबे के। ये आकाशवाणी भोपाल है।
1: ये आकाशवाणी छिंदवाड़ा है FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 10:05 हुए हैं। अब होगा महिलाओं का कार्यक्रम शक्ति रूपा।

कार्यक्रम शक्ति रूपा सुनने वाले सभी श्रोताओं को रेडियो सखी अनुराधा खत्री का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का आज के कार्यक्रम में, जिसमें होंगे हमारे नियमित क्रम मन भावन गीत संगीत के साथ। सबसे पहले मन की बात, जो कि जुड़ी है आज के दिन यानी 20 जून से। आज के दिन को मनाया जाता है विश्व शरणार्थी दिवस यानी वर्ल्ड रिफ्यूजी डे के रूप में। रिफ्यूजी या शरणार्थी शब्द भारत के इतिहास में बहुत जाना पहचाना सा है और शरणार्थियों से जुड़ा संघर्ष भी बहुत पुराना नहीं हुआ है। आज़ादी के संघर्ष के समय एक पीढ़ी ने इस दंश को झेला है, जब अपने ही देश में बहुत से लोग शरणार्थी बनकर आए थे और लंबे समय तक शरणार्थी शिविरों में रहे थे। हम में से अधिकांश लोगों ने अपने परिवार के बड़े बूढ़ों से उस समय के किस्सों में इस शब्द को जरूर सुना होगा। सखियों, शरणार्थी जीवन अनेक चुनौतियों से भरा होता है। अपने घर द्वार, रोजगार और सामाजिक परिवेश से दूर होकर नया जीवन शुरू करना आसान नहीं होता, और फिर परिस्थितियां भी तो अनुकूल नहीं होती, यहाँ तक कि मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी भटकना पड़ता है। शरणार्थी जीवन एक दुष्परिणाम है दुनिया में होने वाले युद्धों, संघर्षों, हिंसा और उत्पीड़न का, जिसके कारण लोगों को अपना घर और देश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ता है। विश्व में शांति स्थापना के भरसक प्रयासों के बाद भी आज भी ये संघर्ष और युद्ध जारी हैं, और फिर कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं भी कारण बन जाती हैं लोगों को मजबूरन घर छोड़कर शरणार्थी शिविरों में रहने का। पूरे परिवार के साथ सब कुछ छोड़कर केवल अपनी जान बचाकर भागना पड़ जाता है। अपने घर में महिलाओं बच्चों को सुरक्षित रहने की आदत होती है और अचानक ये सब छूट जाता है। कितना तकलीफदायक है ना ये सब सोचना भी, विशेषकर बच्चों और महिलाओं के लिए। लेकिन फिर भी महिलाएं हिम्मत नहीं हारती। घर बार, रोजगार और खासकर सामाजिक सुरक्षा खो देने के बाद भी वे हिम्मत नहीं हारती। सीमित साधनों में भी वे बच्चों की देखभाल कर लेती हैं, परिवार की सुरक्षा और आर्थिक जिम्मेदारी में भी हाथ बटा लेती हैं, और कभी कभी तो इन संघर्षों के परिणाम स्वरूप अगर परिवार बिछड़ जाए या वो अकेली पड़ जाएं, तो भी वो अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटती, बल्कि ऐसी कठिन परिस्थितियों में वो उम्मीद की एक किरण बनकर आगे बढ़ती हैं। भारतीय इतिहास में तो ऐसे कई उदाहरण छिपे हैं जहाँ महिलाओं ने संघर्ष के दिनों में हार नहीं मानी और अपने बच्चों को इतना आगे बढ़ाया कि आज वे समाज में सम्मानपूर्वक स्थापित हैं।

उदाहरण ऐसे भी मिल जाएंगे कि जब नारी की दृढ़ता और संघर्ष केवल परिवार की शक्ति नहीं बल्कि समाज में आशा और परिवर्तन की प्रेरणा भी बन जाती है। महारानी लक्ष्मीबाई, दुर्गावती, कस्तूरबा गांधी जी, सरोजनी नायडू जी, ऐसे कई नामों से भारतीय इतिहास भरा हुआ है और ये जज्बा आज भी कायम है। विश्व के इतिहास में फ्लोरेंस नाइटिंगेल इसका एक बड़ा उदाहरण है। क्रीमिया युद्ध के दौरान उन्होंने सीमित साधनों में भी घायल सैनिकों की सेवा की। उन्हें लेडी विद द लैंप के नाम से जाना जाता था क्योंकि वो अपने हाथ में लैंप लेकर रात के समय भी लोगों की सेवा में जुटी रहती थी। आधुनिक समय की बात कहें तो नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई भी इसी बात का एक बड़ा उदाहरण है। उन्होंने कठिन परिस्थितियों और विरोध के बाद भी शिक्षा के अधिकार के लिए आवाज़ उठाई और पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा बनी। कोविड-19 महामारी के दौरान भी कई महिलाओं ने आर्थिक संकट के बावजूद स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से मास्क और अन्य आवश्यक वस्तुओं का निर्माण किया और अपने परिवारों की आर्थिक स्थिति को संभाला। सखियों, आज मन की बात का जो हमारा विषय है वो यही है, नारी शक्ति कठिन परिस्थितियों में उम्मीद की किरण, और ये बात आज शरणार्थी दिवस को सार्थक करती है। शरणार्थी जीवन जैसी कठिन परिस्थितियों में भी नारी शक्ति एक उदाहरण, एक उम्मीद की लौ है जो फिर से नए जीवन की राह दिखाती है। दुनिया में शरणार्थी जीवन की कठिनाइयों को देखते हुए ही संयुक्त राष्ट्र ने पहली बार 20 जून 2001 को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया था। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य यही था कि शरणार्थी जीवन जी रहे लोगों की परिस्थितियों के प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित किया जा सके और उन परिस्थितियों में सुधार लाया जा सके। और महिलाएँ सिखाती हैं कि विपरीत परिस्थितियाँ व्यक्ति को कमज़ोर नहीं बल्कि और अधिक मजबूत बनाती हैं। जब दुनिया कठिनाइयों से घिर जाती है तब नारी शक्ति केवल स्वयं ही नहीं संभलती बल्कि पूरे समाज को संभालने का साहस भी देती है। बहनों, ये तो थी हमारी मन की बात, और अब थोड़ा सा मनोरंजन, आइए सुनते हैं ये गीत।

0: ए जी सुनो, कल चौपाल में सरपंच की बहू बता रही थी उनका तेल 15 दिन में खत्म हो गया।
1: अरे भाग्यवान, हमारी रसोई में शिखर गोल्ड सोयाबीन तेल है। ये कम खर्च होता है इसलिए ज्यादा चलता है, पूरा महीना आराम से निकल जाएगा।
0: मतलब महंगाई में भी बचत
1: और स्वाद भी बढ़िया, सेहत का भी ध्यान।
0: वाह, इतनी खूबी।
1: शिखर गोल्ड सोयाबीन तेल अब आपके नगर की सभी किराना दुकानों पर उपलब्ध।
2: बूंद बूंद में शुद्धता, शिखर गोल्ड तेल।
3: और बहनों, अब थोड़ी बात सिकल सेल के बारे में। सिकल सेल एक आनुवंशिक रक्त विकार है और जानकारी के अभाव में ये बीमारी जानलेवा भी साबित हो सकती है। लोगों को जागरूक करने के लिए ही प्रतिवर्ष 19 जून को सिकल सेल जागरूकता दिवस मनाया जाता है। आइए सुनते हैं इसी अवसर पर डॉक्टर नीरज विश्वकर्मा जी से श्री अमोल शिंदे जी द्वारा की गई बातचीत।
4: नमस्कार श्रोताओं, प्रतिवर्ष 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य लोगों को सिकल सेल रोग के प्रति जागरूक करना, समय पर जांच के लिए प्रेरित करना तथा इस अनुवांशिक बीमारी से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करना है। सिकल सेल रोग विशेष रूप से जनजातीय क्षेत्रों सहित अनेक समुदायों में एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य चुनौती बना हुआ है। समय पर जांच, उचित उपचार और जागरूकता के माध्यम से इसके प्रभाव को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इन्हीं महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करने के लिए आज हमारे आकाशवाणी स्टूडियोज में उपस्थित है डॉक्टर नीरज विश्वकर्मा जी। डॉक्टर साहब जिला नोडल अधिकारी सिकल सेल एनीमिया एडोनथेरेपी आयुष विभाग छिंदवाड़ा में कार्यरत है। हम उनसे सिकल सेल रोग की पहचान, बचाव, उपचार तथा हाल ही में आयुष विभाग द्वारा शुरू की गई आयुर्वेदिक एडोन थेरेपी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है आकाशवाणी स्टूडियोज में।
5: नमस्कार
4: डॉक्टर साहब, सर्वप्रथम मैं आपसे ये प्रश्न करना चाहूंगा, आप हमारे श्रोता को बताइए कि सिकल सेल रोग ये है क्या?
5: देखिए सर, जैसे नाम ही है इस रोग का, सिकल सेल एनीमिया
4: जी।
5: एनीमिया मतलब एक प्रकार का ये रक्त विकार है जिसमें उनकी कमी बनी हुई होती है। उनकी कमी के लिए कई सारी चीजें हैं
4: जी।
5: जैसे कि हमारी जो रक्त कणिकाएं होती है उनका 120 दिन का आयु होती है, पर सिकल सेल वाले व्यक्ति जो होता है उनकी रक्त कणिकाओं की आयु जो होती है वो 120 दिन से कम हो जाती है और उनका शेप भी बदल जाता है। इसकी वजह से जो सिकल सेल रोगी होता है उसमें ये उनकी कमी बनी रहती है।
4: सर, अभी मैं आपसे जानना चाहूंगा यह बीमारी क्यों और कैसे होती है?
5: इस बीमारी का अभी तक तो कोई कारण कि किस वजह से ये होता है, पर चूंकि ये अनुवांशिक एक विकार है तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। यदि माता पिता को है तो उनकी संतानों में ये के जीन के तहत पहुंच जाता है
4: जी। विशेष रूप से महिलाओं में सिकल सेल की जानकारी होना क्यों महत्वपूर्ण है?
5: सिकल सेल महिलाओं के लिए जानना बहुत जरूरी है क्योंकि फिलहाल तो अभी हमारे पास सिकल सेल को रोकने का कोई उपाय नहीं है, पर यह है यदि आपको जानकारी सही है तो महिलाओं के यदि इस बारे में जानकारी है तो वो आगे विवाह के समय इस चीज को ध्यान में रखते हुए अपने विवाह को आगे बढ़ा सकते हैं, नहीं तो फिर वो उनकी संतानों में जाने की संभावना बनी रहती है
4: जी। बिल्कुल सर, अभी मैं आपसे जानना चाहूंगा यदि पति पत्नी दोनों सिकल सेल ट्रेट यानी कि सिकल सेल के वाहक हो तो क्या जोखिम हो सकती है?
5: सिकल सेल यदि पति पत्नी दोनों ट्रेट हैं तो इसमें बिल्कुल जो संतानें हैं इसमें कुछ संतानें सिकल सेल ट्रेट होंगी, कुछ सामान्य होंगी और कुछ संतानें इसमें सिकल सेल रोग से ग्रसित होंगी। तो इस बात का बिल्कुल इसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि दोनों पति पत्नी ट्रेट ना हों
4: जी। क्या गर्भवती महिलाओं को सिकल सेल की विशेष जांच करानी चाहिए?
5: बिल्कुल करानी चाहिए। गर्भवती महिला जो कि सिकल सेल पॉजिटिव यदि होती हैं वो या सिकल सेल रोग से ग्रसित होती हैं तो ऐसी गर्भवती महिलाएं हाई रिस्क होती हैं
4: जी,
5: जिनको कि डिलीवरी के समय या गर्भावस्था के दौरान किसी भी प्रकार के दुष्प्रभाव या कॉम्प्लिकेशन होने की पूरी संभावना बनी रहती है।
4: सर, हमारे श्रोताओं को अभी आप ये बताइए सिकल सेल रोग के प्रमुख लक्षण क्या है?
5: सिकल सेल रोग में जो सबसे पहला लक्षण जनरली सामान्य तौर पर देखने को मिलता है रोगी जो

0: अस्पताल आते हैं उनमें सबसे पहले लक्षण ये मिलता है कि रोगी को शरीर में बहुत तेज़ दर्द होता है, ज्वाइंट्स में और शरीर के कई हिस्सों में, पेट में, छाती में बहुत तेज़ दर्द होता है।
1: किन लोगों को सिकल सेल की जांच कराना अत्यंत आवश्यक है?
0: सिकल सेल की जांच तो सबसे पहले तो गर्भवती महिलाओं को तो ये कंपलसरी कर ही दिया है कि उनकी जो चार जांचें होती हैं उसमें हर बार सिकल सेल की जांचें होती हैं। इसके अलावा ऐसे लोग, बच्चे या युवा, जिनको बार बार खून की कमी हो रही है और पता नहीं चल पा रहा है कि किस वजह से शरीर में खून की कमी बनी हुई है, तो उनको सिकल सेल की जाँचें जरूरी करना चाहिए।
1: सर, आप इस विषय में क्या मार्गदर्शन करना चाहेंगे? क्या सिकल सेल रोग का इलाज संभव है?
0: सिकल सेल रोग का इलाज तो अभी संभव नहीं हो पाया, पर बहुत सारी दवाएं उपलब्ध हैं जिससे सिकल सेल के जो लक्षण हैं और उनके दुष्प्रभाव हैं उसको काफ़ी कम किया जा सकता है।
1: सर, अभी मैं आपसे जानकारी चाहूंगा। हाल ही में सिकल सेल रोग के प्रबंधन में आयुष विभाग द्वारा आयुर्वेदिक औषधियों को एड ऑन थेरेपी के रूप में शामिल किया गया है। आप कृपया हमारे श्रोताओं को बताएं कि यह पहल क्या है और इससे रोगियों को किस प्रकार लाभ मिलने की उम्मीद है?
0: मध्य प्रदेश शासन आयुष विभाग के द्वारा अभी कुछ महीनों पहले एड ऑन थेरेपी का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके तहत हम सिकल सेल के ऐसे रोगी जो पहले से दूसरी दवाइयां खा रहे हैं, अंग्रेजी दवाइयां, एलोपैथी दवाइयां खा रहे हैं, उसके साथ में ही हम आयुर्वेदिक और होम्योपैथी दवा, जैसी भी रोगी की च्वाइस हो, उसको होम्योपैथी या आयुर्वेदिक दवा हम साथ में वितरित करते हैं,
1: जी
0: जिससे उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में इम्प्रूवमेंट भी आ रहा है और अभी हमारे पास काफ़ी सारे पेशेंट हैं जो दवा खा रहे हैं और लाभ ले रहे हैं।
1: सर, हमारे आप श्रोताओं को बताइए, क्या आयुर्वेदिक एड ऑन थेरेपी सिकल सेल रोग के लक्षणों जैसे दर्द के दौरों, कमजोरी और जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने में सहायक सिद्ध हो रही है? इस संबंध में अब तक क्या अनुभव या परिणाम सामने आए हैं?
0: पिछले कुछ महीनों से सिकल सेल के रोगियों को एड ऑन थेरेपी के तौर पर आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी दे रहे हैं, होम्योपैथिक भी दवाइयाँ दे रहे हैं। इनमें दो चीज़ों में हमको लाभ देखने मिला है। एक तो पेन क्राइसिस, जो फ्रीक्वेंसी थी, जो उनकी आवृत्ति थी, वो काफ़ी कम हो गई है।
1: जी
0: जिनको महीने में 2 बार 3 बार ऐसा होता था, अब वो 2 महीने 3 महीने में 1 बार पेन क्राइसिस में आ रहे हैं।
1: जी
0: दूसरा, साथ में ट्रांसफ्यूजन की जो प्रवृत्ति थी वो भी कम हो गई है। जो
1: जी
0: पहले 2-3 महीने में हर 2 महीने में उनको ब्लड लगाना पड़ता था,
1: जी
0: अभी उसकी भी फ्रिक्वेंसी कम हो गई है। 3-4 महीने में 1 बार ब्लड उनको लगाना पड़ रहा है, तो बिल्कुल लाभ उनको मिल रहा है।
1: सर, क्या नियमित जांच और परामर्श से इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है?
0: जी, इस रोग में नियमित जांच और चिकित्सक के नियमित परामर्श ही एक अभी फिलहाल का उपाय है।
1: सर, अभी हम हमारे कार्यक्रम के उत्तरार्ध में हैं। मैं जाते जाते आपसे पूछना चाहूंगा, महिलाओं और परिवारों को इस बीमारी के प्रति जागरूक करने के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: जी, महिलाओं को सबसे पहले तो एक ये जानकारी सभी के लिए बड़ी जानना जरूरी है कि सिकल सेल रोग चूंकि पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, तो विवाह के पूर्व पुरुषों को भी और महिलाओं को भी अपने विवाह के पूर्व सिकल सेल की जांच करा लेनी चाहिए।
1: जी
0: इसीलिए करा लेनी चाहिए कि विवाह के पश्चात जब संतान होती है, तो सिकल सेल से ग्रसित होती है, तो वो हम उस संतान के इलाज में भी काफ़ी परेशान रहते हैं और जिसको हम लेकर आते हैं, जिस संतान को हम लेकर आते हैं, वो भी इस रोग से पीड़ित रहती, तो वो भी परेशान रहती। तो शादी के पूर्व जरूर सिकल सेल की जांच करें। सरकार के कार्यक्रम के तहत सभी जो महिला और पुरुष हैं उनके एक सिकल सेल की जांच होती है और एक कार्ड भी बनता है,
1: जी
0: जिस कार्ड को शादी के पहले मिलान करते हैं।
1: जी सर, आयुष विभाग द्वारा एड ऑन थेरेपी कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस एड ऑन थेरेपी कार्यक्रम के बारे में आप हमारे श्रोताओं से और विस्तार में क्या बातें साझा करना चाहेंगे?
0: मध्य प्रदेश शासन आयुष विभाग द्वारा जो एड ऑन थेरेपी चलाई जा रही है, उसमें मुख्य रूप से जो दवाइयों, जो औषधियां हम दे रहे हैं, मेन फोकस जो है वो है रसायन औषधियों पर। रसायन औषधियां हमारे पास ऐसी औषधियां हैं जो आपके शरीर को इम्यून बूस्टर का काम करती हैं। एक्चुअल में वो ऑल ओवर बॉडी को इम्प्रूव करने के काम करती हैं, और साथ में जो पेन क्राइसिस है उसके लिए भी कुछ विशेष दवाइयां उसमें हैं। तो ये दो चीज़ें विशेष तौर पे उस पर हैं।
1: जी
0: कुछ दवाइयाँ ऐसी भी हैं जो मेटाबॉलिज्म को भी प्रभावित करती हैं और ऑल ओवर हेल्थ को इम्प्रूव करती हैं।
1: जी सर, अभी मैं कार्यक्रम में अंतिम प्रश्न आपसे पूछता हूँ। आप हमारे श्रोताओं को बताइए, क्या किसी विशेष क्षेत्रों में सिकल सेल ग्रस्त रोगी ज्यादा संख्या में मिलते हैं या पाए जाते हैं?
0: जी हाँ, ये जो जनजातीय क्षेत्र हैं, वैसे भी ये एड ऑन थेरेपी जो है लगभग 22-23 जिलों में विशेष तौर पे जहाँ इसका ज्यादा प्रभाव है जनजातीय क्षेत्रों में, वहाँ इसको एड ऑन थेरेपी के तौर पे प्रारंभ किया गया
1: जी
0: था और अभी तो सभी जिलों में इसको शुरू कर दिया गया है।
1: डॉक्टर साहब, आपने सिकल सेल रोग के बारे में अत्यंत महत्वपूर्ण और उपयोगी जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। आपने बताया कि समय पर जांच, सही परामर्श, जागरूकता और नियमित उपचार के माध्यम से इस बीमारी के प्रभाव को काफी हद तक नियंत्रण किया जा सकता है। साथ ही आयुष विभाग द्वारा शुरू की गई आयुर्वेदिक एड ऑन थेरेपी के बारे में भी आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी। डॉक्टर साहब, आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल आप आज आकाशवाणी छिंदवाड़ा स्टूडियोज में उपस्थित

0: हुए और हमारे श्रोताओं के साथ बहुत ज्ञानवर्धक बातें साझा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी धन्यवाद।
2: बहनों, अभी आपने सुनी सिकल सेल जागरूकता दिवस 19 जून के अवसर पर डॉक्टर निरंजन विश्वकर्मा जी से अमोल शिंदे जी की बातचीत। और अब हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और एक चर्चा हम करेंगे योग और स्वास्थ्य स्वस्थ जीवन पर। इस बात से आप शायद कोई भी अनजान नहीं है कि योग स्वस्थ जीवन के लिए कितना आवश्यक है। योग के महत्व को आज पूरा विश्व जानता है और मानता भी है। इस जानने और मानने के बीच एक कड़ी है, योग को अपनाना। और लोग जो हैं वो यहीं पर चूक जाते हैं। योग की बात सभी करते हैं और योग के प्रभाव और महत्व को समझते भी हैं, लेकिन जैसे ही बात योग करने की आती है, अपने जीवन में अपनाने की आती है, तो बस या तो बोल देंगे कि समय नहीं है या फिर मेरे बस की बात नहीं है, ऐसा कहकर टाल दिया जाता है। तो आज इसी पर हम बात करेंगे, क्योंकि समय नहीं होने का बहाना तो मात्र बहाना ही है। जब आप एक बार ठान लेते हैं तो समय तो निकल ही आता है। हम नहीं कर सकते या फिर हमारे बस की बात नहीं है, ये बातें अगर आप केवल देख करके हिम्मत हार रहे हैं तो हम यही कहेंगे कि पहले तो करके देखें, शुरुआत तो करें। और कई बार ऐसा भी हम सुनते हैं कि हमने शुरू किया था लेकिन हमसे नहीं हो पाता। तो यहाँ देखने की बात ये है कि ऐसी क्या गलती होती है हमसे कि जो हम नहीं कर पाते। ये बात सही है कि योग में अपने आप बिना किसी के निर्देशन या देख रेख के कोई भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। अक्सर ऐसा करने पर ही लोग गलती कर बैठते हैं और निराश हो जाते हैं और कहते हैं कि हमसे नहीं होगा। और दूसरी बड़ी गलती जो लोग अक्सर करते हैं वो है पहले ही दिन से कठिन योगासन करने का प्रयास करना। जब भी आप शुरुआत करें तो ये समझें कि पहले तो कुछ समय अपने शरीर को हमें तैयार करना होता है, आदत डालनी होती है एक निश्चित समय पर प्रतिदिन योग करने की। समय अवधि भी धीरे धीरे ही बढ़ाएं। पहले ही दिन से 1 घंटा योग नहीं करना है। शरीर को आदत नहीं होने के कारण पहले ही दिन अगर थकावट महसूस होगी तो फिर अगले दिन हम योग करने के लिए तैयार ही नहीं होंगे और कह देंगे कि हमारे बस का नहीं है। शुरू में केवल श्वासों पर नियंत्रण करने वाले व्यायाम जैसे अनुलोम विलोम प्राणायाम ही करें और साथ ही हल्की गति वाले व्यायाम करें और फिर धीरे धीरे समयावधि को बढ़ाएँ और व्यायाम की सघनता को भी बढ़ाएं। इससे धीरे धीरे शरीर को इसकी आदत हो जाएगी और आपको अच्छा लगने लगेगा। जब स्वयं प्रसन्न मन से आप योग करेंगे तभी उसके जो लाभ हैं वो आपको मिल सकेंगे। इस तरह से सिस्टमैटिक तरीके से योग करने से ही स्वस्थ जीवन हम जी पाएंगे। सखियों, आने वाले कल के दिन यानी 21 जून को हम मनाने जा रहे हैं 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और इस वर्ष का मुख्य विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। तो संकल्प लें कि इस योग दिवस पर हम नियमित रूप से योग को अपनाएंगे और बढ़ती आयु के साथ स्वस्थ जीवन जिएंगे। ये थी हमारी चर्चा योग और स्वस्थ जीवन। और आइए अब मनोरंजन की बारी है तो एक गीत सुन लेते हैं।

बहनों, अब कार्यक्रम में बारी है 100% की एक बात की। तो अभी हम आपको बताएं कि परिस्थितियां सभी के साथ होती हैं, है ना, लेकिन हमारा नज़रिया उनके प्रति कैसा होता है यही तय करता है कि वे परिस्थितियां हमारे लिए समस्या बनेंगी, चुनौती बनेंगी या अवसर। हमारे मस्तिष्क की शक्ति को पहचाने, अगर आपका मन और या इच्छा शक्ति कमज़ोर है तो वो परिस्थितियां आपके लिए समस्या बन जाती हैं। अगर आपका मन शांत है, संतुलित है, तो उसे आप एक चुनौती के रूप में लेते हैं और स्वीकार करते हैं। और अगर आपकी इच्छा शक्ति मजबूत है, मन की मस्तिष्क की शक्ति को आप पहचानते हैं, तो वह आपके लिए अवसर भी बन सकती है। बहनों, ये तो थी हमारी 100% की एक बात। इस पर आप विचार करेंगे और अब समय है कि हम आपसे विदा लें। कैसा लगा आपको कार्यक्रम ये ज़रूर हमें बताइएगा। अगले कार्यक्रम तक के लिए दीजिए इजाज़त। अपनी दोस्त अनुराधा खत्री को नमस्कार।

अभी बहनें सुन रही थीं उनका अपना कार्यक्रम शक्ति रूपा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से प्रसारित किया जा रहा था। श्रोताओं, दिन के 10:35

0: माटी के स्वर की ये थी पहली प्रस्तुति जिसमें आपने सुना लोक भजन। कलाकार थे रविशंकर श्रीवास्तव और साथी।
1: आया खुशियों का पैगाम पीएम किसान, पीएम किसान।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
1: अन्नदाता

माटी के स्वर में अभी आपने बिलवारी गीत सुना, कलाकार थे शिवचरण परले और साथी। श्रोताओं, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त आज दिनांक 20 जून 2026 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा हुगली पश्चिम बंगाल से वितरित की जाएगी। ये आकाशवाणी छिंदवाड़ा है और इस वक्त आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम माटी के स्वर।

संगीता उपाध्याय के स्वर में अभी आप लोक रचना सुन रहे थे। लोक संगीत के कार्यक्रम माटी के स्वर में अगली प्रस्तुति प्रीतम सिंह ठाकुर के स्वर में।

प्रीतम सिंह ठाकुर के स्वर में चेतावनी लोकगीत अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी छिंदवाड़ा से अभी आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम माटी के स्वर, और अब माटी के स्वर की ये अंतिम प्रस्तुति सीमा शुक्ला के स्वर में बन्ना गीत।

सीमा शुक्ला के स्वर में अभी आप बन्ना गीत सुन रहे थे और इसी लोकगीत के साथ ख़त्म होता है लोक संगीत का कार्यक्रम माटी के स्वर। हम आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से बोल रहे हैं, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 11 बजने ही वाले हैं, कुछ ही पलों में विविध भारती सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे।

छूकर मेरे मन को, याराना फिल्म से। अभी ये गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज़ में। अनजान ने इस गीत को लिखा था और राजेश रोशन की तर्ज थी।

0: द ग्रेट गैम्बलर इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार आशा भोसले की आवाजों में। आप सुन रहे हैं इस वक्त विविध भारती से चित्रपट संगीत।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूं मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।

0: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए, तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें, तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 22 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत।

बड़े दिल वाला, ये था फिल्म का नाम। लता मंगेशकर, किशोर कुमार की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा था। आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत।

फिल्म पड़ोसन से ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर, आशा भोसले और सखियों की आवाजों में। राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा था, आर डी बर्मन की तर्ज थी।

मन दौड़ने लगता है। और ये गीत अभी आप सुन रहे थे रजनीगंधा फिल्म से मुकेश की आवाज़ में। योगेश ने इसे लिखा था, सलिल चौधरी का संगीत था। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम चित्रपट संगीत यहीं समाप्त होता है।

0: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान और आप सुन रहे हैं मैटिनी शो। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं पालघर पीठाधीश्वर योगिराज भारत भूषण भारतेंदु। विश्व योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपका बहुत बहुत स्वागत।
1: आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से विश्व योग दिवस के दिन पर। हमारे वेद भारती के तमाम भारत के सभी श्रोताओं को योगिराज भारत भूषण की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें।
0: क्या बात है। मुझे ये बताइए भारत भूषण जी, कि इस बार की जो थीम है वो है बढ़ती उम्र के साथ।

0: राज भारत भूषण की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, सदा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें।
1: क्या बात है। मुझे ये बताइए भारत भूषण जी कि इस बार की जो थीम है वो है बढ़ती उम्र के साथ योग। तो बढ़ती उम्र के साथ योग का क्या महत्व है, यहाँ से हम अपनी बातचीत को शुरू करते हैं।
0: बढ़ती उम्र के लिए ही योग के सानिध्य में जाना बहुत ही महत्वपूर्ण है।
1: जी
0: जैसा कि हम सभी लोग पहले शतायु हुआ करते थे, सभी लोग कम से कम 100 साल तक उम्र होती थी, लेकिन जो हम लोगों की सोसाइटी, हम लोग जैसे जैसे बढ़ते गए, जो एक तरह से मिलावट होता गया लाइफ में, सोसाइटी में, हमारे खान पीन में, सब में, जिसके कारण लोगों की उम्र जो है दर पदर थोड़ा कम होता गया। तो ये जो अभी का जो मिशन चल रहा है हमारे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, 100 दिन का योग महोत्सव चल रहा है पूरे भारत में।
1: जी
0: तो जैसे 100 दिन का योग महोत्सव चल रहा है, तो हम लोग का पूरा प्रयास है कि लोग शतायु हों, 100 साल जिए इस योग को सीख करके, तो उम्र को बढ़ाया जाए
1: और स्वास्थ्य को भी बढ़ाया जाए,
0: बढ़ाया जाए।
1: है ना। अच्छा मुझे ये बताइए कि 40 पार के बाद के जो लोग हैं, जो 40 बरस पार करके अब थोड़ा आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, उनके जीवन में योग कितना जरूरी है और वो अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी के बीच कितना समय निकालें कि वो रोज योग कर पाए।
0: देखिए रही बात जो 40 के ऊपर वाले उम्र के जो भी लोग हैं, हम तो सदा से ही पूरे भारत में ही योग का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो मैक्सिमम लोगों को पूछने पता चलता है कि आप अपने लिए कुछ करते हैं कि नहीं करते। तो जो अपने उम्र बताई कि 40 वर्ष के ऊपर वालों के लिए, तो उन लोगों के लिए समय नहीं रहता, बोलते हमारे लिए समय ही नहीं मिलता खुद के लिए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि 40 के ऊपर वालों को 24 घंटे में अपने लिए थोड़ा सा समय निकालना योग के लिए बहुत ही आवश्यक है।
1: ये जो थोड़ा सा है इसमें कितनी मात्रा है ये समय
0: थोड़ा
1: की?
0: सा मात्रा में कम से कम 20 मिनट।
1: जी कम से
0: जी,
1: कम बीस
0: कम से
1: मिनट
0: कम 20 मिनट।
1: और अगर बहुत दिल से निकालें तो कितना हो जाएगा
0: दिल से
1: वो?
0: निकाले तो 45 मिनट, 1 घंटे कर लें तो सोने पे सुहागा है।
1: क्या बात है
0: जी
1: जी। तो क्या क्या करना चाहिए, जैसे 20 मिनट का समय है जिस व्यक्ति के पास, वो क्या क्या करे, और जो व्यक्ति थोड़े बड़े दिल वाला है 45 मिनट निकाल रहा है, वो क्या क्या करे?
0: देखिए सबसे फर्स्ट जो पहला है,
1: जी
0: 40 ही नहीं, बूढ़े बच्चे जवान सभी को करना चाहिए, पहला तो है श्वास
1: जी
0: से रिलेटेड।
1: हाँ
0: श्वास के एक्सरसाइज प्राणायाम तो सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
1: जी
0: और 40 को देखा जाए तो उनको युवा में माना जाता है, यंग, हमारी जो पावर है, यूथ भी कह सकते हैं हमारे देश के, तो उनके लिए आप प्राणायाम के साथ साथ सूर्य नमस्कार बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 10 राउंड 15 राउंड सूर्य नमस्कार आवश्यक है। उसके अलावा आप स्टैंडिंग में है, सीटिंग में है, लाइन डाउन में है, इसमें बहुत से आसन हैं जो कि करके 40-45 मिनट में अपने को एकदम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रख सकते हैं। और इसमें ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ध्यान भी करना जरूरी है, मेडिटेशन।
1: जी तो मेडिटेशन हो गया, प्राणायाम हो गया। प्राणायाम
0: आसन
1: में कौन कौन से प्राणायाम जो है वो बहुत जरूरी है? भ्रामरी, शीतली,
0: जी जी जी
1: है ना।
0: हाँ प्राणायाम में शुरू में तो जैसे शोधन क्रिया कर लीजिए, भस्त्रिका करके
1: हाँ,
0: अपने फेफड़े
1: सबसे पहले
0: क्लीन
1: भस्त्रिका
0: करते
1: करना
0: हैं,
1: है।
0: कपालभाति,
1: सबसे पहले
0: कपालभाति
1: जी,
0: देन उसके बाद में भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, शीतली, शीतकारी, उज्जयी,
1: इतने सारे कर रहे हैं।
0: हाँ अंत में ओम चैंटिंग कर लीजिए।
1: अच्छा
0: ये पूरा पैकेज हो गया
1: जी,
0: ये
1: जी, जी।
0: महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, सभी के लिए कॉम्बो है।
1: ये जो आपने प्राणायाम बताए इतने सारे
0: जी,
1: इनका हमारी सेहत पर क्या असर पड़ता है और इनसे क्या चीजें बैलेंस होती हैं?
0: इनसे सबसे पहले तो जो शुरुआत है
1: जी,
0: कपालभाति से अपने फेफड़े की शुद्धि होती है।
1: अच्छा
0: जो दिन भर चलते हैं, पोल्यूशन है अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्लीन होता है, ये शुद्ध हो जाता है फेफड़ा। और भस्त्रिका है, उसकी कैपेसिटी बढ़ाती है, उसको मजबूत करता है, स्ट्रांग करता है, कैपेसिटी, उसकी क्षमता बढ़ाती है लंग्स को। और अनुलोम विलोम, ये नाड़ी शोधन प्राणायाम कहा गया इसको।
1: अच्छा
0: हम लोगों के शरीर में 72,000 नाड़ियां होती हैं
1: जी जी,
0: जिसमें 3 प्रमुख नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो इन तीनों को बैलेंस रखने के लिए इसको नाड़ी शोधन प्राणायाम अनुलोम विलोम कहा गया है
1: जी,
0: जिससे नाड़ियां सब बैलेंस रहती हैं
1: जी।
0: और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट आता है भ्रामरी प्राणायाम, जो कि मस्तिष्क के लिए बहुत ही फायदेमंद है। जैसे आप सुनते भी होंगे कि लोग बोलते हैं आज मूड अच्छा नहीं है, कभी होता है कि बहुत अच्छा मूड है, कभी ऑफिस का काम पेंडिंग है, किसी से तक जग भी हुआ है, लेकिन मूड अच्छा रहता, चलो जो होगा देखा जाएगा। और कभी ऐसा होता है कि सारे काम सब हुए हैं सब कुछ अच्छा है लेकिन मन उदास रहता है, पता नहीं।

0: क्या हो गया, तो ये मूड ऑफ और ऑन है। तो ये जो मूड अच्छा रखने के लिए भ्रामरी प्राणायाम बहुत इंपॉर्टेंट है।
1: अच्छा,
0: जो हमारे सिर में पिट्यूटरी ग्लैंड्स होते हैं, भ्रामरी करने से उसमें एक सिक्रीशन टाइप का होता है, जिससे मूड अच्छा रहता है, मस्तिष्क में लुब्रिकेशन बनाते, जैसे इंजन में व्हील ऑयल होता है ना, इंजन में ऑयल बराबर है तो अच्छे से चलती है।
1: जी
0: इसी तरह हमारे मस्तिष्क में भी वो जो सिक्रीशन होता है उससे मूड अच्छा रहता है।
1: अब देखिए ना,
0: तो
1: हम रेडियो पर हैं
0: जी
1: तो सब कुछ हमको बोलकर ही बताना है,
0: हाँ,
1: करके दिखा नहीं सकते,
0: दिखा नहीं
1: पर
0: सकते।
1: भ्रामरी प्राणायाम वही है ना जिसमें उंगलियों से
0: हाँ,
1: आंखों को
0: आंखों
1: ढका
0: को बंद
1: जाता
0: करते
1: है।
0: हैं और अंगूठे से दोनों कानों को बंद करना है,
1: जी
0: मुंह बंद रखना है,
1: हाँ
0: पूरा सांस नाक से अंदर लेना है
1: जी,
0: और मुंह बंद करके ही नाक से सांस को छोड़ना है और हमिंग करना है,
1: हमिंग
0: बटरफ्लाइट
1: करना
0: की
1: है।
0: तरह।

0: जी, और
1: और
0: उससे जो कंपन होते हैं,
1: कंपन होगा अपने सिर
0: जी
1: में, तो जब वहाँ कंपन होता है तो वहाँ से फिर वो सीक्रेशन होता है,
0: जी,
1: माइंड कूल रहता है,
0: क्या बात है।
1: फिर उसके
0: तो
1: बाद
0: प्राणायाम की बात हुई,
1: जी
0: ध्यान की भी बात करेंगे, लेकिन आपने ना सूर्य नमस्कार की बात की है।
1: जी
0: मैंने देखा है बहुत सारे लोग जो शुरुआत करते हैं वो 12-25 है ना, 50 ऐसा करते हैं, लेकिन जो धाकड़ लोग होते हैं वो तो बहुत सारे सूर्य नमस्कार करते हैं। जो बंदा अभी अपने लिए जरा भी वक्त नहीं निकाल रहा है, वो शुरू करे तो कितने से करे कि वो अगले दिन के लिए खड़ा हो पाए।
1: देखिए, जो कभी नहीं किया है
0: जी
1: हाँ, तो उसको आप शुरू में एक राउंड से शुरू करिए।
0: अच्छा
1: योग का मतलब ही है जोड़ना,
0: जी
1: योग प्लस है जोड़ना। तो अपने शरीर में, अपने लाइफ में अगर स्वास्थ्य को लाना है, जोड़ना है, तो उसको धीरे धीरे धीरे धीरे स्वतः स्वतः, पहले एक राउंड मतलब दो स्टेप, लेफ्ट एंड राइट, जैसे 12 काउंटिंग का एक सूर्य नमस्कार होता है, 12 लेफ्ट लेग से, 12 राइट लेग से। तो एक राउंड आप पहला दिन करिए,
0: अच्छा
1: फिर दूसरे दिन दो राउंड करिए, एक हफ्ते तक आप दो राउंड तीन राउंड ऐसे करिए, जैसे जैसे आपको अच्छा लगे, धीरे धीरे धीरे धीरे उसको
0: बढ़ाइए।
1: बढ़ाते
0: नहीं,
1: जाइए।
0: कई लोग जोश में आते हैं तो फिर किसी की कमर, किसी का कुछ
1: हाँ जी, ये सही कह रहे हैं। तो
0: जी
1: जोश में आकर होश नहीं खोना है,
0: बिल्कुल
1: योग हम कर रहे हैं, तो ये हमें ध्यान में रखना है कि हम योग कर रहे हैं,
0: जी
1: योग को धीरे धीरे जोड़ना है।
0: जी सामान्य रूप से कितने सूर्य नमस्कार सवेरे सवेरे कर लेना एक अच्छी जीवन शैली की निशानी है।
1: देखिए, जो ऑफिस वाले हैं, वर्किंग में हैं, तो उनके लिए 10 से 15 सूर्य नमस्कार अच्छे से हर पोज को मेंटेन करते हुए करें तो
0: काफी होता है।
1: काफी होता है।
0: अब मैं आपको आपके पसंदीदा विषय की तरफ लेके जाता हूं। ये जो सूर्य नमस्कार है, इसके फायदे बताइए कि क्या क्या हैं। इसको संपूर्ण योग कहा जाता है ना।
1: जी, सूर्य नमस्कार में कई आसन एक साथ हो जाता है
0: जी
1: हाँ, तो उससे क्या होता है कि आपको अलग अलग कई आसन करने की आवश्यकता नहीं, फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड लेटने का भी हो जाता है। इसमें कई आसन हो जाते हैं, भुजंगासन से लेके पर्वतासन, ऐसे कई आसन उसमें हो जाते हैं, तो जिससे आपको अलग अलग आसन करने की आवश्यकता नहीं है। एक तरह से काम्बो जो सूर्य नमस्कार किया जाता है, वो बेनिफिट आपको पूरा हेड टू टोज तक
0: मिल जाता
1: मिल
0: है
1: जाता है।
0: जी।
1: ये
0: तो
1: सबसे
0: ये एक
1: इम्पोर्टेंट है,
0: सबसे इम्पोर्टेंट बात है,
1: सूर्य नमस्कार
0: और पूरे दिन आप बहुत ज़्यादा जोश में रहते
1: जोश
0: हैं।
1: में रहते हैं। और जिनको ये भी ध्यान रखना है कि इसी योग इंस्ट्रक्टर के सानिध्य में ही करें। कभी कभी क्या है, कोई प्रॉब्लम रहते हैं तो फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करना है, जो दिक्कतें हैं
0: जी,
1: तो उसको उसके हिसाब से धीरे धीरे क्या करना है, कितना करना है, उसके हिसाब
0: और
1: से
0: आपकी
1: वो
0: जो शारीरिक परिस्थितियां हैं
1: उसके
0: वो
1: अनुसार।
0: बाकायदा ईमानदारी से
1: जी
0: बताना है कि
1: हाँ,
0: भाई ये
1: जिन
0: समस्याएं
1: जिनकी
0: हैं।
1: एज ज़्यादा है उनको ध्यान में रखना है
0: हाँ, मैं वही
1: इन
0: पूछने आ रहा
1: सबको।
0: था बिल्कुल, कि बुजुर्गों के लिए सूर्य नमस्कार, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति 50-60 की उम्र या उससे ज्यादा की उम्र का है और वो करना चाहता है,
1: जी,
0: तो वो क्या करे और क्या ना करे।
1: कि बुजुर्गों के लिए सूर्य नमस्कार, पहली बात तो किसी योग गुरु के सानिध्य में रह करके धीरे धीरे करें। बुजुर्गों में बहुत से हमारे शिष्य ऐसे हैं जो कि एज उनकी काफ़ी है, लेकिन बहुत अच्छा सूर्य नमस्कार करते हैं।
0: जी,
1: क्यों कर लेते हैं कि वो शुरू से ही
0: नियमित
1: वो
0: रूप से करते आए
1: नियमित
0: हैं।
1: रूप से योग और सूर्य नमस्कार आसनाज वगैरह खूब अच्छे से करते हैं, तो बहुत अच्छे कर लेते हैं। लेकिन जो अभी नए हैं, जिन्होंने कभी किया नहीं, तो उनको बहुत ही ध्यान में रहकर उनको सभी जो आसन से धीरे धीरे स्टेप बाय

0: करके उनको फिर अपने रूटीन में लाना है सूर्य नमस्कार को, और बहुत तनाव या प्रेशर दे करके जोश में नहीं करना है।
1: जी, मैं समझ गया।
0: जी,
1: मुझे ये बताइए कि मनाही नहीं है ना बुजुर्गों को सूर्य नमस्कार करने के लिए?
0: कोई भी चीज़ इसमें ऐसा मना ही नहीं, लेकिन हर योग को कोई अगर रोगी है, कोई व्याध से व्याधित है, तो उसको उसके अनुसार योग को करना चाहिए और योग गुरु के सानिध्य में करना चाहिए। बहुत सी चीज़ें जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको क्या नहीं करना है। पहले कोई व्याधि से ग्रस्त है तो उनको उस व्याधि में कौन से आसन नहीं करने हैं वो ध्यान रखना है, तो वो ना करते हुए फिर उसके बाद में क्या करना है वो करना चाहिए।
1: बिल्कुल। अच्छा, अब मैं इस बात की तरफ आ रहा हूं कि आजकल क्या हो गया है कि सब जगह कंप्यूटर हैं, लोग जो हैं वो अपने दफ्तरों में अपने लैपटॉप पर या अपने सिस्टम पर बैठे हैं और दिन दिन भर बैठे हैं। बीच में थोड़ा ब्रेक लिया, चाय वाय पी, उसके बाद फिर बैठे तो पता चला पूरे दिन का बैठना जो है वो 12 घंटे 15 घंटे हो गया। ऐसे लोगों के लिए कौन कौन सी सावधानियां हैं, और उनको, क्योंकि देखते ये हैं कि किसी की गर्दन दुख रही है, किसी की कमर दुख रही है, किसी की कूल्हे दुख रहे हैं, टेल बोन की समस्या हो गई है, बहुत तरह तरह की जो लाइफस्टाइल की डिजीजेस हैं वो बढ़ रही हैं। तो ये ऑफिस वर्किंग पीपल के लिए आप खास तौर पर क्या कहेंगे?
0: देखिए, ऑफिस वर्कर्स ही नहीं,
1: जी
0: आज का जो समय चल रहा है यूनुस जी, लोगों का हर चीज़ पर्सनलाइज की तरफ जा रहे हैं। सबका अपना होना चाहिए सब कुछ, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, सबको अपनी चीज़ चाहिए। अपना मोबाइल, अपना गाड़ी, अपना घर, अपना कमरा, अपना लैपटॉप, सारे पर्सनल चीज़ें होती जा रही हैं। तो उसमें हमने योग को पर्सनलाइज किया है। जैसे ऑफिस में जो काम करते हैं उनके लिए ऑफिस योगा, स्टूडेंट्स के लिए स्टूडेंट योगा, गृहिणियाँ जो अपने घर में रहती हैं, सुबह बच्चों का स्कूल है, हस्बैंड का ऑफिस है, सास ससुर उनकी सेवा करना है तो किचन में ज़्यादा समय रहती हैं तो उनके लिए किचन योगा है, किसानों के लिए किसान योगा है, पत्रकारों के लिए पत्रकार योगा है, पुलिस वालों के लिए पुलिस योगा है, यंग्स के लिए योगा 2020 है। तो ऐसे ऐसे पर्सनलाइज हमने योग का पैकेज रखा है। तो जो ऑफिस में जो काम करते हैं उनका, क्योंकि कारण क्या है कि वो ज़्यादातर लैपटॉप पर रहते हैं, कंप्यूटर पर रहते हैं, 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे, वो उनको ख्याल नहीं रहता कि हमारा पोस्चर किधर है क्या है, वो अपने काम में व्यस्त रहते हैं। तो जिसके तनाव के कारण उनके शरीर में किसी भी पोस्चर में कोई भी कभी भी खिंचाव आ गया तो वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं
1: जी
0: ऑफिस वालों के लिए। तो ऑफिस वालों के लिए समय दूर से आते हैं तो उनको समय भी नहीं मिलता है, तो अपनी कुर्सी पर बैठ करके कुछ चीज़ें हैं जो वहाँ टाइम टाइम पे 1-2 घंटे बीच में रेस्ट गैप ले करके वो योग करके, ऑफिस योग का करके वो स्वस्थ रह सकते हैं। उनको बैक का प्रॉब्लम नहीं होगा, स्पॉन्डिलाइटिस नहीं होगा, स्ट्रेस नहीं होगा मेंटली, तो वो ऑफिस के लिए ऑफिस योगा
1: तो
0: बहुत ही
1: आपने इस तरह से वर्गीकरण
0: फायदेमंद
1: कर
0: है।
1: लिया है,
0: जी
1: अलग अलग लोगों के लिए
0: हाँ,
1: अलग
0: जिससे
1: अलग तरह
0: सब
1: के
0: सभी
1: योग जो
0: स्वस्थ
1: हैं
0: रहें।
1: तय कर लिए आपने।
0: जी
1: अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि आपका तो बहुत बड़ा अनुभव है और आप न केवल कई बड़ी हस्तियों को सिखाते हैं बल्कि जनता के बीच योग की जो लोकप्रियता है उसको बढ़ाने का
0: जी
1: काम आप कर रहे
0: जी जी
1: हैं। विश्व योग दिवस तकरीबन 2015 से मनाया जा रहा
0: जी
1: है। बीते इन 11 सालों में आपने क्या देखा है? क्या योग की लोकप्रियता और इसके प्रति लोगों का रुझान अब बढ़ता जा रहा है?
0: अब कुछ बहुत ही बढ़ता जा रहा है हमारे देश में, नहीं पूरे विश्व में योग के प्रति। और जब से कोरोना का समय आया है
1: जी
0: उसके बाद से लोगों में जागरूकता बढ़ी है, स्वयं अपने स्वास्थ्य के प्रति लोग जागरूक हुए हैं, और जिसका कारण है कि आज हम देखते हैं कि हर पार्क में लोग इकट्ठा होते हैं, जो योग कर सकते हैं योग करते हैं, टहलने का काम करते हैं। ऐसे बहुत सी चीज़ें जो कि अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो करके लोग अपने स्वास्थ्य के लिए लाभ उठाने का कार्यक्रम कर रहे हैं, तो लोगों की जागरूकता बहुत बड़ी है अपने स्वास्थ्य के प्रति। लोग
1: जी
0: अच्छा खाना चाहते हैं, अच्छी लिविंग स्टाइल, और योग के प्रति, योग ध्यान प्राणायाम साधना, इसके प्रति तो लोगों की रुचि बहुत ही बढ़ी है। और हम लोग अनवरत प्रयास कर रहे हैं कि घर घर योग, सभी रहे निरोग।
1: वाह। अच्छा, एक बड़ा जो लोगों का रुझान है वो है वजन घटाने की तरफ, क्योंकि अमूमन अब लोग ओवरवेट होते
0: जी
1: हैं,
0: जी जी
1: पर बहुत कोशिशें करते हैं और वजन घटता ही नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या बताएंगे कि केवल योग करना ही काफी है या उसके लिए एक संपूर्ण पैकेज होता है।

0: किस तरह से आप क्या खाए पिए, कैसे जिए कि वजन भी नियमित रूप से कम हो और एक संतुलित जीवनचर्या बन सके।
1: जी, रही बात वज़न कम करने की, तो आप देखते हैं कि अमूमन लोग चाहते हैं कि हम योग से बहुत कम समय में वज़न को कम कर लें, तो ऐसा
0: चमत्कार
1: चमत्कार और संभव नहीं है,
0: जी।
1: क्योंकि जितने समय में जो वज़न बढ़ा है,
0: हाँ, कई लोग तो बहुत जल्दी बढ़ा लेते हैं जंक
1: हाँ,
0: फूड
1: 5 साल
0: खा
1: में, 2 साल में,
0: खा
1: हाँ, इतने टाइम में बढ़ा है, तो उसको कम करने में भी समय लगेगा,
0: के जी
1: और योग से जो वज़न आपका कम होगा वो ज़्यादा दिनों तक मेंटेन रहेगा। तो योग ही नहीं, योग के साथ आपको अपने आहार विहार पर भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हम क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं, उसके साथ में वर्कआउट जो आप करेंगे, योग का सबसे अच्छा रिजल्ट आता है आपका सूर्य नमस्कार से, उसके साथ साथ सब जितने भी अपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, प्राणायाम है, मेडिटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेडिटेशन से आप केवल फिजिकली नहीं, मेंटली भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण फायदे होते हैं ध्यान से, क्योंकि
0: अच्छा
1: सब कुछ ब्रेन से ही संचालन होता है।
0: जी।
1: हाँ, जैसे रोगों का शुरुआत होता है स्ट्रेस से होता है, लोगों को पता नहीं, लेकिन स्ट्रेस हो गया तो कहाँ से होता है, ब्रेन से ही होता है, तो उसके बाद ही तरह तरह की बीमारियाँ मेनू की तरह जुड़ती जाती हैं। तो ध्यान बहुत इम्पॉर्टेंट है, मेडिटेशन।
0: बिल्कुल। तो मेडिटेशन तो कहीं भी किया जा सकता है, चाहे वो आप अपने ऑफिस में हो,
1: कहीं भी कर
0: स्कूल में
1: सकते
0: हो,
1: हैं
0: कॉलेज में हो,
1: आप,
0: घर पे हो
1: कभी भी कहीं भी कर सकते हैं मेडिटेशन,
0: जी।
1: और हम लोग तो हमेशा मेडिटेशन में रहते हैं।
0: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आपने आहार विहार की बात की, आजकल जंक फूड का चलन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, लोग कहीं भी
1: जी
0: खड़े हो जाते हैं
1: जी
0: और
1: जी
0: सड़क के किनारे के किसी भी चीज़ों को खा लेते हैं और फिर वो कहते हैं कि सेहत की समस्याएं होती हैं और वज़न बढ़ रहा है वगैरह वगैरह। क्या योग करने वाले व्यक्ति की जीवनचर्या के तहत आप ये इजाज़त देते हैं कि वो इस तरह से मज़े से बाहर खाता पीता रहे?
1: देखिए, सब कुछ हमारे ब्रेन से ही सब कुछ संचालन होता है,
0: जी
1: मस्तिष्क से ही,
0: जी
1: और अपने को ध्यान में रखते हुए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप क्या खा रहे हैं, किस भाव से खा रहे हैं। तो वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप योग ध्यान से अपने जीवनचर्या को, आहार विहार को संतुलित किए हुए हैं, तो आप बाहर की चीज़ों को आप ज़्यादा कंज्यूम नहीं करेंगे, क्योंकि आपको अपने सेहत के प्रति आप जागरूक हो रहे हैं। और रही बात बाहर की खाने की, तो आप अच्छे भाव से खाएंगे, तो भगवान शिव ने विष को भी धारण कर लिया था, लेकिन वो उनको नुकसान नहीं किया, तो कहने मतलब कि ज़बरदस्ती जानबूझ के नहीं खाना पीना है, लेकिन कभी हो गया तो
0: जरूरत से ज्यादा नहीं
1: जी, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं।
0: जी। आज के नौजवानों का क्या रुझान आप देख रहे हैं योग के प्रति, और क्या कुछ ऐसे नौजवान थे जिन्होंने अपनी जिंदगी में अपना बहुत सारा नुकसान कर लिया था और उन्हें आप सही रास्ते पर लाए?
1: ऐसे बहुत से नवयुवक हमसे मिलते हैं, बहुत से मिले हैं, जो कि बॉडी बिल्डिंग भी करते थे, और अनियमित दिनचर्या के कारण उनके फिजिकल सिस्टम भी चेंज हो गए थे, बेडोल हो चुके थे, लेकिन उनको सही मार्ग मिलने पर, जैसे हमसे मिलते हैं तो बोलते हैं, गुरु जी आप जैसे 20 साल पहले थे वैसे ही अभी भी हैं। हाँ, तो उनको एक प्रेरणा भी मिलती है कि कोई भी जैसे योग फील्ड में है, आप देखेंगे तो फिट ही रहते हैं,
0: जी
1: तो उससे लोगों को प्रेरणा मिलती है। और युवा शक्ति भी, अब हमारी जेंजी, जो आजकल जेंजी बोलते हैं, बहुत ही समझदार और बहुत ही होनहार बच्चे हैं, और वो सब चीज़ों को समझते हैं, और हमसे आपसे ज़्यादा वो जागरूक हैं, और उनको क्या आवश्यकता है, क्या ज़रूरी है लाइफ के लिए, वो कर रहे हैं, सही दिशा में वो जा रहे हैं, अपने भविष्य को भी लेकर हमारे देश को भी आगे बढ़ा रहे हैं। तो बच्चों में और नवयुवकों में तो बहुत परिवर्तन आया है, और मैंने देखा है कि जिम भी करते हैं और योगा भी करते हैं, मेडिटेशन प्राणायाम भी करते हैं। तो
0: बिल्कुल। बहुत सारे छात्र ऐसे हैं, आज की दुनिया ऐसी है जहाँ स्क्रीन की तरफ रुझान बहुत ज़्यादा है, इसलिए उनका जो ध्यान बहुत भटकता है पढ़ाई में, क्योंकि
1: जी
0: मोबाइल हाथ में है, अगर एक बार सोशल मोबाइल मीडिया में घुस गए तो कई घंटे चले जाते हैं और उनकी पढ़ाई नहीं हो पाती। ये जो फोकस है
1: जी
0: इसके लिए किस तरह के योग करने चाहिए, ये छात्रों की बात कीजिए आप।
1: सबसे पहले तो हम छात्रों की बात आती है, और मैं योगी ही योगीराज हूँ, तो हमारे जो छात्र हैं, चाहे वो जूनियर कॉलेज को हों चाहे कॉलेज के, पहला तो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे और उनसे आशा भी करेंगे, तो

0: कि जीवन में ब्रह्मचर्य को अपनाएं, जीवन का जो मूल है वो शक्ति का, वीरवान बने और शौर्यवान बने। और उसके साथ साथ जो मोबाइल की जो स्क्रीनिंग है, मोबाइल है, लैपटॉप, स्क्रीन का जो ज़माना चला है, तो उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो हमारा योग और मेडिटेशन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आज के इस स्क्रीनिंग से। तो उसके लिए भी मोबाइल चर कह लीजिए कि मोबाइल स्क्रीन को भी अपने लाइफ में जितनी आवश्यकता है सीमित करना है, और किस फील्ड में उसे में क्या लाभ है उसको जोड़ना है, और खुद से उनको समझ करके उनके लाइफ में क्या ज़रूरी है। स्टडी बच्चों को पढ़ना भी स्क्रीन के अलावा हो नहीं रहा है, तो जो इम्पॉर्टेंट है जितना समय सीमित है उतना ही उसको उपयोग करें, और फिजिकली वर्क में भी अपने को ध्यान दें, खेल कूद भी करें, योग करें, प्राणायाम करें, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है।
1: जी, एक और बहुत ज़रूरी बात और एक बहुत बड़ा वर्ग जिसकी बात मैं करना चाहता हूँ, वह है हमारी महिलाएं। उनमें से कुछ हैं जो गृहिणियाँ हैं,
0: जी
1: और बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो बाहर काम करने जाता है। उनके जिम्मे बहुत सारे काम हैं, तो वो घर भी संभालती हैं,
0: जी
1: बच्चों को भी ध्यान देना है, और ऊपर से फिर अपना जो काम है वो भी नियमित रूप से करते रहना है। ऐसे में वो अपने स्वास्थ्य को अमूमन नज़रअंदाज करती हैं। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
0: पहले तो हम अपनी देश की नारी शक्ति को हम प्रणाम करना चाहेंगे कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी शायद ही कोई उठा सकता है। और रही बात उनको खुद की, अपने स्वास्थ्य की, तो हम तो कह रहे हैं कि मैक्सिमम जो हमारी गृहिणियाँ हैं, हमारी नारी शक्ति हैं, वो अपने पर ध्यान नहीं रखती हैं, ध्यान ही नहीं दे पाती, क्योंकि कितना उनका व्यस्त जीवन रहता है सुबह से शाम तक का। बहुत से हमारे नारी शक्ति हैं जो कि घर का भी काम करती हैं, ऑफिस का भी काम करती हैं, उनको भी हम कहना चाहेंगे कि 24 घंटे में 20 मिनट अपने लिए समय कैसे भी निकालें, क्योंकि इस शरीर से ही पूरा संसार है, इस शरीर से ही पूरा घर परिवार है, समाज है, सोसाइटी है, इस शरीर से ही है। तो अपने शरीर के लिए थोड़ा समय निकाल कर सुबह या शाम जब भी समय मिले, नहीं कुछ तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज 5 मिनट ध्यान शुरू करें, तो उससे क्या है कि उनको, महिलाओं को बहुत ज़्यादा चैलेंजेज होते हैं, तरह
1: जी,
0: तरह की
1: मन भी कई बार अशांत रहता है।
0: अशांत रहता है मन, और सब मन से ही सारी चीज़ें होनी है, और बहुत से ऐसी जो व्याधियाँ हैं कि उनको बहुत जल्दी परेशान करती है, गायनोलॉजिकल हुआ या इससे बहुत सी चीज़ें हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही फायदेमंद है जो योग, मेडिटेशन और
1: क्या
0: प्राणायाम।
1: महिलाएं सूर्य नमस्कार कर सकती हैं?
0: क्यों नहीं कर सकती है? बहुत अच्छे से कर सकती हैं, करती हैं,
1: जी
0: लेकिन ज़्यादा एज के हैं उनको सावधानी रखनी पड़ेगी, और जो भी करें सीख करके योगा इंस्ट्रक्टर या गुरु के सानिध्य में करके करें, करती हैं सब, यंग हैं नारी शक्ति, तो सूर्य नमस्कार भी कर सकती हैं, 20 मिनट 25 मिनट करके पूरे दिन स्फूर्ति से काम कर सकती हैं।
1: लेकिन किसी इंस्ट्रक्टर की निगरानी में करना ज्यादा अच्छा
0: हाँ,
1: है।
0: सीख लें तो वो बेहतर है, क्योंकि
1: जी
0: योग अगर सही किया गया तो गुणनफल में फ़ायदा होता है,
1: जी
0: अगर गलत किए तो गुणनफल में उसका नुकसान भी हो सकता है,
1: जी
0: तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि गुरु के सानिध्य में रह करके सीख के करें।
1: चलते चलते आप हमारे श्रोताओं से विश्व योग दिवस पर क्या कहना चाहते हैं, और उसके बाद, क्योंकि आप बांसुरी भी बजाते हैं, तो हम सबसे अंत में आपका संगीत भी सुनेंगे। पहले विश्व योग दिवस पर आप अपनी बात कहिए जो हमारे श्रोताओं से आप कहना चाहते हैं।
0: हम अपने सभी विविध भारती के सभी श्रोताओं को हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो योग महोत्सव का जो पर्व चल रहा है हमारे देश में 100 दिन का, और 21 जून को हम लोग अंतिम महोत्सव का मनाएंगे, और ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि लोग 21 जून को ही ज़्यादातर लोग योग करते हैं, उसके बाद बहुत से लोग छोड़ देते हैं
1: मतलब हर साल 21 जून को
0: 21 जून को
1: करते
0: साल में एक बार ही करते हैं, पूरे जोश से सब बढ़िया टी शर्ट खरीदेंगे, बढ़िया ट्रैक वगैरह खरीद के
1: हाँ
0: योगा मैट भी खरीद लेते हैं,
1: हाँ
0: तो एक दिन करते हैं उसके बाद फिर रख देते हैं।
1: जी
0: तो हम अपने विविध भारती के तरफ से हम सभी श्रोताओं को, पूरे विश्व के सभी लोगों से आह्वान करना चाहेंगे, केवल 21 जून को ही न करें,
1: जी
0: पूरे वर्ष भर करें, हर दिन योग अपने जीवन में अपनाएं और स्वस्थ और सुंदर बने रहें, यही हमारी श्रोताओं से हमारा निवेदन है।
1: और
0: और
1: अब हम आपसे बांसुरी सुनना चाहेंगे।
0: जी, हम बांसुरी सुनाएंगे श्रोताओं को, और इस बांसुरी धुन के साथ में हमारे श्रोता आराम से बैठ जाएंगे, अपनी अपनी आंखें बंद करेंगे, तो थोड़ा सा मेडिटेशन हमारी बांसुरी की धुन पर, आंखें बंद करके श्वास लें, श्वास अंदर श्वास बाहर, अपने श्वास को देखें।

0: बहुत ही मीठी बांसुरी की धुन आपने सुनाई और हमारे जो श्रोता हैं उन्होंने इस धुन के सहारे ध्यान जरूर किया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पालघर पीठाधीश भारत भूषण भारतेंदु जी, आप विविध भारती में आए और आपने योग के इतने सारे गुर हमें बताए और उसके महत्व पर प्रकाश डाला। फिर से योग दिवस की शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: हमारे विविध भारती के सभी श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, आप विश्व योग दिवस पर ये विशेष प्रस्तुति सुन रहे थे जिसमें योगीराज भारत भूषण भारतेंदु से आपके इस दोस्त यूनुस खान ने बातचीत की और इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया जुबैर खान ने। इसी के साथ आज का मैटिनी शो यहीं खत्म होता है।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज ओडिशा के मयूरभंज जिले में अपने पैतृक गांव पहाड़पुर पहुंची। ओडिशा के राज्यपाल हरिबाबू

0: संभवपति मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और स्थानीय लोगों ने राष्ट्रपति के आगमन पर उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति आज अपना 68वां जन्मदिन मना रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज पहाड़पुर गांव पहुंचेंगे। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपने गांव का दौरा करेंगी। वे पवित्र संथाली जहेरा और हो जहेरा उपवनों में पूजा अर्चना करेंगे, साथ ही कौशल विकास केंद्र और पहाड़पुर स्कूल का दौरा भी करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक बड़े जनसभा कार्यक्रम में शामिल होंगे। वे ऊर्जा अवसंरचना, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सिंचाई सहित विभिन्न क्षेत्रों में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल भी जाएंगे। वे हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देश के 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे इचलकरंजी में जनता सहकारी बैंक के नए भवन का उद्घाटन करेंगे तथा एक सहकारी चीनी कारखाने के नामकरण और विस्तार के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैरकानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA कल होने वाली नीट UG पुनः परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभ्यास संचालित करेगा। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए ये मॉक ड्रिल की जा रही है। एजेंसी ने बताया कि कल होने वाली पुनर्परीक्षा के लिए उसकी तैयारी पुख्ता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज पश्चिम बंगाल दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर अपने संदेश में उन्होंने कहा कि ये दिन पश्चिम बंगाल के भारत का अभिन्न अंग बने रहने के संकल्प और आकांक्षाओं का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 1947 में इसी दिन एक ऐतिहासिक फैसले में भारत के एक अहम हिस्से के रूप में पश्चिम बंगाल राज्य के गठन का मार्ग प्रशस्त किया गया था। विदेश मंत्रालय की तथ्य जांच इकाई ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन दावों को खारिज किया है जिनमें कहा गया था कि कुछ मीम्स को लेकर विरोध दर्ज कराने के लिए चीन ने भारत के राजदूत को तलब किया था। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि ये दावा पूरी तरह से झूठा और निराधार है। अमेरिका और ईरान के बीच अगले दौर की वार्ता के लिए अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। ये वार्ता कल शुरू होनी थी लेकिन लेबनान में इसराइल और हिजबुल्ला के बीच जारी संघर्ष के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। बाद में दोनों पक्षों के बीच युद्ध विराम पर सहमति बनी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली इस नई वार्ता में संभावित परमाणु समझौते पर चर्चा होने की उम्मीद है। विश्व भर में कल 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। संस्कृति मंत्रालय भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और योग परंपराओं को दर्शाते हुए देश भर में 100 स्थानों पर विशेष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल मध्य प्रदेश के जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगी। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के MA चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल।

पराया धन, ये था फिल्म का नाम। किशोर कुमार की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे, आनंद बख्शी ने इसे लिखा, आर डी बर्मन की तर्ज थी। आज यादों की महफिल में आपको वो गीत सुनवा रहे हैं जहां कहीं ना कहीं इंतजार है, मुलाकात है।

विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल, और अंतराल पर जाने से पहले आप सुन रहे थे खानदान फिल्म से गीत। लता मंगेशकर की आवाज में नक्श लायलपुरी ने उसे लिखा और खयाम का संगीत था।

अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ में ये गीत आप सुन रहे थे विजय पथ फिल्म से। ज़मीर काजमी ने इसे लिखा था, अनु मलिक का संगीत। यादों की महफिल में आज वो गीत जहाँ कहीं इंतज़ार है, मुलाकात है और प्यार है।

0: फिल्म पाप से इस गीत को अभी आप सुन रहे थे, अनु मलिक ने संगीत दिया था।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने।

0: रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
0: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

हरिहरन और सुखविंदर सिंह की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे ताल फिल्म से। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और एआर रहमान का संगीत। अगला गीत आपको सुनाने जा रहे हैं दिल्ली सिक्स, इस फिल्म से। ऐश किंग की आवाज, प्रसून जोशी ने इसे लिखा, एआर रहमान का संगीत।

विशाल मिश्रा और रूप कुमार राठौड़ की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे बॉर्डर 2 से। जावेद अख्तर ने इसे लिखा, अनु मलिक और मिथुन का संगीत।

अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे, समीर ने इसे लिखा, अंजाम फिल्म से इसे लिया गया था। इसके साथ ही ये प्रोग्राम यादों की महफिल यहीं संपन्न होता है।

श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। प्रोग्राम है सुरीला सफर और आज इस सफर में मैं रहूंगी आपके साथ अनुराधा। मेरा प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें। जैसा कि आप जानते ही हैं कि आज के इस प्रोग्राम में एक इबारत या जिसे कहते हैं टेक्स्ट, उसे पोस्ट किया जाता है फेसबुक पेज पर और आपको शब्द चुनने होते हैं। साथ ही साथ ये बताना होता है कि उस इबारत में से जो शब्द हैं उनमें से कौन से गीत बन रहे हैं जो आज इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। तो आपके प्यार भरे संदेश, प्यार भरे गीतों की लिस्ट हम तक पहुंच चुकी है और आपने शब्द भी बहुत सारे खोज लिए हैं। हालांकि इबारत बहुत छोटी थी लेकिन उसमें शब्द बहुत सारे थे, तो आपने वो खोज लिए हैं, मैं पढ़ चुकी हूं और शुरुआत करते हैं हमारे इस प्रोग्राम की। लेकिन उससे पहले हम उन श्रोताओं के लिए जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है, हम ये इबारत फिर से पढ़ देते हैं। इबारत कुछ इस तरह से थी, रिमझिम ये बारिश, बादल का समा, जमीन ने चुपके से छू लिया आसमान, रुनझुन सी आहट, एक सपना सा आया, एक लड़की की मुस्कान में दिल खो सा गया, हाथ में खिलता गुलाब और रोशन एक दिया, और दिल का दीवाना कुछ कह ना सका, उस पल लगा जैसे यही है जहां, वो बारिश, वो जमीन, वो आसमान। तो ठीक है, आप बताइए मुझे कौन कौन से गीत इनसे आपको लगता है कि आज के इस लिस्ट में शामिल होंगे। और ये भी देखते हैं कि आपकी और हमारी गीतों की लिस्ट कितनी मिलती जुलती है। लेकिन ये बात तो ज़रूर है कि एक गीत ऐसा है जो बार बार कमेंट्स में आया है और जब भी बारिश की बात होती है, सावन की बात होती है, रिमझिम की बात होती है, वो गीत सबसे पहले जुबान पर आता है। तो उसी गीत से शुरुआत की जाए।

रिमझिम गिरे सावन। जी हाँ, लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत योगेश का लिखा हुआ, आर डी बर्मन की तर्ज और मंजिल फिल्म से अभी मैंने आपको सुनवाया। और सबसे ज़्यादा चाहने वाला, सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाला ये गीत आपके कमेंट्स में भर भर के था। और भी गीतों की बारी आएगी, लेकिन आपके संदेश ले लेते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज की छोटी सी सुंदर सी इबारत, जब रिमझिम बारिश बादलों और आसमान के बीच एक खूबसूरत एहसास जन्म लेता है, रिमझिम गिरे सावन, वो तो हम ले चुके हैं। बारिश याद दिलाती है बचपन की, जब बेफिक्र से बारिश के बादलों के साथ उड़ने को जी चाहता था। और प्रकृति में हर तत्व का संतुलन है, मौसम तब तक अधूरा है जब तक झमाझम बारिश ना हो जाए। लेकिन बारिश की कमी अभी थोड़ी लग रही है, थोड़ा इंतज़ार ज़्यादा करवा रही है बारिश, लेकिन आपके जो मैसेजेस हैं वो भी एक खूबसूरत बरसात लेकर आई है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि सबसे पहले तो मैं विविध भारती का वो फेमस गीत जो हर समय हर मौसम में बजता है, बहुत ही लाजवाब सुंदर गीत है रिमझिम गिरे सावन, उसके बारे में लिखा है, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता है, वो लिखते हैं कि बारिश शुरू नहीं हुई लेकिन विविध भारती के सुरीले सफ़र में बारिश और गीतों के बौछार की बारिश बड़े तेज़ हवा के साथ आगे चल रही है और ये सफ़र पूरा करना चाहते हैं हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। रिमझिम बारिश और भीगा आसमान छाएगा सुरीला सफ़र में। और एक और श्रोता हमारे हैं जिन्होंने लिख भेजा है कि आपकी इबारत ने सचमुच बरसात की बूंदों की तरह मन को भिगो दिया है, ये पंक्तियाँ प्यार, प्रकृति और संकोच के खूबसूरत मिलन की तस्वीर दर्शा रहा है। बारिश का मौसम और ज़मीन आसमान का जुड़ाव एक रूहानी माहौल बनाता है, शब्दों की ये रूहानी बुनावट और मोहब्बत का मुकम्मल एहसास दिल को छू लेने वाला है। जी हाँ बिल्कुल, शुरुआत इस खूबसूरत गीत के साथ और आगे बढ़ते हैं, तो चलिए बारिश की बात हुई है तो इसी से जुड़ा कुछ सवाल लेते हैं। जब बात बारिश की आती है, बरसात की आती है, पहली बरसात की आती है किसी ख़ास के साथ, तो वो एहसास ही बहुत स्पेशल, बहुत ख़ास होता है। तो आपकी कुछ पहली बरसात की यादें आप ताज़ा करना चाहें तो लिख भेजें, बहुत ही कम शब्दों में, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके संदेश पढ़ सकूं। तो बारिश के रूहानी एहसास, पहली मुलाकात या कुछ ऐसा जो बारिश में आपको याद रह गया हो, मुझे लिख भेजिए।

फिल्म दर्द से ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। नक्श लायलपुरी ने इसे लिखा और खयाम का संगीत था। बारिश बरसात से जुड़े आपके मैसेजेस मुझ तक पहुंच चुके हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि कल तो हमारे यहाँ इतनी रिमझिम बारिश हुई, सुबह 8 से 10 तक मूसलाधार वर्षा हुई और पानी चारों तरफ भर गया। एक तरह से रेनी डे ही हो गया और कोई कहीं ऑफिस ही नहीं जा पाया। अच्छा है ना, आपको छुट्टी मिल गई इसी बहाने। एक और श्रोता लिखते हैं कि जैसे ही ये पहला गीत बजाया हमने, वैसे ही बहुत मज़ा आ गया क्योंकि रिमझिम से यही गीत उन्हें सबसे पहले याद आता है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, इसी गीत पर पिछली बारिश के दिनों में हम मुंबई आए हुए थे। मरीन ड्राइव और समंदर किनारे में और मेरी धर्मपत्नी एक छाता लेकर चल रहे थे। बारिश हो रही थी और इस गीत पर बेटी ने वीडियो भी बनाया था और हमारी हाइट भी लगभग वैसी है जैसी इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और मौसमी चैटर्जी की है। जी हाँ।

ये छोटे छोटे से पल हमेशा याद रहते हैं, और कहीं ना कहीं ये वीडियो बनाना, फ़ोटोज़ खींचना, कहीं ना कहीं ये याद बहुत ही मीठी यादें रहती है, और ऐसा ज़रूर करना चाहिए जब भी वक्त मिले। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि मंजिल फिल्म का गीत बजाकर बस एक आस जगा रही है, एक आस जग रही है, यहाँ पर 44 डिग्री तापमान में झुलस रहे हैं और आसमान देखते हैं, बादल तो नहीं दिख रहे हैं, बस आग बरस रही है। कहाँ से आपने ये मैसेज संदेश भेजा है हमें ये भी लिखिए, और वहाँ का मौसम कैसा है हमें ये भी लिखिए। एक और श्रोता करते हैं, लिखते हैं कि बूंदों से भिगोने वाली शानदार गीत से आपने आरंभ किया है और ये विविध भारती का बहुत ही फेमस गीत है, हमेशा बजता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बारिश हो या ना हो, लेकिन ये गीत सुनते ही बारिश के बूंदों से हम भीग जाते हैं। एक और श्रोता हमारी लिखते हैं कि आज तो मौसम और प्रकृति से संबंधित विषय पर ही चर्चा होगी, और इन्हें लगता है कि बारिश, ज़मीन, खुशी, अपनापन, ये विषय हो सकते हैं। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि बचपन में गांव में जब वे थे तो पहली बारिश में खेतों से उठती सौंधी खुशबू मदमस्त मादक माहौल बना देती थी। जी हाँ, ये सौंधी खुशबू बहुत कुछ याद दिलाती है। तो आप मुझे लिख भेजिए कि आप कहाँ से हमें संदेश भेज रहे हैं, वहाँ का मौसम कैसा है, बारिश हुई है, कुछ छींटे बरसे हैं, या फिर कैसा तापमान है, और आपकी बारिश से जुड़ी यादें ज़रूर मुझे भेजिए। लेकिन साथ ही साथ कई यादें बहुत अच्छी भी होती है, और कई यादें थोड़ा सा परेशान भी कर देती है, तो आप इस तरह के किस्से भी लिख सकते हैं मुझ तक।

अमित कुमार की आवाज में गीत तेरी कसम फिल्म से आनंद बख्शी ने लिखा, आर डी बर्मन का संगीत था। और आपके बारिश में भीगे खत मुझ तक पहुंचे हैं, या यूं कहें मैसेजेस पहुंचे हैं, डिजिटल खत कह सकते हैं इसे, जो संदेश आप मुझ तक पहुंचा रहे हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि रिमझिम गिरती बूंदों और मिट्टी की सौंधी महक के बीच बारिश में हुई वो हमारी पहली मुलाकात आज भी जहन में ताज़ा है। अचानक आई तेज बौछार से बचने के लिए हम दोनों एक ही छोटे से शेड के नीचे आकर खड़े हुए थे, और एक तरफ आसमान से बरसता पानी था, दूसरी तरफ हमारे बीच की वो अनकही झिझक। हवा के ठंडे झोंकों के साथ जब हमारी नज़रें मिली तो बिना कुछ कहे ही एक अनजाना सा जुड़ाव महसूस हो गया। बहुत ही खूबसूरती से आपने उस मुलाकात को लिखा है, और सचमुच एक कहानी जो है वो नज़र आ रही है, इस कहानी को और आगे बढ़ाया जा सकता है। बहुत ही खूबसूरत संदेश है ये। हमारे दूसरे श्रोता लिखते हैं कि आजकल बारिश सिर्फ नाम की होती है, रिमझिम बारिश नहीं होती, एक झटके में आंधी तूफान के साथ आती है और चली जाती है। हमारे श्रोता एक और हैं जो लिख रहे हैं कि ये कागज़ की कश्ती, ये बारिश का पानी, जब भी बारिश की बात आती है तो कागज़ की कश्ती चलाने का बचपन में अपना एक महत्व रहता था, वो उन्हें याद आता है। और गज़ल सुनना चाहते हैं, देखते हैं आज की लिस्ट में क्या क्या गीत शामिल हैं। एक और श्रोता हमारे हैं जो इस वक्त सफ़र कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं हम सफ़र में चल रहे हैं, बेटी कार चला रही है और हेडफोन से सुरीला सफ़र का आनंद ले रहे हैं। हमारे एक श्रोता अपनी परेशानी, अपनी चिंता यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वैज्ञानिक लोग ना जाने किस किस चीज़ की भविष्यवाणियाँ कर रहे हैं, और ऐसे में हमारे प्राण अटक जाते हैं। कई सालों बाद ऐसे होने जा रहा है और बरसात बहुत कम हो रही है, किसानों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका, और ये जो मानसून अटका पड़ा है, आगे बढ़ ही नहीं रहा है, इससे खेती को बहुत ज़्यादा उस पर प्रभाव पड़ेगा और न जाने क्या होगा। देखिए कुछ चीज़ें हमें छोड़ देनी चाहिए भगवान के ऊपर, है ना, बस जैसे जो आ रहा है उसे उसी तरह के तरीके से उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, बस यही है। हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं सूरत गुजरात से, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे बारिश नहीं हुई है और ऊपर से चिलचिलाती गर्मी है, आपके बारिश के गाने अलग हैं तो अब हम क्या करें। आप गीत सुनिए और आनंद लीजिए। हमारे को श्रोता कहते हैं कि मैं नागपुर महाराष्ट्र से लिख रहा हूं और यहां तक अभी बारिश का लेश मात्र स्पर्श तक नहीं है, मानो आसमान से आग बरस रही है। एक और श्रोता हमारे बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां लिखते हैं कि एक खत लिखा था बादलों को, भीगा भीगा सा जवाब आया अभी। बहुत ही खूबसूरत।

जापानी लग, ये लड़की जरा सी दीवानी लगती है और ये बारिश भी दीवानी लग रही है क्योंकि हमें बहुत सारा इंतजार करवा रही है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि पुणे में तो अब तक बारिश का नाम ही नहीं है और बाहर चिलचिलाती धूप है। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन साथ ही एक दूसरे श्रोता लिखते हैं कि मौसम चाहे कैसा भी हो, सुरीला सफ़र में जो मौसम होता है वही आसपास हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता हमारे हैं जो लिखते हैं कि बारिश के दिनों में मेरी बेटी और मेरी देवरानी की बेटी दोनों छोटी थी, दोनों हाथ पकड़कर छत पर जा रही थी, उनको बारिश में भीगना है पर सब उनको मना कर रहे थे। वो छाता लेकर बड़ा सा और भीगती गई और बहुत देर तक आनंद लेती रही और थोड़ी देर के बाद छतरी बंद करके खूब भीगी और फिर खूब मज़े किए। ये बचपना उनका देख

हम सब हंस दिए। हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं, जम्मू कश्मीर के पुंज से लिख रहे हैं और वो कहते हैं कि यहाँ पर मौसम बहुत सुहावना है, बारिश भी होती है, गर्मी भी होती है, लेकिन तापमान 27-28 के बीच ही रहता है। कुल मिलाकर प्रकृति का भरपूर आनंद लेते हैं। हमारे एक और श्रोता है जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत पंक्तियाँ लिखी हैं, जाने कैसी ये बारिशों की मनमर्जियाँ हैं, कहीं जमकर बरसना कहीं बस अर्जियाँ हैं, है बेबस सब इनके आगे। मेरे गांव के आसमां से यूं तो रोज गुजर रहे हैं बिना बरसे ही बादल, न जाने कैसी ये बारिशों की खुदगर्जियां हैं। बहुत ही खूबसूरत संदेश है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी श्रोता लिखते हैं कि अभी तक संदेश नहीं लिख पाए क्योंकि कहीं बाहर थे और अभी घर पहुंचे हैं, अभी माँ ने भोजन दिया है और साथ ही साथ संदेश भी लिखेंगे। साथ ही एक और श्रोता है, वो लिख रहे हैं कि मैं गा रहा हूँ, मेरी श्रीमती जी गा रही हैं, रेडियो के सभी श्रोता गा रहे हैं, विविध भारती गा रही है और ये सुहाना सफ़र में उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे एक और श्रोता है वो अयोध्या से हमें संदेश भेज रहे हैं कि यहाँ पर तापमान चढ़ा हुआ है, मई में एक दो बार बारिश हुई, जून का 20 दिन इंतज़ार में गुजर चुका है लेकिन बारिश नहीं हो रही है, कभी कभी एक दो बार आंधी की कुछ फुहारें पड़ी है, जून 9 के बराबर है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि लव स्टोरी फिल्म से ये जो गीत उन्होंने सुना, इसमें जब ये रिलीज़ हुई थी उसके बाद नायक और नायिका की लोकप्रियता कुछ इस कदर बढ़ चुकी थी, इतने लोकप्रिय हो गए थे वो, ऐसा जादू चल गया था कि लड़का लड़की शब्द आम बोलचाल भाषा का हिस्सा बन गया था और ये बहुत ही खूबसूरत गीत उन्हें लगता है, उस दौर की मासूम मोहब्बत और कुछ पुरानी यादें ताज़ा कर जाता है। हमारे एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि ये गीत बहुत ही पसंद आ रहा है उन्हें और अभी उनके शहर में बारिश नहीं आई है, बारिश के गीत तो बहुत सारे हैं और कुछ गीत उन्हें याद नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, आप गीत सुनिए जो हम आपको सुनवा रहे हैं और आनंद लीजिए इस प्रोग्राम का जिसका नाम है सुरीला सफ़र।

मैंने प्यार किया, ये था फिल्म का नाम। लता मंगेशकर की आवाज़ में सुन रहे थे आप ये गीत। असद भोपाली ने इसे लिखा और राम लक्ष्मण का संगीत था। हमारे श्रोता लोग जो हैं वो हमें मौसम के बारे में बता रहे हैं। जालंधर सिटी में तापमान 37 डिग्री है इस वक्त। एक और श्रोता है, वो लिखते हैं कि मेरे बेटी, दामाद, बेटा और नाती वैष्णो देवी घूमने गए हैं और सूचना मिली है कि वहाँ का मौसम बहुत ही हसीन, सुंदर और ठंडक से भरा हुआ है। जी हाँ, वहाँ पर गर्मी के वक्त भी बहुत अच्छा मौसम होता है। एक और श्रोता लिखते हैं कि चिलचिलाती धूप में बारिश के गाने सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे फिजिक्स के एग्ज़ाम में केमिस्ट्री के प्रश्न आ गए हों। हमारे एक श्रोता ने अपना किस्सा साझा किया है कि धुआंधार बारिश में एक बड़ी ही दर्दनाक घटना हो गई थी। वो नए नए डाक विभाग में सिलेक्ट हुए थे और नासिक शहर से थोड़ी दूरी पर एक गांव में उन्हें जाना था। बाइक से अप डाउन करते थे, बीच में एक नदी थी जिस पर एक पुल हुआ करता था और बारिश के दिनों में ऑफिस की छुट्टी होने पर वो निकल पड़े। ऑफिस की छुट्टी होने पर, अच्छा, जब ऑफिस ख़त्म हुआ तो वो निकल पड़े और ज़ोर से बारिश हो रही थी और पुल पानी पर चढ़ चुका था और ऐसे में जब वो क्रॉस करना चाह रहे थे उसे तो बहाव इतना तेज़ आया कि बाइक समेत पानी में धकेल दिया गया पानी के बहाव ने उनको। और गनीमत है कि अच्छा तैराक होने के नाते वो किनारे तक पहुँच गए लेकिन बाइक बह गई। जी हाँ, ये परेशानी तो होती ही है लेकिन अच्छी तैराकी ने आपको बचा लिया। और सचमुच कुछ ऐसे स्किल्स होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हर इंसान को सीखना ज़रूरी होता है और होना चाहिए शौक के तौर पर भी। और एक

कंपैशन भी होता है जो ऐसी ऐसे जब सिचुएशन आती है तो ऐसे में हमको बचा भी लेता है। एक और श्रोता है, उन्होंने बहुत ही खूबसूरत लाइन लिखी है कि शायद कोई ख्वाहिश रोती रहती है, मेरे अंदर बारिश होती रहती है। अहमद फराज की लिखी पंक्तियां हैं ये। एक और श्रोता है, वो कहते हैं कि 10 गीतों की लिखी हुई इबारत में से 8वें नंबर पर ये गीत शामिल हुआ है और उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। और इस गीत में लता मंगेशकर ने ये पगला है, इन शब्दों को बहुत ही अलग अलग तरीके से गाया है और गौर से सुनने लायक है। जी हाँ, अजमेर से हमारे श्रोता लिखते हैं कि बारिश तो नहीं है, रिमझिम बारिश, हल्की फुल्की बारिश ही हो रही है और काले बादलों का समा है, आसमान में बन रहा है और थोड़ी बहुत खुशी आती है पल भर की लोगों के चेहरे पर कि बारिश होगी, लेकिन काले बादल टाटा बाय बाय करते हुए निकल लेते हैं। इंदौर से हमारे श्रोता लिखते हैं कि रिमझिम गाने सुनने के लिए बादल आ गए हैं, सुबह धूप थी लेकिन अभी अचानक मौसम में बदलाव आ गया है और ऐसा लग रहा है कि वो भी हमारा मौसम, हमारे जो प्रोग्राम है वो सुन रहा है और इसीलिए तब्दीली आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे इस प्रोग्राम में अगला गीत।

लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म बेताब से। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और आरडी वर्मन की तर्ज थी। हमारे श्रोता लिखते हैं कि मेरे हमसफर के साथ में पहली बारिश बारा खंबा गया था और वहां दोनों भीग गए थे। दोनों ने एक साथ चाय पी और सचमुच ही वो पहली बारिश मुझे हमेशा याद रहेगी। अभी उनकी हमसफर उनके साथ नहीं है, लेकिन विविध भारती का साथ सदैव ही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता लिखते हैं कि धूप ने धरती को कितना तपाया है, अब हर नज़र ने बादलों को बुलाया है। खंडवा की राहों में बस यही अरमान है, बरसे मेघ झूम कर, यही सबका इंतज़ार है। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत संदेश। सुरीला सफ़र का अंदाज़ बहुत कुछ बयां कर रहा है। इस खूबसूरत गाने के साथ शुरू हुआ आज का कार्यक्रम। सचमुच बारिश आने वाली है और हमारे यहाँ तो पहली बारिश हो चुकी है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नज़र आती है और प्रकृति को झूमते हुए देख मन भी बड़ा प्रसन्न हो जाता है। और ये हमें संदेश भेज रहे हैं इच्छावर से। बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेश का। एक और श्रोता लिखते हैं कि बारिश से मच्छर बहुत आते हैं रात को और दिन में मक्खियाँ, और दोनों में कंपटीशन लगा हुआ रहता है और इंसानों को परेशान करने का, तो इन सभी से ज़रूर बचें। बिल्कुल, जो भी ज़रूरी एहतियात है उसे बरतें और ज़रूर ज़रूर बचें इन सब चीज़ों से, क्योंकि बारिश तो है ही लेकिन साथ में बीमारियाँ भी इस मौसम में बहुत ज़्यादा आती हैं, तो अपना ध्यान रखें। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि आज के जो गीत हैं ये लोगों को सुकून दे रहे होंगे कहीं ना कहीं, ऐसा उन्हें लगता है क्योंकि गीत उन्हें पसंद आ रहे हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि भीगना तो तय है, चाहे बारिश में हो या गर्मी में। अभी दुकान पर काम करते करते हमारी बातें सुन रहे हैं वो, और बाहर घने बादल छाए हैं, दुकान के अंदर पसीने से भीग रहे हैं वो। 2019 की एक बात कहते हैं एक श्रोता, और उन्होंने लिखा है कि अगस्त महीने में पटना में इतनी बारिश हुई थी कि पूरा पटना बारिश से डूब चुका था, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था। और सबसे ज़्यादा दिक्कत जो हुई वो पानी पीने की हुई। पीने का जो पानी था उसकी बहुत दिक्कत हुई, वो नहीं मिल पा रहा था, और जहाँ तहाँ कैसे करके इंतज़ाम किया गया मोहल्ले में, और कोई गाड़ी भी नहीं आ पा रही थी उस वक्त। तो ऐसे में ये कुछ चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं परेशानी देती है। जी हाँ, इन सब का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। साथ ही एक और श्रोता लिखते हैं कि बारिश के फुहारों के साथ हंसी के सुरीले फुहारे तब निकले थे जब साथ में मेरी हमसफर थी और पैदल चलते हुए फोल्डिंग छतरी तेज हवा के कारण आधी ऊपर की तरफ हो गई थी। हम भीग भी रहे थे और हंस भी रहे थे। बहुत ही खूबसूरत संदेश। और

मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में गीत बीवी हो तो ऐसी इस फिल्म से अभी आप सुन रहे थे। समीर ने इसे लिखा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। इसके साथ ही हम बढ़ चले हैं इस प्रोग्राम की समाप्ति की ओर। आपके मैसेजेस मुझ तक बहुत से आए हैं, मैंने कोशिश की है कि सबके मैसेजेस पढ़ूं, सबके संदेश पढ़ूं, लेकिन हमारे श्रोता लिखते हैं कि एक बार ओले बरस रहे थे, साइज भी उनका ठीक ठाक था, फ़ोन से वो पिक ले रही थी और उनकी गर्दन पर एक ओला आकर गिरा जो कि बहुत पेनफुल था। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि उन्हें अपने जीवन साथी के साथ बाइक पर बारिश में भीगते हुए घूमना बहुत पसंद था, लेकिन अभी वो ऐसा नहीं कर सकती हैं। हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं कि आपके गीतों के साथ बादल आ रहे हैं, जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही यहाँ पर बारिश भी हो जाएगी। जी हाँ, बहुत खूबसूरत संदेश है। और लेकिन अब समय हो चुका है आपसे अलविदा कहने का। आपने आज का ये सफ़र तय किया अनुराधा के संग। इजाज़त चाहती हूँ इस प्रोग्राम से जिसका नाम है सुरीला सफ़र।

0: छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: देखो दिल न तोड़ो,
0: और छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे,
0: अज समझे।

0: अच्छे हम अकेले
1: जालिम साथ ले ले।
0: अरे अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल न सकोगे समझे।
0: हाँ समझे।
1: अच्छा जी।

0: हो रहना किसी के,
1: क्या करना है जीते।
0: अरे हो रहना किसी के,
1: हम न रहे तो याद करोगे, समझे
0: समझे।
2: आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में भी आपने सुना काला पानी फिल्म का गीत शब्द रचना थी मजरू सुल्तानपुरी की और संगीत एस डी बर्मन का। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत और आज हम और कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म नया दौर से। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की, शब्द रचना साहिर लुधियानवी की और संगीत ओ पी नैयर का।

0: लता मंगेशकर के गाए गाइड फिल्म के इस गीत के साथ ही आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंग दिवस पर पश्चिम बंगाल के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पश्चिम बंगाल साहित्य, संगीत, कला, आध्यात्मिकता, विज्ञान, व्यापार, वाणिज्य और समाज सुधार के माध्यम से देश के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान करने वाला राज्य है। ये दिवस राज्य के इतिहास में विशेष महत्व रखता है। आज के ही दिन इस बात की पुष्टि हुई थी कि पश्चिम बंगाल भारत का अभिन्न अंग बना रहेगा। प्रधानमंत्री ने इस दिशा में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अमूल्य भूमिका का भी उल्लेख किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज इंदौर जिले के सांवेर में इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का भूमि पूजन किया। कॉरिडोर की लागत 2,935 करोड़ रुपए, लंबाई 48 किलोमीटर है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा
2: कि आज एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट जिसमें मुख्य रूप से दो बड़े शहर मध्य प्रदेश के उज्जैन और इंदौर, इसका जोड़ने वाला जो एक राष्ट्रीय राजमार्ग है ग्रीनफील्ड मार्ग है, नए मार्ग का कुल लंबाई 40 किलोमीटर से ऊपर जो बनना है उससे हमारी इंदौर की दूरी ये काफी कम हो जाएगी। आने वाले समय में ये जो दो नगरों का साझा क्षेत्र है मेट्रोपोलिटन रीजन, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें हमारा व्यापार, इसमें हमारी शिक्षा, इसमें हमारी चिकित्सा, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के सब विषय बड़े स्तर पर इनका निर्माण होने वाला है।
1: इसके पहले मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ने उज्जैन में कान डायवर्जन क्लोज एक्ट परियोजना का निरीक्षण कर विकास कार्यों की प्रगति का अवलोकन किया। ये परियोजना माँ छिपरा के जल को स्वच्छ व निर्मल बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। भोपाल में कल दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होने वाली नीट परीक्षा को लेकर नगरीय यातायात पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। शहर में परीक्षा के लिए कुल 32 केंद्र बनाए गए और मेट्रो निर्माण कार्य के चलते कुछ मार्गों पर यातायात प्रभावित रहेगा, जिसके लिए वैकल्पिक मार्ग सुझाए गए हैं। पुलिस ने परीक्षा केंद्रों के आसपास ध्वनि विस्तारक यंत्रों और वाहन पार्किंग पर प्रतिबंध लगाया है। परीक्षार्थियों से कम 30 मिनट पहले केंद्र पहुँचने की अपील की गई है। वहीं नर्मदापुरम में परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा

0: व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। राज्य शासन ने 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए जिलेवार कार्यक्रमों की मुख्य अतिथि सूची जारी कर दी है। प्रदेश में जिला विकासखंड पंचायत स्तर पर सामूहिक योग कार्यक्रम होंगे, जिनमें विद्यालयों, महाविद्यालयों और तकनीकी शिक्षा संस्थानों की भागीदारी रहेगी। भारत सरकार ने इस वर्ष की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग रखी है। आज भोपाल में बड़ा तालाब के बोट क्लब से लेकर टीटी नगर स्टेडियम तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसमें बड़ी संख्या में युवाओं, खिलाड़ियों और नागरिकों ने भाग लेकर स्वस्थ एवं संतुलित जीवन का संदेश दिया। मध्यप्रदेश कैडर के वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को इस वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। श्री अग्रवाल वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय में सचिव हैं। वे वित्तीय कार्रवाई कार्यबल में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व कर चुके हैं तथा धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने पर अंकुश कर रखने वाली वैश्विक संस्था के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। आकाशवाणी की 90 वर्षों की स्वर्णिम यात्रा के अवसर पर आकाशवाणी के उद्घोषकों द्वारा लिखी गई अनाउंसर्स डायरी पुस्तक का विमोचन आज भोपाल के श्यामला हिल्स स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में होगा। पुस्तक के प्रधान संपादक पुरुषोत्तम श्रीवास ने बताया कि इसमें 21 राज्यों के 41 उद्घोषकों के आलेख शामिल हैं। समारोह के मुख्य अतिथि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर अमिताभ पांडे होंगे, जबकि अध्यक्षता विविध भारती मुंबई के सेवानिवृत्त वरिष्ठ उद्घोषक जी श्याम करेंगे। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून 8 से 10 दिन की देरी से 25 जून तक पहुंचने का अनुमान है, जबकि सामान्य मानसून 15 जून के आसपास प्रवेश करता है। मौसम विभाग ने आज भोपाल, इंदौर समेत प्रदेश के 48 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग 26 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के उपलक्ष्य में 17 से 26 जून तक देश भर में नशा मुक्त भारत सप्ताह मना रहा है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नर्सिंग कॉलेज मान्यता फर्जीवाड़ा मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने 245 नर्सिंग कॉलेजों के सत्र 2021-22 के करीब 8,000 छात्रों की परीक्षा कराने की अनुमति दे दी है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित कीजिए।
2: नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ ओडिशा में 47,600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। सरकार ने 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले देश भर में मॉक ड्रिल। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कुछ स्थानों पर कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच चेन्नई में जारी। और फीफा विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज जिला स्थित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पैतृक गांव पहाड़पुर पहुंचे। राष्ट्रपति मुर्मू अपने 68वें जन्मदिन के अवसर पर अपने गांव में हैं। ओडिशा के राज्यपाल डॉ. हरिबाबू कंबमपति, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और स्थानीय लोगों ने उनके आगमन पर गर्मजोशी से स्वागत किया।
3: उड़ीसा के आदिवासी इलाकों तक पहुंचने की एक अहम कोशिश के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मयूरभंज जिले में अपने गांव पहाड़पुर गई। प्रधानमंत्री ने पवित्र सांथाली जोहरा और जो जहरा पूजा स्थलों पर प्रार्थना की और स्थानीय आदिवासी समुदाय के लोगों के बातचीत के, जिससे उन्हें उनकी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं और जीवन शैली के बारे में जानकारी मिली। प्रधानमंत्री ने स्किल डेवलपमेंट सेंटर और SLS मेमोरियल स्कूल का भी दौरा किया, जहाँ उन्होंने छात्रों से बातचीत की और उन्हें शिक्षा, कौशल विकास और आत्मनिर्भरता के देशों में बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। ये दौरा इसलिए भी खास था क्योंकि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मुर्मू के 68वें जन्मदिन के मौके पर उनके गांव में उनका साथ शामिल हुए। इन कार्यक्रम से आदिवासी सशक्तिकरण, शिक्षा को बढ़ावा देने और समावेश विकास के प्रति उनकी साझा प्रतिबद्धता को पता चलता है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अब रायरंगपुर के डांडा बेस में उड़ीसा सरकार के 2 साल पूरे

0: के उपलक्ष्य में आयोजित एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। यहां प्रमुख क्षेत्रों में 47,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजना का उद्घाटन और उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए रंगरंगपुर से मैं प्रकाश दास।
1: इस समय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ओडिशा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर रायरंगपुर में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित हैं। इस अवसर पर ऊर्जा, परिवहन, औद्योगिक ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और पेयजल से जुड़ी 47,600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। इस समय प्रधानमंत्री एक विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
2: प्रगति परिदा जी, उड़ीसा के मंत्री गणेश जी, खुंटिया जी, कृष्णचंद्र महापात्र जी, सांसद नवाचरण माझी जी, मनमोहन सामल जी, बैजन पांडा जी, अन्य महानुभाव भाई और बहनों, हमारा ओडिशा इन दिनों उत्सवों के आनंद में डूबा हुआ है। यहां का गण पर्व रज पिछले हफ्ते ही धूमधाम से मनाया गया है। महाप्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की तैयारियां भी पुरजोश चल रही है। मयूरभंज के बारीपदा रथ यात्रा को लेकर भी उत्साह का माहौल है।
1: प्रधानमंत्री मोदी आज पश्चिम बंगाल भी जाएंगे। वे हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देश के 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंग दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ये दिन पश्चिम बंगाल के भारत का अभिन्न अंग बने रहने के संकल्प और आकांक्षाओं का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 1947 में इसी दिन एक ऐतिहासिक फैसले में भारत के एक अहम हिस्से के रूप में पश्चिम बंगाल राज्य के गठन का मार्ग प्रशस्त किया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल साहित्य, संगीत, कला, आध्यात्मिकता, विज्ञान, व्यापार, वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में कल स्वदेश में निर्मित नौसेना की 3 जहाजों INS धुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण करेंगे। इन जहाजों का निर्माण भारत में किया गया है। इनका उपयोग समुद्री सुरक्षा, सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों में किया जाएगा। ये भारत की रक्षा और जहाज निर्माण क्षमता को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया और कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित किया।
3: मोदी जी प्रधानमंत्री बने और अयोध्या में भव्य राम मंदिर आज अपनी भगवी ध्वजा के साथ खड़ा हो। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो औरंगजेब ने

0: कॉरिडोर बन रहा है और अब अंबाबाई का कॉरिडोर बनाने का काम भी शुरू हो गया।
1: इसके बाद गृह मंत्री इचलकरंजी में जनता सहकारी बैंक के नए भवन का उद्घाटन करेंगे तथा एक सहकारी चीनी कारखाने के नामकरण और विस्तार के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सरकार ने जनहित में 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन एफडीसी दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। ये फैसला सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर की गई विशेषज्ञ समिति के समीक्षा के बाद लिया गया। समिति ने पाया कि इन दवाओं के

0: संयोजन का पर्याप्त चिकित्सीय औचित्य नहीं है और इनके उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सकते हैं। प्रतिबंधित दवाओं में त्वचा दर्द और शरीर में ऐंठन के उपचार तथा कुछ एंटीबायोटिक दवाएं शामिल हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इसका उद्देश्य केवल सुरक्षित, प्रभावी और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। मंत्रालय ने राज्य औषधि नियामकों और संबंधित एजेंसियों को इस प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी कल होने वाली नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत आज देश भर में मॉक ड्रिल कर रही है। सुबह 9 बजे शुरू हुआ यह अभ्यास पूरे दिन जारी रहेगा। इस अभ्यास में 2.5 लाख से अधिक सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। इसका उद्देश्य परीक्षा का सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन सुनिश्चित करना है। एजेंसी के अनुसार नीट यूजी पुनर्परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित की जाएगी, जिसमें 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा में सीसीटीवी निगरानी, आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन और परीक्षा सामग्री के सुरक्षित परिवहन जैसे विशेष सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं। सरकार के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइस थॉमसन का स्थान लेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैरकानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। ये विषय हर उम्र में योग के महत्व को रेखांकित करता है। हमारे संवाददाता ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय देश भर में 100 स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इनमें भारत की समृद्ध विरासत और योग परंपराओं को प्रदर्शित किया जाएगा।
1: नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने कल मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले रन फॉर योग और एक विशेष जुम्बा सत्र का आयोजन आज किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को अपने दैनिक जीवन में योग अपनाने के लिए प्रेरित करना था। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि योग केवल एक दिन मनाने की चीज नहीं है, बल्कि इसे पूरे साल नियमित रूप से करना चाहिए।
2: हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हम 365 डेज योगा करें और इस बार के योगा के ऊपर ये डिक्लेरेशन भी होने जा रहा है कि हम वर्ल्ड में कम से कम 15 से 20 मिनट अगर योग करते हैं, अपने प्राणायाम करते हैं, तो जो इस तरह की हमारे लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, उनको हम बहुत अच्छे की तरह से मैनेज कर सकते और ये प्रूव हो चुका है।
1: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आयोजित किया जाएगा। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों के संयुक्त प्रयासों से इस वर्ष योग दिवस के कार्यक्रम दुनिया भर में लगभग 2,500 स्थानों पर आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें 210 से अधिक भारतीय मिशन भाग ले रहे हैं। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: स्लोवाकिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। स्लोवाकिया गणराज्य में भारतीय राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि स्लोवाकिया में योग और आयुर्वेद बहुत लोकप्रिय हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि भारतीय दूतावास और अन्य संगठन राजधानी ब्रातिस्लावा और अन्य स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं।
3: स्लोवाक रिपब्लिक में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए भारतीय दूतावास का मुख्य कार्यक्रम ब्रातिस्लावा शहर में आयोजित किया जाएगा। दूतावास मशहूर ब्रातिस्लावा कैसल में भी एक योग कार्यक्रम आयोजित करेगा। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने बताया कि दूतावास परिसर में हर दिन 2 योग कक्षाएं आयोजित की जा रही हैं और अब पूरे स्लोवाकिया में सैकड़ों योग प्रशिक्षण केंद्र संचालित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल ही में हुई स्लोवाकिया यात्रा के दौरान आयुष मंत्रालय द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन से स्लोवाकिया में योग को और मजबूत करने के रास्ते खुलने की उम्मीद है। स्मृति एस पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: इस कड़ी में आकाशवाणी समाचार आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव का विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा। आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 MHz चैनल पर यह साक्षात्कार आज रात 9:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। श्री जाधव ने बताया कि कामकाजी लोगों के लिए सरकार ने वाईब्रेक ऐप भी शुरू किया है।
4: लोग दिन भर चेयर पे बैठे के काम करना पड़ता है, वो लोग भी जब लंच ब्रेक होता है तब तक बहुत सारी थकान वो लोगों में आती है, तो वो थकान दूर करने के लिए भी उनके लिए वाई ब्रेक नाम का

0: हमने ऐप निकाला है कि उसमें 10 मिनट में तुम चेयर पर बैठे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, करने से जो भी तुम्हारा थकान आई होगी वो दूर हो जाएगी।
1: भारत सोमवार से शुरू हो रही 2 दिवसीय ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार बैठक में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडल नई सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। बैठक में नई तकनीक से जुड़े सुरक्षा खतरों और आतंकवाद से निपटने के उपायों पर भी चर्चा होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए उन्हें मजबूत और प्रभावशाली नेता बताया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं। एक साक्षात्कार में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि श्री मोदी के पिछले 12 सालों के नेतृत्व में भारत को मजबूती और स्थिरता मिली है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों सिक्किम में कल तक कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी बारिश की संभावना व्यक्त की है। भारतीय सूचना सेवा के पूर्व अधिकारी दीपांकर मुखोपाध्याय का कल रात लंबी बीमारी के बाद कोलकाता में निधन हो गया। वे 77 वर्ष के थे। क्रिकेट में चेन्नई में भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरे और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच में ताज़ा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने 12वें ओवर में 4 विकेट पर 42 रन बना लिए हैं। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ ओडिशा में 47,600 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। सरकार ने 16 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले देश भर में मॉक ड्रिल। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कुछ स्थानों पर कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच चेन्नई में जारी। और फीफा विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: प्रस्तुत है कृषि एवं किसान कल्याण,
3: ये है विविध भारती। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: मोहम्मद रफी और नंदा की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे। जब जब फूल खिले फिल्म का नाम था। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी।
1: एक जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
2: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
1: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
2: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
1: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
2: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
1: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे।

गीता दत्त की आवाज़ में गीत अभी आप सुन रहे थे प्यासा फिल्म से। साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा और SD बर्मन की तर्ज थी। आप इस वक्त सुन रहे हैं विविध भारती से प्रोग्राम सदाबहार नगमे।

0: लता मंगेशकर, मन्ना डे और साथियों की आवाजों में गीत आप मधुमति फिल्म से सुन रहे थे। शैलेंद्र ने इसे लिखा था, सलिल चौधरी का संगीत था।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूं मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
3: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 22 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे।
4: मैं

मेरे महबूब इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, शकील बदायूनी ने इसे लिखा और नौशाद का संगीत था। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम सदाबहार नगमे यहीं संपन्न होता है।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत।
1: विविध भारती
2: मन चाहे गीत।
3: मन चाहे गीत।
2: मन चाहे गीत।

0: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
1: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
0: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
1: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
2: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
0: कार्यक्रम मन चाहेगी,
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।

लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत। पहली पेशकश आपको सुना रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में। आंखें फिल्म से हमने से लिया है, रवि का संगीत है, साहिर लुधियानवी ने से लिखा।

0: कभी कभी।
1: फिल्म आंखें से लता मंगेशकर की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे। इस गीत को सुनना चाहा था इंद्रप्रस्थ सदन रुद्री, जिला धमतरी छत्तीसगढ़ से चंद्रकांत सीमा साहू, सूर्यकांत राकेश साहू, शुभम सावित्री साहू ने। साथ ही शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन, परवीन, रोजी, बिट्टू, साजदा और हिना ने। और उल्लास, माफ कीजिए, अहिल्या नगर केड़गांव से भाऊ साहब नवथर, अक्षय, चंदन, जय कुमार और रुचिता ने इस गीत को सुनने की फरमाइश लिख भेजी थी।

0: सुरेश वाडकर की आवाज़ में ये गीत अभी आप सुन रहे थे प्रेम रोग फिल्म से, संतोष आनंद ने इसे लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी और इसे सुनना चाहा था ककराला बदायूं उत्तर प्रदेश से डॉक्टर मसरूर खान, मोहम्मद सरफराज खान, अमजद अंसारी और समस्त परिवार ने। उल्लास नगर से पुरुषोत्तम शामतकर, ज्योति और चेतन ने। जाखोद राजस्थान से पूजा खटक, बिमला देवी, शंभू दयाल खटक ने।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूं मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीजें अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
3: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 22 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।

किशोर कुमार की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे याराना फिल्म से अनजान ने से लिखा राजेश रोशन का संगीत था। इसे सुनना चाहा था कपाई सालपुरा जिला बारा राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव श्रीमती प्रेमलता हिमानी हर्षिता और अभिषेक ने। जसपुर उत्तराखंड से रियाद हुसैन सिद्दीकी नजमा बेगम रियाज रिफाकत शमरीन परवीन और मोहम्मद रिहान माहिरा नूर ने इस गीत को सुनना चाहा था। गंगानगर बीकानेर से कैलाश सैनी गोविंदा और उत्तम सोनी।

मोहम्मद रफी की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे धरती फिल्म से। राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा था, शंकर जयकिशन की तर्ज थी। इसे सुनना चाहा था रमाकांत शर्मा, मीनाक्षी रवि और अक्षय शर्मा ने जालंधर से, मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, सुनीता शर्मा और माया कुमार ने।

कुमार सानू, अलका याग्निक की आवाजों में गीत आप सुन रहे थे हम है राही प्यार के इस फिल्म से। इस गीत को सुनना चाहा था छत्तीसगढ़ देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, केआर साहू, अश्विनी कुमार, गणेश राम ने, अमर सिंहपुरा बीकानेर राजस्थान से सिकंदर अली खान और उनके परिवार ने, और बिलई छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या हेमलता और डिम्पल देवांगन ने। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम मन चाहे गीत यहीं समाप्त होता है।

0: ये है विविध भारती।
1: नाट्य तरंग। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं आलोक भट्टाचार्य के मूल बांग्ला नाटक का हिंदी अनुवाद, मृत्युहीन प्राण। हिंदी अनुवादक दीप नारायण मिठोलिया, निर्देशक सुदर्शन कुमार। आइए आज सुनते हैं इस नाटक का पहला भाग।

0: सांझ होती जा रही है। इस पार्क में अकेले अकेले लगता है सचमुच बेंजामिन का सिर फिर गया है। पता नहीं उसकी ऐसी कौन सी गुप्त खबर है जिसे वो मुझसे ही भिजवाना चाहता है। आखिर ये गुप्त खबर हो क्या सकती है? अभी तक किसी का भी कोई पता नहीं, और मैं यहाँ झूठ मूठ चली ही जाऊं अब।
1: जिनी।
0: हाँ?
1: जिनी।
0: कौन? बेंच।
1: खामोश। आहिस्ता, इधर इस तरफ,
0: लेकिन
1: इस झाड़ी के पीछे।
0: आखिर मामला क्या है बेंच, इतना छिपा? मुझे तो डर लगने लगा है।
1: तुम्हारे डरने की कोई बात नहीं है जिनी, हमारे यहाँ पहुँचने की खबर पुलिस को पहले लग गई है, इसलिए प्रोग्राम में कुछ चेंज करने पड़े हैं।
0: बेंच, डर सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, तुम्हारे लिए भी है।
2: उस तरफ, उधर, जरा और आगे।
1: जिनी, तुम फौरन उस बेंच पर जाकर बैठ जाओ।
0: अच्छा।
3: जुडू, भाई बात क्या है? इसी पार्क के पश्चिम वाले गेट की बाईं ओर उनकी मीटिंग होने की बात है। वक्त शाम के 4 बजे का था, पर अब तो सांझ हो चुकी है, कहीं कोई एक भी बदमाश नजर नहीं आया।
4: सर, फिलिप्स ने कहीं हमें गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं दी?
3: नहीं, फिलिप्स गलत इन्फॉर्मेशन देने वाला आदमी नहीं है। मुझे लगता है जुडू, हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है शायद उसकी भनक उन्हें पहले ही लग चुकी है। सच

0: इन्हें गिने कुछ काले कुत्तों पर अभी तक हम काबू नहीं पा सके हैं। दिस डिस्ग्रेसफुल ऑन आवर पार्ट।
1: उस बेंच पर कौन बैठा है? कोई लड़की है शायद, क्यों?
0: हाँ, वही तो देख रहा हूँ।
1: हाँ, बड़ी हिम्मत वाली मालूम पड़ती है छोकरी।
2: ए लड़की, यहाँ अकेली क्या कर रही हो?
0: लुक छिपकर कुछ प्यार मोहब्बत करने आई हो शायद? हाँ
3: नहीं नहीं, मतलब यूं ही जरा घूमने आई थी, बस मैं घर ही जा रही हूँ।
0: ठहरो। कितनी देर से तुम यहाँ बैठी?
3: जी बस थोड़ी देर से, मतलब सांझ से।
0: सांझ से? बस जी थोड़ी देर से, और अब इस सांझ ठेले तक?
3: जी मैं घर जा रही हूँ।
1: तुमने यहाँ कोई मीटिंग होती देखी है?
3: मीटिंग? नहीं तो नहीं देखी।
0: मीटिंग मतलब ऐसी कोई खास बात नहीं है, कुछ लुच्चे लफंगे छोकरों की जमात, और क्या।
3: नहीं नहीं, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं देखा यहाँ। अच्छा तो अब मैं चलूँ?

0: और अब इस सांझ ठेले तक।
1: जी मैं घर जा रही हूँ।
2: तुमने यहाँ कोई मीटिंग होती देखी है?
1: मीटिंग नहीं तो नहीं देखी।
0: मीटिंग मतलब ऐसी कोई खास बात नहीं है, कुछ लुच्चे लफंगे छोकरों की जमात और क्या।
1: नहीं नहीं ऐसा मैंने कुछ भी नहीं देखा यहाँ। अच्छा तो अब मैं चलूं?
0: हाँ हाँ जाओगी
1: जी।
0: जाओगी क्यों नहीं। अच्छा क्या तुम कॉलेज में पढ़ती हो?
1: जी हाँ।
0: कविताएं पढ़ती हो? मान लो जैसे बेंजामिन मोलाइज की कविताएं पढ़ती हो?
1: हाँ पढ़ती हूँ, बहुत तेरे पढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा लिखते हैं।
0: उसे जानती भी हो?
1: बेंजामिन को? अब बेंजामिन को भला जानूंगी कैसे,
2: वो ऐसा कोई खास रिप्यूटेड कवि नहीं है शायद।
1: अच्छा तो अब मैं चलूं?
0: हाँ जाओ जाओ।
2: मिस्टर थॉमसन, बेंजामिन मॉलेज क्या बहुत ही डेंजरस एलिमेंट है?
0: आदमी के हिसाब से डेंजरस है कि नहीं नहीं मालूम, बट हिज पेन, उसकी कलम बंदूक से भी ज्यादा खौफनाक है, और कविताएं तो जबरदस्त खतरनाक।
2: ओह।

0: हाँ, मृत्यु देती नित्य नूतन आस जीवन की, मृत्यु के अधरों छिपी है, मृत्यु के अधरों छिपी है, सही शब्द नहीं सूझ रहा, मृत्यु के अधरों छिपी। हाँ माँ, माँ।
1: क्यों रे बेंच, क्या बात है, क्यों बुला रहा है?
0: माँ जल्दी से जरा इधर तो आना।
1: सूप उतार कर अभी आती हूँ, जरा रुक।
0: मुझे सही शब्द चाहिए ही, समय बहुत कम है, बस कुछ एक दिनों के बाद सोयोटो दिवस स्मरण का प्रोग्राम है, इसी बीच इसे प्रेस में भी देना है।
1: क्या बात है बेंच, क्यों बुला रहा था?
0: माँ सुनो, मृत्यु देती नित्य नूतन आस जीवन की, मृत्यु के अधूरों छिपी है, ये मृत्यु के अधूरों छिपी है के बाद क्या शब्द होगा?
1: इसके बाद क्या होगा, अरे किसका क्या होगा?
0: माँ सुनो ना, मृत्यु देती नित्य नूतन आस जीवन की, मृत्यु के अधूरों छिपी है, ये छिपी है के बाद क्या शब्द होना चाहिए?
1: मुझे नहीं मालूम, जाने क्या ऊटपटांग बके जा रहा है।
0: ऊटपटांग नहीं है माँ, सुनो, मृत्यु का मतलब नहीं है अंत सृजन का, मृत्यु में है सार्थकता सार जीवन का, मृत्यु देती प्रेरणा प्रतिकार करने की, जुल्म का अन्याय का संहार करने की।
1: चुप कर, दीवारों के भी कान होते हैं।
0: नहीं माँ, अब चुप रहने से काम नहीं चलेगा, अब तो मजबूत गले से अपनी आवाज बुलंद करने का वक्त आ गया।
1: नहीं बेंच, ऐसी बातें मुंह से ना निकाल, देखता नहीं देश भर में दिन पर दिन कैसी कैसी घटनाएं घटती जा रही हैं।
0: मैं तो देश के बाहर नहीं हूं माँ, घटनाएं जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी वैसे वैसे हमें भी। खैर छोड़ो इन बातों को, पहले मेरी कविता के लिए जरा शब्द तो बताओ।
1: कविता के लिए शब्द?
0: हाँ।
1: अच्छी बात है, तो फिर अपनी लाइन और एक बार बोल।
0: सुनो, मृत्यु देती नित्य नूतन आस जीवन की, मृत्यु के अधरों छिपी है, इसके आगे
1: मृत्यु के अधरों छिपी है श्वास जीवन की।
0: श्वास? कोई और शब्द बोलो माँ, कोई दूसरा शब्द बोलो ना।
1: संतरास।
0: संतरास? इस शब्द में जाने कैसी भीरुता मिश्रित नीचता की गंध है माँ, ये तो कायरों की निशानी है।
1: अधरों प्यास शब्द जोड़ता है। हाँ तो फिर इसे लिखो, मृत्यु के अधरों छिपी है प्यास जीवन की।
0: और राइट राइट, बिल्कुल बिल्कुल ठीक शब्द है माँ, सच माँ, माँ हो माँ, तुम कवि बेंजामिन मोलोयस की सचमुच की माँ हो, एक बहुत बड़ी कवित्री, बहुत बड़ी माँ।
1: अरे अब छोड़ भी, पागल कहीं का।
2: मासी,
0: जीनी।
1: हाँ, आ बेटी अंदर आ जा। बता क्या खबर है, तेरे माँ बाप सभी अच्छे हैं ना?
2: हाँ मौसी, सभी अच्छी तरह से हैं। वो परीक्षा नज़दीक आ पहुँची है, तभी बेंच से इकोनॉमिक्स के चैप्टर को समझने के लिए आई हूँ।
1: अच्छी।

0: बात है, तुम लोग पढ़ाई लिखाई करो, मैं जरा रसोई घर में जाती हूँ।
1: जी अच्छा।
2: जीनी, कौन सी परीक्षा तुम्हारे नजदीक?
1: उसे अग्नि परीक्षा भी कह सकते हो।
2: अच्छा, होगी कोई।
1: हाँ?
2: पर इतना जरूर है कि तुम्हारी पहेलियों को समझ पाना मेरे लिए टेढ़ी खीर है। खैर, इस कविता को सुनो। मृत्यु देती नित्य नूतन आस जीवन की, मृत्यु के अधरों छिपी है प्यास जीवन की, गीत जीवन का सुनाने की लिए अभिलाष, संधि क्षण में पहुंच क्रूर निर्मम दानवी निर्लज पंजों में, जकड़कर सीसा उंडेला गर्म आंखों में, यह नहीं प्रतिवाद या संवाद की वेला, ये असह्य अन्याय हमने किस कदर झेला, रक्त रंजित राह पर बढ़कर करो जय घोष, सुप्त मन में रह न जाए उबलता आक्रोश, मृत्यु देती नित्य नूतन आस जीवन की, मृत्यु के अधरों छिपी है प्यास जीवन की।
1: वाह वाह, क्या बात है बेंच, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। यू आर नाउ अ पोएट एंड इन टाइम यू विल बी अ ग्रेट पोएट बेंच।
2: हाँ, वो पढ़ते हैं मेरी कविताओं को, इसीलिए तो मुझे छुप छुप कर भागते रहना पड़ रहा है।
1: हाँ
2: हाँ, हकीकत यही है। खैर अच्छा बताओ, इकोनॉमिक्स का कौन सा चैप्टर पढ़ोगी?
1: कोई भी चैप्टर नहीं पढ़ूंगी, पढ़ने नहीं आई हूँ।
2: अरे पढ़ने नहीं आई हो तो फिर किस लिए आई हो?
1: किस लिए आई हूँ, क्यों आती हूँ, क्या तुम नहीं जानते?
2: नहीं,
1: कुछ भी नहीं समझते।
2: बताओगी नहीं तो समझूंगा कैसे?
1: सारी बातें मुंह से कही नहीं जा सकती बेंच, समझ लेनी पड़ती है। क्यों तुम्हारी बातें सुनने के लिए भागी चली आती हूँ, क्यों तुम्हारी कविताएं मुझे बेचैन कर डालती हैं, क्या तुम मेरी आंखों की भाषा पढ़ नहीं पाते?
2: जिनी, तुम्हारी दृष्टि मेरे सीने में एक अजीब लहर सी पैदा कर देती है, मेरी कविताओं को अनुप्रेरित करती है, पर केवल इस तरह की अनुभूतियों को लेकर झूठ मूठ समय बर्बाद करने का वक्त अभी नहीं है। जिनी,
1: झूठ मूठ समय बर्बाद क्यों करेंगे बेंच? पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम एक दूसरे की अनुभूतियों को सच कहकर स्वीकार ही ना करें।
2: देखो, दिल की बात दिल में ही रहे तो ठीक है, क्या जरूरत है उसे बाहर सबके सामने खड़ी कर स्वीकृति जताने की?
1: बेंच,
2: तुम तो जानती हो मैं खतरनाक राहों का राही हूं, मेरी स्वीकृति का मतलब ही है तुम्हारे ऊपर अतिरिक्त खतरे का बोझ लाद देना, सो मैं वैसा कतई नहीं करना चाहता। जिनी,
1: बेंच, तुम्हारे लिए डर से दिन रात मेरा कलेजा कांपता रहता है, भारी बूटों की आवाज कानों में आते ही मैं चौंक चौंक जाती हूँ।
2: मेरे लिए तुम्हारी छाती डर से कांपती है, तभी तो मेरा सीना हिम्मत से फूल उठता है। जिनी,
1: जरा सावधानी के साथ चला फिरा करो, भेड़िए तुम्हारे चारों ओर चक्कर काट रहे हैं। तुम ही तो मेरी आंखें हो बेंच, तुम्हें अगर कुछ हो गया तो मैं बिल्कुल अंधी हो जाऊंगी, मैं बिल्कुल अंधी हो जाऊंगी बेंच।
2: जिनी हाथ छोड़ो, शायद माँ आ रही है।
1: अच्छा तो मैं जा रही हूँ मौसी, अब मैं चलती हूँ।
3: लिखाई पढ़ाई हो गई?
1: हाँ मौसी हो गई।
3: अरे थोड़ी चाय तो पी कर जा।
1: नहीं आज रहने दो मौसी, कुछ जल्दी में हूँ, मैं चलती हूँ।
3: बड़ी प्यारी लड़की है,

0: सर बहुत ही भला लड़का है, जहां तक मुझे खबर मिली है बेंजामिन मॉलियस जैसा लड़का उस मोहल्ले में दूसरा और कोई है ही नहीं। लिखाई, पढ़ाई, स्वभाव,
1: चरित्र। विल यू स्टॉप टू डू?
0: यस सर, यस मिस्टर थॉमसन।

0: मैं तो
1: कुछ नहीं जानते तुम। उसकी लिखी कविताएं पढ़ी हैं तुमने?
0: नहीं, पर मैं
1: कविताओं का हर शब्द एक एक बुलेट है और इन सब का इस्तेमाल किया गया है श्वेत सरकार यानी हम लोगों के खिलाफ।
0: पर बात ऐसी है सर कि मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली
1: सारी गलत है। बेंजामिन मोलाइज भला लड़का है, उन ब्लैक स्वाइनों के लिए हमारे लिए नहीं, इस बात को याद रखो।
0: यस सर।
1: तुम्हें पता है हमारे सबसे ज्यादा वफादार इन्फॉर्मर फिलिप स्लेपी का इन लोगों ने ही खून किया है।
0: अच्छा, इनकी इतनी हिम्मत, तब तो फौरन इनके खिलाफ कार्रवाई ना करने से दूसरों का मनोबल टूट जाएगा सर।
1: यस, चारों ओर से कॉम्बिंग अभियान शुरू कर दो, कॉले कुत्तों का एक भी पिल्ला बच ना निकले।
0: ओके सर।
1: मेरा नाम थॉमसन है, स्टेट सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के थॉमसन द टेरर को भला कौन नहीं जानता। हमारे लोगों पर हाथ उठाकर सोचा है बच निकलोगे बच्चों? सारा कुछ जलाकर राख कर डालूंगा। कमान चढ़ो।
0: यस सर।

0: जेम्स, इतनी रात में भला कौन आया होगा?
1: मैं तो तुमसे कहना ही भूल गया बापू, आज जोहान्सबर्ग गणतंत्र के फ्रंट की एक मीटिंग होगी यहाँ, लगता है वही सब आए हैं, देखता हूँ।
0: तो जेम्स तुम भी?
1: हाँ बापू, मेरे जैसे हजारों हजार लड़के अपनी जिंदगी को दांव पर लगाए जूझ पड़े हैं जिस स्वाधीनता की लड़ाई में, उस लड़ाई में मैं भी शरीक हूँ बापू। आइए आइए मिस्टर जैकब। नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: नमस्कार मिस्टर खापड़कर।
2: नमस्कार।
1: बेंस अंदर आ जाओ ना।
3: माँ, हम तुम्हारे वही बेटे हैं, इस बार जीवन की आशा को लौटा लाए हैं, अटल विश्वास का एक कमल खिलाया है माँ।
4: ये क्या तुम्हारी कविता है बेंच?
3: नहीं, एंगोला के प्रसिद्ध कवि ऑगस्टिनो नेटो की है।
1: अरे तुमसे परिचय तो करवा दूं, ये मेरे पिता मिस्टर जोसेफ पिस्से हैं, और आप हैं हमारे संगठन शाखा के नेता टॉम्स जैकब।
2: नमस्कार।
5: नमस्कार।
1: और आप रॉबिन खापड़कर हैं, इनके जिम्मे ही नाटाल प्रदेश का नेतृत्व है।
2: नमस्कार।
5: नमस्कार। खापड़कर माने भारतीय वंश के?
1: हाँ बापू, ये भारतीय वंशोद्भूत हैं।
5: अच्छा अच्छा, बैठिए आप लोग, बैठिए।
1: बापू जी, बेंजामिन को तो तुम जानते ही हो।
5: अरे इसे भला नहीं जानूंगा मैं। अच्छी तरह से जानता हूँ। यही तो है हमारा कवि सिपाही, जिसके कलम से फूट निकलती है काले लोगों के रुदन खून पसीने से लिखी कविताएं।
3: नहीं नहीं, ऐसा ना कहिए, भला मुझमें इतनी ताकत कहाँ?
6: अरे भाई, किसकी ताकत कितनी है और वो कहाँ छिपी रहती है, इसे वो खुद भी नहीं जानता।
3: देखिए, अब इस तरह से मुझे ऊपर ना उछालिए मिस्टर जैकब, मैं तो मातृभूमि का एक मामूली अदना सा सेवक हूँ।
5: अच्छा भाई, तुम लोग बातें करो, मैं जरा चाय का पानी चढ़ा।
1: ठीक है बापू। बापू पानी जरा ज्यादा ले लेना, और भी चार पांच जने आएंगे।
5: अच्छा।

0: आज भी नहीं आया बेंच। आज 5 दिन होने को आए और बेटे को घर लौटने की फिक्र तक नहीं। इधर शहर भर में पुलिस वालों ने उथल पुथल मचा रखी है। ईश्वर जाने बेंच क्या करता है, क्या सोचता है, मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आता, कुछ भी समझ में नहीं आता।
1: मौसी, मौसी
0: जिन्नी, आओ बेटी, आओ इस कमरे में चलो, आओ बैठो।
2: बेंच की कोई खबर मिली मौसी?
0: अरे मुझे कैसे खबर मिलेगी बेटी, मैं तो तेरे भरोसे ही बैठी हूँ। कोई खबर मिली?
2: मुझे तो कोई खबर नहीं मिली,
0: पर क्या
2: न जाने वो पूछो।
0: जिनी बता बेटी, क्या खबर है मेरे लाल की, बेंच कहाँ है, कैसा है?
2: ऐसी कोई बात नहीं है मौसी, जरूर ठीक ठाक ही होगा, वो एक

0: मीटिंग
1: मीटिंग किसकी मीटिंग?
0: अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की गुप्त शाखा की एक मीटिंग है, शायद पेंच वहीं गया होगा।
1: ये मीटिंग कहाँ है?
0: अब ये तो नहीं मालूम मुझे मौसी।
1: मीटिंग गुप्त समिति?
0: हाँ।
1: इधर उस पुलिस जासूस फिलिप्स के खून होने के बाद से भेड़ियों की नजरें चारों ओर घूम रही हैं। पता नहीं मेरा बच्चा कहाँ होगा, कैसा होगा।
0: जरूर अच्छा होगा, ठीक होगा मौसी, निश्चित रूप से सही सलामत होगा, उसे कुछ नहीं हो सकता, उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जरूर अच्छी तरह से होगा, जरूर राजी खुशी होगा, है ना मौसी?
1: तुम ठीक कहती हो बेटी, मेरा बेंच जरूर राजी खुशी है, राजी खुशी ही रहेगा। हाँ।

0: इस वक्त हमारी स्वाधीनता की लड़ाई जनयुद्ध में बदल चुकी है, और यही वजह है कि स्वाभाविक रूप से हमारी जिम्मेदारी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई।
1: इसी सिलसिले में मिस्टर जैकब, मेरा ये निवेदन है कि आज अपनी गुप्त शाखा गठन के पूर्व इतिहास की जानकारी सबको दे दी जाए, क्योंकि हमारे बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम, हालांकि उनके लिए भी ये सब कुछ जानना जरूरी है। मैं समझता हूँ इसी क्षण इस बात को भी निपटा लेना उचित होगा। इस बारे में आप लोगों की क्या राय है?
2: बिल्कुल, मिस्टर रॉबिन खापड़कर का सुझाव एकदम सही है,
3: लेकिन इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि हम स्वाधीनता संग्राम के मूल स्रोत से कहीं कट ना जाएं, खासकर आम जनता से कहीं दूर ना हो जाएं।
0: तो फिर सुनिए, सन 1952 में चंद काले लोग पैदल चलकर श्वेत आदमियों के खेलकूद के लिए सुरक्षित इलाके में घुसे थे, रंग भेद नीति के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने के लिए। उस दिन की उस घटना ने धीरे धीरे आगे चलकर सारे राष्ट्र में अहिंसक प्रतिवाद का रूप ले लिया,
1: और उस प्रतिवाद के कंठों को दबोचने के लिए शार्पेविले की सरकार ने एक जघन्य तरीका अपनाया था।
0: हाँ, 700 राउंड गोली चली, 67 लोग मरे और 186 घायल हुए। उसके बाद ही केवल अफ्रीका की राष्ट्रीय कांग्रेस ने उमखंटो उइसिजुई अथवा राष्ट्रीय बख्तरबंद के नाम से एक सशस्त्र वाहिनी गठित करने का प्रस्ताव पारित किया।
3: कौन कौन कौन हो सकता है? कौन है? कौन कौन है? अरे ये तो जोन्सबर्ग के नेता मिस्टर रोयंगा की आवाज है। जेम्स, जल्दी से दरवाजा खोलो।
2: अरे कैसे हुआ ऐसा?
3: क्या बात है, क्या हुआ?
2: ओ लगता खून,
3: खून ये क्या? किसने ऐसा किया?
4: पुलिस ने।
3: पुलिस ने?
4: ईश्वर, यहाँ आने के लिए निकला था, बाद में मालूम हुआ कि कर्फ्यू लग गया, चक्कर काट कर गलियों से आ रहा था कि अचानक देखा अफसर टॉमसन अपने दल बल के साथ सामने मेरी ओर चला आ रहा है।
2: ओह, तब तो उन्होंने आपको जरूर देख लिया होगा।
4: हाँ, देख ही लिया था, तभी तो चेस किया मुझे। मैं एक ऊंची दीवार फांद कर इस ओर भाग आया, लेकिन इसके पहले एक गोली लगी मेरे पैर में।
2: ठहरिए, पहले पहले मैं ये बैंडेज बांध दूं।
3: बांधो, बांधो। देखो, जैसे भी हो, रोयंगा को अभी इसी वक्त डॉक्टर मॉरिस के पास ले जाना होगा।
1: कंधे के सहारे चल सकेंगे ना?
4: जरूर चल सकूंगा।
3: तो फिर बस अब चलिए, और देर करना ठीक नहीं। आइए,
5: पीछे वाले दरवाजे से निकलकर बाईं ओर नहर के रास्ते से चले जाइए। देखो, ईश्वर इनकी रक्षा करे। जेम्स, बेटे, अब हमें क्या करना चाहिए?
2: बाबू, बाबू, दरवाजा जरा देर से खोलना।
5: अच्छा, आता हूँ, आता हूँ, आता हूँ।
6: हैंड्स अप।
3: आप लोग
6: जरूर अंदर देखो, ये जल्दी, क्विक, कहाँ है ये सब?
7: तो आप ही जोसेफ पिस्से हैं?
5: जी हाँ सर।
7: ये कौन है? सर, वो लड़का है, क्या नाम है तुम्हारा?
2: जी, जेम्स पिस्से।
8: टॉयलेट का दरवाजा खुला है, लगता है उसी ओर से भागे।
5: आखिर मामला क्या है सर? कुछ भी तो समझ में नहीं आ रहा है।
7: हाथ नीचे कीजिए, अभी समझ में आ जाएगा। बताइए, अभी अभी पैरों में गोली खाकर जो छोकरा आया था कहाँ गया?
5: यहाँ तो कोई भी नहीं आया सर।
7: शट अप, झूठा कहीं का। किधर है वो शैतान?
8: नहीं सर, उस तरफ कोई नहीं है।
2: मैं सच कह रहा हूँ सर, यहाँ कोई नहीं है।
7: मैं भी तो सच ही जानना चाहता हूँ, तुम्हारे दोस्त के खून के

0: दागों ने हमें ठीक जगह पर पहुंचा दिया।
1: मिल गया सर।
0: क्या मिल गया?
1: जख्म पर पट्टी नहीं बांधी गई है, ये रही खून में सनी रुई, तभी खून के दाग और पीछे की ओर दिखाई नहीं पड़ रहे।
0: यू आर राइट
1: सर। इसके अलावा इस कमरे में इन दोनों को छोड़कर और भी कम से 5 जने थे। अभी कुछ एक मिनट पहले उन लोगों ने यहाँ बैठकर चाय की चुस्कियां ली हैं। ये देखिए, चाय के 7 कप पड़े जो अभी भी ठंडे नहीं हो पाए हैं।
0: तो मिस्टर जोसेफ पिस्से, अब जरा बताइए तो सही, आपने अपने उस मेहमान का कहाँ चालान कर दिया?
2: जी
0: समझ तो रहे हैं, हम सब कुछ जान चुके हैं।
2: नहीं नहीं जी, मतलब हाँ सर, अभी थोड़ी देर पहले एक आदमी उधर,
0: हम लोग उसे बिल्कुल नहीं जानते सर।
3: ये आकाशवाणी है। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल जिला हुगली के तारकेश्वर में आयोजित एक समारोह में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही कई अन्य परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। साथ ही में माननीय प्रधानमंत्री इस अवसर पर किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त भी जारी करेंगे। आइए आपको सीधे कार्यक्रम में लिए चलते हैं। विवरण दे रहे हैं सिद्धार्थ कुमार सिंह और वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव।
4: श्रोताओं, आज का दिन पश्चिम बंगाल के लिए बेहद खास है, क्योंकि आज है पश्चिम बंगाल दिवस और ये दिन 1947 में बंगाल विधानसभा द्वारा पारित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उस ऐतिहासिक प्रस्ताव की याद दिलाता है, जिसके तहत बंगाल के विभाजन के बाद पश्चिम बंगाल एक अलग राज्य के रूप में भारत का हिस्सा बना। और आज पश्चिम बंगाल दिवस के दिन देश के किसानों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए आज पीएम किसान उत्सव दिवस भी मनाया जा रहा है, जिसके मुख्य कार्यक्रम का आयोजन तारकेश्वर में किया गया है। आपको बता दें कि तारकेश्वर, जो कि पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में स्थित है, इसे बाबा धाम या शिव का शहर भी कहा जाता है, जहां पश्चिम बंगाल दिवस के साथ साथ आज का दिन पीएम किसान उत्सव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस विशेष अवसर पर अब से कुछ ही देर में माननीय प्रधानमंत्री महोदय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी पीएम किसान की 23वीं किस्त जारी करेंगे। और इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मैं हूं आपके साथ सिद्धार्थ सिंह, और मेरे साथ हैं मेरे साथी कमेंटेटर वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव।
5: एब्सोल्युटली सिद्धार्थ, अ ग्रेट डे फॉर द स्टेट ऑफ बंगाल, अ ग्रेट डे फॉर द फार्मर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ द कंट्री, अ विकसित बंगाल, अ विकसित भारत, अ डेवलप्ड बंगाल, अ डेवलप्ड इंडिया। The resolve to make the country a Viksit Bharat, a developed India by 2047, to make the lives of the people of our great nation safe, successful and sustainable, to help and assist our farmer brothers and sisters have the lives that they have always dreamt of. This is the mission of the Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi, who has made a vow to make India world-class, the India of our dreams and aspirations. Prime Minister Sri Narendra Modi will release the 23rd installment of the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi, PM Kisan scheme, to the eligible beneficiaries on the 20th, that is today, which is also the West Bengal Day, because it was this day that the West Bengal state was founded. From Tarkeshwar, located in Hooghly district in West Bengal, the event will be organized by the Ministry of Agriculture, Government of India, with the support of the Government of West Bengal. An amount exceeding 18,880 crore will be transferred directly into the accounts of over 9.44 crore farmers in the 23rd installment. Over 2.18 crore women farmers will receive the benefit during the 23rd installment. Siddharth, truly a day to celebrate India of tomorrow, truly a day to celebrate the vow that the Prime Minister had made to the people of the nation that yes, India will be developed, India will be the India of our dreams, and we will never ever leave our farmer brothers and sisters behind.
4: बिल्कुल वैभव, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में जैसा कि संकल्प लिया है माननीय प्रधानमंत्री ने, और जिस तरह की बात चल रही है, ये एक बहुत बड़ा कदम है। और आज जबकि अब से कुछ देर में माननीय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान की 23वीं किस्त जारी करने जा रहे हैं, और आपको बता दें कि इस किस्त के अंतर्गत देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि

0: अंतरित की जाएगी। और खास बात वैभव यहां की यह है कि इस किस्त से 2,18,00,000 से अधिक महिला किसान लाभान्वित होंगी। तो ये एक वुमेन एम्पावरमेंट की जब हम बात करते हैं वैभव, या महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, उसमें भी एक बड़ा कदम है। और आपको बता दें कि जैसा कि पश्चिम बंगाल की हम बात कर रहे हैं, अकेले पश्चिम बंगाल में ही 45,00,000 से अधिक लाभार्थियों के खातों में 900 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा की जा रही है, जिसमें राज्य में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान के अंतर्गत कुल जो वितरण राशि यहां पर है वो 15,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी। और यह भी बता दें कि 2019 में योजना के शुभारंभ के बाद देश से भर में कुल वितरण राशि जो थी 4.46 लाख करोड़ थी, और उससे ज्यादा हो गई। और अब तक 22 किस्तों के माध्यम से लगभग 4,28,000 करोड़ रुपए देश के करीब 9.5 करोड़ किसानों के खाते में सीधे हस्तांतरित किए जा चुके हैं। तो वैभव, ये एक जहां एक ओर हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर किसान सशक्तिकरण की भी बात चल रही है, क्योंकि जैसा कि सरकार का उद्देश्य है कि प्राथमिकता हमारे प्रधानमंत्री की किसानों को आगे रखना, किसानों को लेकर इस विकास यात्रा को आगे रखना है।
1: एब्सोल्युटली सिद्धार्थ, टू मेक द इनकम्स ऑफ द फार्मर्स गो डबल एंड ट्रिपल व्हेन द कंट्री डेवलप्स, वी हैव टू टेक केयर ऑफ every person in the nook and corner of the country. The policy or the basis of the foundation of all the missions, which is Antyodaya. When we keep the last man in mind, we always keep the fact in mind that yes, we have to grow the country, we have to make the country develop, but we have to keep each and every person in the policy, in its execution. We have to take everyone along. And today's event, Siddharth, will be graced by the esteemed presence of course, the Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi, and apart from him, the Governor of West Bengal, Sri Arun Ravi, the Chief Minister of West Bengal, winning a historic election, Sri Suvendu Adhikari, Sri Rajiv Ranjan Singh, the Union Minister of Panchayati Raj, Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Sri Ashwini Vaishnav, Union Minister of Railways, Information Broadcasting and Electronic and Information Technology, Sri Shantanu Thakur, Union Minister of States for Ports, Shipping and Waterways, Sri Sukanta Majumdar, Union Minister of State of Education and Development of Northeast Region, Sri Samik Bhattacharya, Member of Parliament, among many other distinguished guests. And Siddharth, many schemes and many events have been organized across the state and the country in the district and block levels and gram panchayat levels with the support of the KVKs and local agriculture officers, celebrating the day of the release as PM Kisan Utsav Divas. Excitement across the people, farmers gathering at the event, continuous craning of the necks. They are all happy and they wish to see the Prime Minister, and they wish to see the promises which the Prime Minister did come true.
0: बिल्कुल वैभव, जैसा आपने कहा कि यहाँ पर जो जनमानस है, माननीय प्रधानमंत्री जी अब से कुछ ही देर में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे, और यहाँ तारकेश्वर में गणमान्य अतिथियों के साथ विशाल जन समुदाय प्रधानमंत्री जी को सुनने और उनकी एक झलक पाने के लिए मानो उमड़ पड़ा है। और जिस तरह से बंगाल की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अपना भरोसा व्यक्त करते हुए जिस तरह का विशाल मैंडेट दिया है, आज बंगाल की जनता अपने लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन की उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रही है। और जैसा कि हमने बताया कि आज इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल माननीय श्री आर एन रवि, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री माननीय श्री सुवेंदु अधिकारी, माननीय पंचायती राज एवं मत्स्य पालन पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, माननीय रेल सूचना प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव, माननीय पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग राज्य मंत्री श्री तनु ठाकुर सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति यहां पर मौजूद हैं।
1: Absolutely, to see these ministers that the people are waiting for, and the people have actually voted for these ministers who will now be gracing the stage. It's actually a very exciting day for everyone. It's not just the financial benefit that is being transferred. It's not just the fact that the PM had made a vow, he had made a promise, and that promise is being coming alive. That promise is, proving to be correct. But the fact that, yes, we are on a mission mode, we as a country, as a people, we are going towards the fact that we have to make this country develop, we have to make a Viksit Bharat till 2047. That's exactly the aim of the Honorable Prime Minister. More than 1 crore farmers are expected to connect to the main event via video conferencing at the Krishi Vigyan Kendra, as the

0: emphasizes the importance of yoga for all ages. The India Meteorological Department, IMD, has issued a red color warning for extremely heavy rainfall at isolated places over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim till tomorrow. IMD has also predicted heavy rainfall conditions over Kerala, Mahi, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal and northeastern parts of the country during the day. Brazil recorded their first win of the FIFA World Cup with a comfortable 3-0 victory over Haiti at the Philadelphia Stadium today. Matheus Cunha starred for the five-time world champions, scoring twice in the first half. Vinicius Junior added a third goal before the break to give Brazil a commanding lead. The score remained unchanged in the second half as Brazil controlled the match and secured all 3 points. And that is the end of this news bulletin.
1: जी हाँ श्रोताओं, हम लोग आपको दोबारा से तारकेश्वर लिए चलते हैं और इस समय अब से कुछ ही देर बाद जब प्रधानमंत्री जी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, सभी को बेसब्री से इंतज़ार है इस कार्यक्रम के शुरू होने का। और आज का दिन पश्चिम बंगाल के लिए बेहद खास है क्योंकि पश्चिम बंगाल दिवस हर साल 20 जून को मनाया जाता है। ये दिन 1947 में बंगाल विधानसभा द्वारा पारित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उस ऐतिहासिक प्रस्ताव की याद दिलाता है जिसके तहत बंगाल के विभाजन के बाद पश्चिम बंगाल एक अलग राज्य के रूप में भारत का हिस्सा बना। और तारकेश्वर का भी ऐतिहासिक महत्व रहा है। वैभव, अगर तो देखते हैं इसमें, तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से 1947 में बंगाल विभाजन की रूपरेखा और निर्णय से जुड़ा है। ये 15 अप्रैल 1947 को तारकेश्वर में ही बंगई हिंदू महासभा का एक महत्वपूर्ण 3 दिन का अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन में ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पश्चिम बंगाल के गठन के लिए कदम उठाने के लिए आधिकारिक रूप से अधिकृत किया गया था और इसी ऐतिहासिक जनादेश के आधार पर डॉक्टर मुखर्जी ने बंगाल विभाजन का प्रस्ताव रखा था। और आज पूरे पश्चिम बंगाल में ये दिवस पारंपरिक रूप से मनाया जा रहा है।
2: सिद्धार्थ, इन द ग्रेट वर्ड्स ऑफ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस, रेजिस्ट ऑप्रेशन एंड इफ नेसेसरी रिटेलिएट, दीज वर द वर्ड्स ऑफ दिस ग्रेट मैन हु गेव विजन टू द पीपल ऑफ वेस्ट बंगाल दैट यस, वी एज पार्ट ऑफ इंडिया हैव टू मेक इंडिया a Soni ki chidiya, that golden bird again. We have fought a long battle against the British Raj, against the colonial rule, and now it's time that we take things into our own hands and we make not just Bengal but the country great. And today's occasion, wherein we remember all those great years during the critical years of 1946 to 1947, Dr. Shyama Prasad Mukherjee exerted a powerful voice for safeguarding the interests of Bengal and its people. Strong public opinion emerged, demanding that the western part of Bengal remain within India. Tarkeshwar stands as a silent witness to that momentous chapter of history. On June 20th, 1947, this historic decision, as told by Siddharth, was taken, determining the future of Bengal, which later laid the foundation stone for the formation of West Bengal. This is a glorious history. This is a pride of heritage. This is a commitment to progress.
1: बिल्कुल वैभव, जैसा कि तुमने प्राइड की बात करी, तो इस वर्ष के पश्चिम बंगाल दिवस का विषय है पश्चिम बंगाल, विरासत, सद्भाव और विकास। राज्य की सांस्कृतिक समृद्धि, सामाजिक एकता और विकासात्मक आकांक्षाओं को ये दिवस दर्शाता है। और अब से आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंग दिवस के अवसर पर पश्चिम बंगाल के सभी नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दिवस उस राज्य का जश्न मनाता है जिसने साहित्य, संगीत, कला, आध्यात्म, विज्ञान, व्यापार एवं वाणिज्य, सामाजिक सुधार सहित अनेक क्षेत्रों में अपने अमूल्य योगदान से भारत के इतिहास को महत्वपूर्ण रूप से आकार दिया है। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल ने अनगिनत तरीकों से भारत की राष्ट्रीय चेतना को समृद्ध बनाया है। और जिस तरह की बात आज बंगाल के लिए बेहद खास है, और ये दिन उस राज्य का जश्न मनाता है जिसने साहित्य, संगीत, कला को एक नई दिशा दी वैभव। और बंगाल की जब भी बात होती है तो इस तरह से जिस तरह का पूरा बंगाल का हम देखते हैं कि वहाँ का साहित्य, वहाँ की कला, वहाँ की संस्कृति, और बंगाल अब विकास की एक नई ऊंचाइयों को छूने जा रहा है।
2: Absolutely, Siddharth. This is the promise with which the government has been formed in Bengal after years and years of injustice. Now we see that the government, and this will be a government which will be a government of double engine. And today's function, Siddharth, is not just something that

0: कि एक जो नई पहल है देश में, जिस तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटीज का निर्माण किया जा रहा है, जो मिडिल मैन की भूमिका है उसको खत्म किया जा रहा है ताकि किसानों को सीधे मार्केट में एक अवसर मिल सके। आप ऐसा सोचिए कि वैभव किसी गांव में बना हुआ कोई उत्पाद या देश के किसी सुदूर क्षेत्र में किसी किसान का जो प्रोड्यूस होता है या वो प्रोडक्ट होता है उसको एक बाजार को उपलब्ध कराना सरकार की मंशा है कि देश में ज्यादातर जो कोऑपरेटिव्स को हम डेवलप करें, इस फॉर्म को डेवलप करें और ज्यादा से ज्यादा किसानों को इससे जोड़ें ताकि एक एक जो व्यवस्था है वो डिजिटल रूप में उनको एक टेक्नोलॉजी मिले। जैसे आपने आज आपने टेक्नोलॉजी की बहुत बात करी है कि उत्कृष्ट तकनीक के साथ एक उत्कृष्ट उत्पाद की बात हम करते हैं वो किसानों का लोगों तक पहुंचने के लिए, और जितनी भी सारी उसमें इस पूरी प्रोसेस में, इस पूरी प्रक्रिया में जहां जहां किसानों को, चाहे हम किसान की सॉयल की बात करनी हो, चाहे फर्टिलाइजर की बात करनी हो, चाहे हमें अन्य टेक्नोलॉजी की बात करनी हो। आज ड्रोन दीदी की बात होती है तो किस तरीके से, आज वेदर फोरकास्टिंग की बात होती है, हम हर तरीके से वैज्ञानिक रूप से किसानों को सशक्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
1: Absolutely, Siddharth, the word that you've used, and you had used this word earlier as well, which is sashakt banana. That is to make the farmer brothers and sisters empowered. How do you make them empowered exactly? That is the question. And that was probably the question in the mind of the Honorable Prime Minister when he had introduced the Digital India Mission. Because imagine a farmer sitting in one corner of a village somewhere completely disconnected what is going on in the world. But he knows and he trusts the government. And then he realizes that now is a scheme wherein he will be getting a direct transfer. What happens? You go and you get a mobile phone. If you do not have a mobile phone, or if you do have a mobile phone, you learn how to get those applications. That is a new chapter, a new phase in the lives of those farmers. You do not have to depend on anyone else. Now you are self-empowered, you are self-reliant. Aap aatmanirbhar hain ki aap swayam wo faisla le paayein, aap swayam us device se. Using that mobile phone, you can do whatever you wish to. You can get that direct transfer, you can check your bank account, you can be a part of the Digital India Mission, you can be a part of the banking system, of the financial system, you can get all those benefits together. And how exactly does that help you? It helps you to be a farmer of the 21st century. It helps you to biodiversify. It helps you to not just get stuck in the rut like the farmers of the yesteryear governments who were just stuck because they did not have the credit support, they did not have the support of the raw materials, they did not have the support of logistics. Imagine the kind of work that is being done through infrastructure, through the line of credit, through raw materials, through credit providing to the farmers. Drone Didi ka apne zikr kiya. How important is that for women now who are earning lakhs and lakhs through a technology that was not even visible a few decades back? What is this drone? What is this thing truck flying in the air?
0: Even इस तरह की जो तकनीकी है वैभव, आज से एक, जैसा कि तुमने कहा कि एक दशक पहले इस तरह की परिकल्पना भी आप नहीं कर सकते थे कि इसके माध्यम से आप कुछ कर सकते हो। और डिजिटल, जैसा कि आज पीएम किसान के तहत देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसानों के खातों में जो पैसे पहुंचने वाले हैं, 18,880 करोड़ रुपए, तो ये भी डिजिटल होता जा रहा है। और इस बीच हम इससे पहले कि आगे बढ़ें, आइए सुनते हैं।

0: जी हाँ, और इस समय हम देख पा रहे हैं कि
1: नरेंद्र
0: माननीय
1: मोदी जी
0: प्रधानमंत्री जी का
1: हमारे बीच
0: मंच
1: में उपस्थित
0: पर
1: हैं
0: आगमन
1: और
0: हो
1: हम
0: रहा
1: उनका
0: है और
1: हार्दिक
0: वो
1: स्वागत
0: मंच पर
1: और
0: पहुंच
1: अभिनंदन
0: गए हैं,
1: करते हैं।
0: और चारों
1: पश्चिम
0: तरफ
1: बंगाल
0: से
1: दिवस मनाने के
0: ये लोगों की
1: अलावा
0: आवाजें,
1: आदरणीय
0: उनको अभिवादन
1: प्रधानमंत्री
0: करते
1: श्री
0: हुए,
1: नरेंद्र
0: उनका
1: मोदी जी
0: स्वागत करते हुए
1: विभिन्न
0: लोग यहाँ पर
1: मंत्रालय
0: खड़े
1: की
0: हुए
1: कई
0: हैं, और माननीय
1: परियोजनाओं का
0: प्रधानमंत्री महोदय ने
1: शुभारंभ,
0: अपना
1: उद्घाटन
0: स्थान ग्रहण कर
1: तथा
0: लिया है
1: राष्ट्र
0: और
1: को समर्पण करेंगे।
2: The Honorable Prime Minister on the stage, sitting along with the Governor of West Bengal, Sri R.N. Ravi, and the Chief Minister of West Bengal, Sri Shuvendu Adhikari, people craning their necks. Now, the national anthem and the national song.

0: धन्यवाद.
1: Listen to that roar, Siddharth. Listen to those voices coming from Tarkeshwar. Look at those faces, happy faces, craning necks. So excited to see the Honorable Prime Minister. So excited to see their Chief Minister. And so excited for the fact that all the promises that were being made, that have been done, are now coming true, are now being seen, the face of execution. They know that all these things are coming true. And the Honorable Prime Minister getting up from his seat, along with the Governor of West Bengal and the Chief Minister of West Bengal.
2: जी हाँ, माननीय प्रधानमंत्री, इस समय उनका स्वागत किया जा रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं इस समय और प्रधानमंत्री जी के साथ
0: अभिनंदन करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी,
2: माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए मुख्यमंत्री माननीय श्री शुभेंदु अधिकारी जी,
0: और सम्मान का प्रतीक है पहले बाबा तारकनाथ जी की प्रतिकृति.
2: जी हाँ, बाबा तारकनाथ जी की प्रतिकृति, उनको भेंट करते हुए और बंगाल में माँ दुर्गा का बहुत महत्व है और माँ दुर्गा की पूजा की जाती है और माननीय प्रधानमंत्री महोदय को भेंट देते हुए
0: और आइकॉनिक मिठाई रसगुल्ला यानी रसगुल्ला
2: और वह बंगाल का जो रसगुल्ला है वो तो पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, उसको भेंट दे रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को.
0: जल भरा संदेश यानी संदेश के अंदर रस से भरा हुआ एक अनमोल मिठाई.
1: Siddharth, you should remember that this is not just a culmination of religion, it's not just a culmination of tradition, of legacy, of heritage, of sweetness, of all the things that now people are expecting from the government. The sweetness of those dreams and aspirations that the people have from the Honorable Prime Minister.
2: और वैभव उसकी मिठास यहाँ जो जन समुदाय है उसमें दिख रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी लोगों को संबोधित और इस समय मुख्यमंत्री महोदय जो है वो संबोधित करने के लिए आए हैं.
3: वंदे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, लौह प्रणाम. डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, लौह प्रणाम. भारत केसरी, लह प्रणाम. स्वामी प्रणवानंद, लह प्रणाम. सम्मानीय देशेर यशस्वी प्रधानमंत्री, गोटा पृथ्वीर सबचेये जनप्रिय नेता, जिनी 140 कोटी भारतवासीर হৃদয়ের অন্তরের আত্মীয়, যিনি নিজেকে প্রধানমন্ত্রী বলেন না, প্রধান সেবক বলেন, উনা

0: अब मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से विनम्र अनुरोध करती हूं कि वे कृपया विभिन्न मंत्रालय की कुछ विशेष परियोजनाओं का शुभारंभ, उद्घाटन तथा राष्ट्र को समर्पण करने की कृपा करें।
1: द रिलीज ऑफ द पीएम किसान निधि, द 23rd इंस्टॉलमेंट बीइंग डन बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी विद अ स्माइल ऑन हिज फेस एंड अ कॉन्फिडेंट हैंडशेक। Now, this has been released. Various beneficial scheme for the people of the country. Various schemes including infrastructure of railways, of roadways, of port developments, of fisheries, of highways. So many things together being released by the Honorable Prime Minister.
2: जी हाँ, माननीय प्रधानमंत्री ने कई सारी योजनाओं का शुभारंभ किया आज, और किस तरीके से लगातार यहाँ पे आप देख रहे हैं। और हम आपको बताना चाहते हैं कि इस रंगारंग कार्यक्रम के तुरंत बाद ये जो कई विकास जो परियोजनाएं हैं, उन परियोजनाओं की शुरुआत की है माननीय प्रधानमंत्री जी ने।
1: इट रिलेट्स टू द गुड प्रोडक्शन, द लेबोरेटरीज दैट आर देयर, इट रिलेट्स टू द पोर्ट्स दैट आर बीइंग डेवलप्ड, इट रिलेट्स टू द फार्मर प्रोड्यूसर्स दैट विल बी गिवन अ फेयर शेयर इन द market. All these things have been released now by the Honorable Prime Minister. The people craning their necks, happy to see the Prime Minister and happy to see the fact that the Prime Minister has delivered on each and every promise that he

0: had made, and the one vision that is in mind is, of course, of Viksit Bharat, of a developed India by 2047.
1: जी हाँ प्रधानमंत्री, अभी लगातार कई सारी परियोजनाओं का शुभारंभ कर रहे हैं और अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना की जो 23वीं किस्त का हस्तांतरण माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने रिमोट का बटन दबाकर किया और इसके साथ ही ये किसानों के खाते में ये रकम पहुंच गई। आज 9,44,00,000 से अधिक किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए वो उनके खाते में पहुंचे हैं।
0: एंड सिद्धार्थ, मोर देन 2 crore वुमेन बेनिफिशरीज आर अमंगस्ट दोज फार्मर्स हु विल बी गेटिंग दिस डायरेक्ट ट्रांसफर, दिस इंस्टॉलमेंट ऑफ पीएम किसान सम्मान निधि। इमेजिन द लेवल एट विच दिस scheme is now operationalized, is functional, is being executed. Imagine what is happening. And now the moment that everyone has been waiting for, everyone is now waiting for the fact that yes, the Honorable Prime Minister will speak his heart out. And there he is on stage, Prime Minister Modi.
2: Mahadev. मंच पर विराजमान राज्यपाल आर एन रवि जी, यहां के लोकप्रिय और ऊर्जावान मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी, अन्य सभी महानुभाव और बंगाल के मेरे भाई और बहनों, बाबा तारकनाथ और बंगाल की पुण्य भूमि पश्चिम बंग दिवस की ऐतिहासिक तारीख और इतनी बड़ी संख्या में आप सभी की उपस्थिति आज चुनाव और शपथ ग्रहण के बाद मुझे पहली बार आपके बीच आने का सौभाग्य मिला है। बंगाल की हवा में अब एक नई ताजगी है। यहां के कण कण से एक नई खुशबू आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे बंगाल अब बेड़ियों से आजाद हो गया है, जैसे बंगाल का गौरव लौटने का आरंभ हो गया है। आज का ये कार्यक्रम साक्षी है, इन परियोजनाओं का शुभारंभ गवाह है कि हमारा बंगाल अपने नए भविष्य के निर्माण में जुट गया है। बंगाल के लोगों के चेहरों की चमक गांव गांव में खुशी और विश्वास का भाव, मैं आपके इस आनंद में भागीदार बनने के लिए आया हूं। आपका एक वोट, एक चुनाव कितना कुछ परिवर्तन कर सकता है ये बंगाल में साफ साफ नजर आ रहा है। परिवर्तन भालो लागे छे, तो मैं इस अवसर पर बंगाल के लोगों को और सभी देशवासियों को इस आयोजन की, पश्चिम बंग दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज आप सभी की मैं स्वच्छता से स्वागत पहल के लिए भी सराहना करना चाहता हूं, भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। स्वच्छता हमारे दैनिक जीवन का अभी

हिस्सा होना चाहिए। जहां स्वच्छता होगी वही विकास भी उतना ही सुंदर दिखेगा। मैं आपको स्वच्छता से स्वागत के लिए भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, इस बार पश्चिम बंग दिवस की ये तारीख और भी खास है। आजादी के बाद बंगाल के उज्जवल भविष्य के लिए जो सपना देखा गया था, बंगाल की महान आत्माओं ने जो परिकल्पना की थी, आज एक तरह से पहली बार हम पश्चिम बंग दिवस पर उन सपनों को सच्चाई में बदलते देख रहे हैं। यह ऐतिहासिक तारीख पश्चिम बंगाल के विकास की प्रेरणा बने, हम एक नया और गौरवशाली इतिहास रचे। आज बीजेपी एनडीए सरकार में इसके लिए विकास के महाअभियान की शुरुआत हो रही है। साथियों, बंगाल में दशकों तक पहले लेप और फिर टीएमसी ने जो गड्ढे बनाए उन्हें भरने के लिए डबल इंजन सरकार ने सुपर फास्ट स्पीड से काम करना शुरू कर दिया है। बिजली की रफ्तार से फैसले हो रहे हैं, रुकी हुई योजनाओं पर काम आगे बढ़ने लगा है। इसी कड़ी में आज यहां सैकड़ों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। रेल, रोड, कृषि, मछली पालन, इससे जुड़ी ये परियोजनाएं बंगाल के विकास को नई गति देगी। इन परियोजनाओं से यहां की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मैं बंगाल के लोगों को इन विकास परियोजनाओं की बधाई देता हूं। आज पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी की गई है। देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में लगभग 19,000 करोड़ रुपए सीधे भेजे गए हैं। मैं देश के सभी लाभार्थी मेरे किसान परिवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, गुलामी के दौर में हमारे बंगाल ने क्या कुछ नहीं सहा, कितने बलिदान दिए, कितने त्याग किए। 1946 में कोलकाता में हुई हिंसा, नोआखली के दंगे, कितने निर्दोष बंगाली मानुष, बंगाल के लोग उसकी भेंट चढ़ गए। भाइयों बहनों, बंगाल ने रक्तपात सहा, बंगाल ने अपनों को खोया, अपनी मातृभूमि के टुकड़े होते देखे, लेकिन बंगाल ने अपनी अस्मिता और पहचान को नष्ट नहीं होने दिया। इसी का परिणाम था जब पूरे बंगाल को भारत से अलग करने की साजिश हो रही थी, तब अलग पश्चिम बंगाल बनाकर

उन मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया गया। हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता और संस्कृति, यहां की मूल आस्था और परंपरा, तब अनेक संघर्षों के बाद बच गए थे और आज भी वो मूल्य, इस धरती के संस्कार आज पश्चिम बंगाल के रूप में न केवल सुरक्षित है बल्कि जीवंत भी है। इसलिए पश्चिम बंग दिवस के रूप में हम केवल एक तारीख को याद नहीं कर रहे हैं, हम पूरे इतिहास को याद कर रहे हैं। हम हजारों साल पुरानी बंगाल की विरासत को नमन कर रहे हैं। साथियों, आज की पीढ़ी को हमें बार बार पश्चिम बंग दिवस की अहमियत बताने की जरूरत है। उस दौरान क्या हो रहा था, ये युवा पीढ़ी को जानना जरूरी है। जब पूरे बंगाल को पाकिस्तान का हिस्सा बनाए जाने की कोशिशें हो रही थी, तो कांग्रेस उन षड्यंत्रकारियों के सामने घुटने टेके पड़ी थी। और यही वो समय था जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उसके खिलाफ आवाज उठाई। अप्रैल 1947 में उन्होंने ऐतिहासिक रिजोल्यूशन पास कराया। उन्होंने घोषणा की पूरा बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनेगा। इसके लिए बंगाली हिंदू होमलैंड मूवमेंट शुरू किया गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसका नेतृत्व कर रहे थे। प्रसिद्ध वैज्ञानिक मेघनाथ साहा, इतिहासकार आरसी मजुमदार, इतिहासकार जदुनाथ सरकार, सुनीति कुमार चट्टोपाध्याय, बंगाल के ऐसे कितने प्रबुद्ध और प्रसिद्ध लोग इस मूवमेंट का हिस्सा बने। जीडी बिरला जैसे उद्यमियों ने इसे आगे बढ़ाया। मतवा लीडर पीआर ठाकुर ने आगे आकर इस मूवमेंट को समर्थन दिया। अखबारों में लेख लिखे गए, किस्से कहानियां लिखी गई। वंदे मातरम की भावना को एक बार फिर स्फुरित किया गया। बंगाल की जिस आवाज को मजहबी एजेंडों से दबाया जा रहा था, इस जन आंदोलन से वो स्वर फिर से मुखर हो उठे। इसी का नतीजा था भारत विरोधी लोगों को ये पता चल गया, पूरे बंगाल को भारत से तोड़ना नामुमकिन होगा। और पश्चिम बंगाल के रूप में ये हिस्सा मां भारती के साथ रह गया। साथियों, जिस भावना से पश्चिम बंगाल को बचाया गया था आजादी के बाद, उसी भावना पर इसे आगे बढ़ाने की जरूरत थी। लेकिन दुर्भाग्य से ठीक इससे उलट काम हुआ। पश्चिम बंग दिवस और इसकी भावना को भुलाने की कोशिश हुई। सियासी एजेंडों के कारण इतिहास का व्हाइट वॉश किया गया। भाइयों बहनों, विभाजन के समय

जो कांग्रेस बंगाल को लावारिस छोड़ना चाहती थी, विभाजन के बाद उसने बचे हुए पश्चिम बंगाल में भी तुष्टीकरण के खेल खेलने शुरू कर दिए। पश्चिम बंगाल के इस इतिहास को दबाया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के संस्थापक बने, इसलिए उनके योगदान को नकारा गया। जिस भावना को लेकर उन्होंने बंगाल के लिए लड़ाई लड़ी थी, उस विचार को भी खत्म करने की कोशिशें होती रही। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे जिस धरती का ऐसी महान संतानों से नाता रहा हो, उस पर विदेशी विचारधारा थोपी गई। पहले कांग्रेस, फिर लेफ्ट, फिर टीएमसी दशकों तक पश्चिम बंगाल को सहेजने और संवारने की जगह इसे अवैध घुसपैठियों का अड्डा बनने दिया गया। जो बंगाल भारत के विकास का नेतृत्व कर सकता था, वो आगे बढ़ने की जगह पिछड़ता चला गया। साथियों, आज पश्चिम बंग दिवस पर हमारा कर्तव्य है, हम संकल्प लें, अब इतिहास की वो गलतियां दोहराई नहीं जाएगी। अब पश्चिम बंग दिवस से प्रेरणा लेकर नया इतिहास रचा जाएगा। साथियों, दशकों के कुशासन ने पश्चिम बंगाल को मीलों पीछे पहुंचा दिया है। आप सबने देखा है, पुरानी सरकारों के समय में कैसे हालात हो गए थे। यहां से बड़े उद्योगों का पलायन हुआ, छोटे उद्योग धंधे ठप पड़ते चले गए, युवाओं का रोजगार छिनता गया, संसाधनों पर घुसपैठियों का कब्जा होता चला गया। जो पश्चिम बंगाल कभी अवसरों की भूमि होती थी, वो पलायन का केंद्र बनती चली गई। इसी माहौल में आपने एक संकल्प लिया, टीएमसी सरकार को पलटने का, उसे हटाने का। आपने बीजेपी को आशीर्वाद दिया, रिकॉर्ड सीटों के साथ हमें विजयी बनाया। और आज पूरा देश देख रहा है कैसे तुरंत ही इसका नतीजा भी बंगाल को मिलने लगा है। जिन अधिकार से आपको बरसों तक दूर रखा गया, आज वो हक आपके द्वार तक पहुंच रहा है। मैंने चुनाव के समय आपको आयुष्मान भारत योजना की गारंटी दी थी। जब बंगाल के हर गरीब को आयुष्मान भारत का लाभ मिलना तय हो गया है, माताओं बहनों को अन्नपूर्णा योजना का सीधा लाभ मिलना शुरू हो गया है, हर घर स्वच्छ पानी पहुंचे, इसके लिए भी पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच जल जीवन मिशन को लेकर एमओयू साइन हो गया है। हमने चुनाव के समय बंगाल के युवाओं से वादा किया था, वो वादा पूरा करते हुए नौकरियों में आयु की सीमा में ढील दी।

दी गई है। महिलाओं को फ्री बस यात्रा का वादा भी पूरा हो चुका है। साथियों, सालों साल राजनीतिक दुश्मनी में जिन योजनाओं को रास्ते में ही अटकाया गया, लटकाया गया, आज उन सारी बंदिशों को तोड़कर जन कल्याण शिविरों के जरिए हर सरकारी योजना का लाभ सीधे आप तक पहुंचाया जा रहा है। अब कोई बिचौलिया नहीं, कोई रुकावट नहीं, सिर्फ आपके अधिकार पर फोकस है, बंगाल के विकास पर फोकस है, बंगाल और देश की सुरक्षा पर फोकस है। आपने देखा होगा सीमा पर फेंसिंग के लिए पिछली सरकारों ने जमीन ट्रांसफर का जो काम दशकों से रोक रखा था, नई सरकार बनते ही वो काम भी पूरा करने का काम शुरू हुआ है। भाइयों बहनों, मुझे खुशी है कि पश्चिम बंगाल में औद्योगिक प्रगति की नींव फिर से बननी शुरू हो गई है। इस नींव के दो अभिन्न अंग है, ईमानदार और पारदर्शी शासन और दूसरा कानून का राज। पश्चिम बंगाल ही नहीं, पूरा देश आज इस बदलाव को देख रहा है। जिन्होंने आपको लूटा वो खुद आकर लूट के पैसे लौटा रहे हैं। बड़े बड़े लुटेरों को जेल भेजा जा रहा है, सिंडिकेट वाले जनता से माफी मांग रहे हैं, टोल नाकों पर अवैध वसूली करने वाले गुंडे नाके छोड़कर भाग गए हैं। बंगाल के लोग बिना रोक टोक के आ जा रहे हैं। एखन काट माने शेष काज शुरू होए गए छे। साथियों, जो बंगाल अभी तक खराब सड़कों और खस्ताहाल इंफ्रास्ट्रक्चर से जूझ रहा था, वहां अब वर्षों से लटके अटके प्रोजेक्ट्स तेजी से आगे बढ़ने लगे। आप देखिए, चिंगरी घाटा क्रॉसिंग पर कोलकाता मेट्रो की ऑरेंज लाइन का रुका हुआ काम पूरा भी हो गया है। हावड़ा में लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से नए डिविजनल रेलवे अस्पताल की नींव भी रखी गई है। यहां इमरजेंसी सेवाएं होगी और गंभीर बीमारियों के इलाज की व्यवस्था होगी। पूर्व मेदिनीपुर में हौर और राधा मोहनपुर के बीच रोड ओवर ब्रिज, संकरेल संतरागाछी लिंक लाइन, ऐसे प्रोजेक्ट से यहां के लोगों को सुविधा होने वाली है। साथियों, आज पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में पैसे भेजे गए हैं और पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए एक और खुशी की खबर है। आज से राज्य में पीएम फसल बीमा योजना शुरू की जा रही है। फसल बीमा योजना मुश्किल समय में किसान के परिवार को सहारा देगी। फसल को नुकसान होने पर किसान पर बोझ नहीं पड़ेगा। साथियों, अब पश्चिम बंगाल डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन से भी जुड़ रहा है। एग्रीस्टैक के माध्यम से किसान रजिस्ट्री बनेगी, गांवों के नक्शे और बोई गई फसल की जानकारी डिजिटल रूप में उपलब्ध होगी। खाद की खरीद

किसान क्रेडिट कार्ड, डीबीटी और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद जैसी सेवाओं में इससे आसानी होगी। साथियों, कृषि क्षेत्र में जो सबसे पिछड़े जिले हैं उन्हें आगे लाने के लिए सरकार ने पीएम धनधान्य कृषि योजना शुरू की है। इसमें पश्चिम बंगाल के चार जिले पुरुलिया, दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार और झाड़ग्राम शामिल है। इन जिलों में खेती की उत्पादकता बढ़ाने, स्टोरेज की सुविधा बनाने और किसानों के लिए लोन आसान करने पर काम होगा। बंगाल में मछली पालन से किसान, मछुआरे, व्यापारी सब जुड़े हैं। इसे दक्षिण 24 परगना के फेसरगंज फिशिंग हार्बर की क्षमता बढ़ाई गई है। वीरभूम में आधुनिक फिश मार्केट बनाने का भी काम हुआ है। अब बंगाल थमेगा नहीं, बंगाल अब इतिहास रचेगा। ए बार बांग्ला थामबे ना, एखोन इतिहास गोरबे। साथियों, आज इस कार्यक्रम में देश के अलग अलग हिस्सों के लाखों किसान साथी भी जुड़े हुए हैं, वहां के मुख्यमंत्री गवर्नर भी जुड़े हुए हैं, देश भर की सरकारों के मंत्री भी जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ लाखों किसान भी आज हमारे इस दिवस को मनाने में वो वहां भी भागीदार बने हैं। ये सभी किसान पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं। आज अपने इन सभी किसान भाइयों बहनों से मैं एक आग्रह भी करना चाहता हूं, और मेरे किसान भाई बहन मेरी बात को जरा गौर से सुनिए। मैं आपको हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, क्योंकि हमें अपने बच्चों को बर्बाद होते खेत नहीं देने हैं। हमें अपने बच्चों को उपजाऊ खेत देने हैं। हमें हमारी धरती माता को बचाना है। इस समय भारत सरकार खेत बचाओ अभियान चला रही है। इसके तहत मिट्टी की सेहत बचाने, केमिकल खाद का इस्तेमाल कम करने और प्राकृतिक खेती अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। आप भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में खेत बचाओ अभियान से जुड़े, खुद का खेत बचाने का संकल्प करें, आसपास के किसानों को खेत बचाने के लिए प्रेरित करें, और हम सब मिलके हमारी धरती मां की रक्षा करें। वो हमारी मां है। हम केमिकल से हमारी मां को मारने का पाप नहीं कर सकते हैं। हमें हमारी धरती मां को बचाना होगा। साथियों, भारत 2047 तक विकसित देश बनने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। विकसित भारत के संकल्प का सबसे बड़ा आधार है पूर्वी भारत का विकास। इसके लिए हम मिशन पूर्वोदय पर काम कर रहे हैं। इसमें बंगाल की भूमिका बहुत बड़ी है। बंगाल की प्रगति से पूर्वी भारत की गति बढ़ेगी। भाइयों बहनों, विकास के इस अभियान में हमें एक और बात का ध्यान रखना है। विकास की पहली शर्त है जिसे हमें कभी भूलना नहीं है, और वो है शांति, सौहार्द और सामाजिक स्थिरता। हमें बंगाल की सांस्कृतिक पहचान

0: और सामाजिक ताने बाने को और मजबूती देनी है। हमें सबको साथ लेकर चलना है। साथियों, कल देश और दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाना है। इस बार मैं बंगाल में ही योग दिवस का हिस्सा बनूंगा। स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद जैसे योगियों की भूमि, यहां से जो संदेश जाएगा उससे पूरे विश्व का मार्गदर्शन होगा। मैं चाहूंगा इस बार बंगाल कोने कोने में योग दिवस के आयोजन हो। आप सब योग करें, योग दिवस का हिस्सा बने, इसी अनुरोध के साथ मैं एक बार फिर आप सभी को विकास परियोजनाओं की बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज जब हम उत्साह और उमंग के साथ पश्चिम बंगाल दिवस मना रहे हैं तो मेरा आप सबसे आग्रह है, अपना मोबाइल फोन निकालिए, अपने मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट चालू कीजिए और हम सब मिलकर के आज ये बंग दिवस मनाएं। सबके मोबाइल फोन की लाइट चालू हो। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: Moving towards a future, towards a Viksit Bharat, developed India by 2047, we hope and pray that the resolve and the vow of the Prime Minister bears fruit and we see all those great results in our lives, in the lives of the country, in the lives of everyone to be there in the future.
2: धीरे धीरे कार्यक्रम अपनी समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। अब समय है आपसे विदा लेने का। श्रोताओं, इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में प्रस्तुति सहयोग दिया श्री एस वाई खान ने और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे श्री प्रमोद कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। इसी के साथ मैं सिद्धार्थ सिंह अपने साथी कमेंटेटर वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव के साथ आपसे अनुमति लेता हूँ। नमस्कार।
3: अभी आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से श्रोता सुन रहे थे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा तारकेश्वर हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त वितरण कार्यक्रम का समापन। तो आइए अब चलते हैं आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र और वक्त हुआ है शाम के 5:33 का। आइए अब जुड़ते हैं कार्यक्रम युववाणी से।

आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आपका रेडियो मित्र फणीन्द्र वैश्य लेकर हाजिर हूँ आप सभी युवा साथियों का मन पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है युव वाणी। श्रोताओं, एक बार सोच कर देखिए, अगर आपको अपना सब कुछ, घर, दोस्त, जमीन, सामान सब छोड़कर एक जगह से दूसरी जगह जाकर शरणार्थियों की तरह रहना पड़ जाए तो आपकी क्या व्यथा होगी। सोच के ही मन बेचैन हो गया तो सोचिए, जिनके साथ ये सब कुछ होता है उनका जीवन कितनी कठिनाइयों में बीतता है। दोस्तों, आज वर्ल्ड रेफ्यूजीज डे है और हमारा आज का विषय भी शरणार्थियों के जीवन से जुड़ी चुनौतियां हैं। पहले जानते हैं शरणार्थी किन्हें कहते हैं। दोस्तों, शरणार्थी वो लोग होते हैं जिन्हें युद्ध, हिंसा, प्राकृतिक आपदा, धार्मिक या राजनीतिक

जैसी परिस्थितियों के कारण अपना घर और देश छोड़ना पड़ता है। वे अपनी जान बचाने और सुरक्षित जीवन की तलाश में किसी और दूसरे देश या क्षेत्र में शरण लेते हैं। कल्पना कीजिए कि आपको अचानक अपना घर, अपना गांव, अपने मित्र और अपनी सारी यादें छोड़कर किसी अनजान जगह जाना पड़े। शरणार्थियों को इसी कठिनाई परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। श्रोताओं, जिसमें उनकी सबसे बड़ी चुनौती होती है रहने के लिए सुरक्षित स्थान और जीवन की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करना। कई शरणार्थी शिविर में रहते हैं जहां भोजन, स्वच्छ पानी, स्वास्थ्य सेवाएं और अन्य सुविधाएं सीमित होती हैं। साथियों, शरणार्थी बच्चों की शिक्षा भी प्रभावित होती है। नया देश, नई भाषा और अलग सांस्कृतिक के कारण उन्हें पढ़ाई में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वहीं युवाओं के लिए रोजगार प्राप्त करना भी आसान नहीं होता। कई बार उनके पास आवश्यक दस्तावेज ना होने के कारण उन्हें नौकरी मिलने में परेशानी होती है। इसके अलावा अपने परिवार और घर से दूर होने का दुख उनके

0: गहरा प्रभाव डालता है। भविष्य की चिंता, असुरक्षा और अकेलापन उनके जीवन को और भी कठिन बना देता है। इसलिए उन्हें केवल आर्थिक सहायता नहीं बल्कि भावनात्मक सहयोग की भी आवश्यकता होती है। इसके अलावा अपने परिवार और घर से दूर होने का दुख उनके मन पर गहरा प्रभाव डालता है। भविष्य की चिंता, असुरक्षा और अकेलापन उनके जीवन को और कठिन बना देता है। इसलिए उन्हें केवल आर्थिक सहायता नहीं बल्कि भावनात्मक सहयोग को भी आवश्यकता देनी होती है। हालांकि दुनिया भर की कई सरकारें और सामाजिक संस्थाएं शरणार्थियों की मदद के लिए काम कर रही हैं, लेकिन एक जिम्मेदार समाज के रूप में हमारा भी कर्तव्य है कि हम उनके प्रति सहानुभूति और सम्मान का भाव रखें। दोस्तों, शरणार्थियों केवल मदद के हकदार नहीं बल्कि वे साहस और धैर्य की मिसाल भी हैं। कठिन परिस्थितियों के बावजूद वे एक बेहतर भविष्य की उम्मीद नहीं छोड़ते। श्रोताओं, ये थी बात हमारी शरणार्थियों के जीवन से जुड़ी चुनौतियों पे। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्रम की ओर, पर उससे सुनिए, उसके पहले सुनिए कुछ विज्ञापन।
1: वात रोग, उदर रोग, मूत्र रोग, चर्म रोग, मानसिक रोग, श्वास रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, स्त्री रोग के इलाज हेतु विभिन्न पंचकर्म विधियों व आयुर्वेदिक दवा का प्रयोग आज ही संपर्क करें डॉक्टर निधि जैन, आदिवासी संग्रहालय के सामने छिंदवाड़ा। कॉल करें 9794543985।
0: श्रोताओ, हमारा अगला क्रम है साहित्य सरिता, जिसमें आज हम बात करेंगे भारत के एक बड़े और मशहूर दर्जे के लेखक और उपन्यासकार के बारे में। तो बिना देरी किए जानते हैं उन उपन्यासकार के बारे में जिनका नाम है विक्रम सेठ। विक्रम सेठ का जन्म 20 जून 1952 को कोलकाता में हुआ था। उन्होंने अपनी शिक्षा भारत और विदेशों के प्रतिष्ठित संस्थानों से प्राप्त की। अपनी सरल भाषा, गहरी संवेदनशीलता और प्रभावशाली लेखन शैली के कारण वे विश्वभर में प्रसिद्ध हैं। विक्रम सेठ ने कविता और उपन्यास जैसी कई साहित्यिक विधाओं में लेखन किया है। उनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास अ सुटेबल बॉय है। यह भारतीय साहित्य के सबसे बड़े अंग्रेजी उपन्यासों में से एक माना जाता है। इस उपन्यास में स्वतंत्रता के बाद के भारत के सामाजिक और पारिवारिक जीवन का सुंदर चित्रण किया गया है। उनकी एक अन्य प्रसिद्ध कृति द गोल्डन गेट है, जो कविता के रूप में लिखा गया है, एक अनोखा उपन्यास। इसके अलावा उन्होंने कई कविता संग्रह और अन्य पुस्तकें भी लिखी हैं, जिन्हें पाठकों और आलोचकों ने खूब सराहा। विक्रम सेठ के लेखन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उनकी रचनाएं मानवीय भावनाओं, रिश्ते और समाज की वास्तविकता को सरल और रोचक ढंग से प्रस्तुत करते हैं। उनके साहित्य ने भारत और भारतीय लेखकों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दोस्तों, विक्रम सेठ केवल एक लेखक नहीं बल्कि ऐसे साहित्यकार हैं जिनकी रचनाएं हमें जीवन, समाज और मानवीय संबंधों को बेहतर ढंग से समझने की प्रेरणा देती हैं। तो साथियों, यह थी बात हमारी साहित्य सरिता की। अब समय है आपके भेजे हुए पत्रों को पढ़ने का, यानी कि तरणों की पसंद का। लेकिन उसके पहले सुनते हैं यह विज्ञापन।
2: जी सुनो, कल चौपाल में सरपंच की बहू बता रही थी उनका तेल 15 दिन में खत्म हो गया।
3: अरे भाग्यवान, हमारी रसोई में शिखर गोल्ड सोयाबीन तेल है। ये कम खर्च होता है इसलिए ज्यादा चलता है, पूरा महीना आराम से निकल जाएगा।
2: मतलब महंगाई में भी बचत
3: और स्वाद भी बढ़िया, सेहत का भी ध्यान।
2: वाह, इतनी खूबी।
3: शिखर गोल्ड सोयाबीन तेल अब आपके नगर की सभी किराना दुकानों पर उपलब्ध।
4: बूंद बूंद में शुद्धता, शिखर गोल्ड तेल।
0: श्रोताओ, हमें पहला पत्र प्राप्त हुआ है कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार की ओर से, जो भेजा है मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक, वंश बत्ता ने। इनकी फरमाइश है फिल्म याराना से, जिसको आवाज दी है किशोर कुमार ने, संगीत है राजेश रोशन का। लीजिए प्रस्तुत है ये।

मित्रों, हमें अगला पत्र प्राप्त हुआ है गांधी चौक रोपड़ पंजाब से, जिसे भेजा है हरदेव मिक्का, बलविंदर बिरक, जयदेव विरक, मिक्का बिरक ने। इनकी फरमाइश है फिल्म वीर जारा से, जिसको गाया है उदित नारायण ने, लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीत है मदन मोहन और संजीव कोहली का। लीजिए, प्रस्तुत है ये खूबसूरत गाना।

साथियों, हमें अगला पत्र प्राप्त हुआ है बरेली कैंट चनेटी उत्तर प्रदेश से, जो भेजा है विनेश कुमार, रागनी श्रीवास्तव और मुस्कान ने। इनकी फरमाइश है फिल्म माय नेम इज खान से, आवाज है अमानत अली की, लिखा है निरंजन अयनकर ने, संगीत से सजाया है शंकर ईशान लॉय ने। लीजिए प्रस्तुत है ये गीत।

साथियों, अब जानते हैं हम आज के इतिहास के बारे में, जिसमें 20 जून का इतिहास कुछ इस प्रकार है। 1756 ब्लैक हॉल ऑफ कलकत्ता की घटना हुई, जिसमें ब्रिटिश कैदियों को एक छोटे कमरे में बंद किए जाने का उल्लेख मिलता है। 1837 क्वीन विक्टोरिया ब्रिटेन की महारानी बनी। 1990 सचिन तेंदुलकर ने इंग्लैंड के विरुद्ध अपना पहला टेस्ट शतक लगाया। इसके साथ विश्व शरणार्थी दिवस प्रतिवर्ष 20 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य शरणार्थियों की समस्याएं, अधिकारों और उनके संघर्षों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। अब जानते हैं कल के आकर्षण के बारे में, जिसमें आज की बात का विषय होगा स्वस्थ जीवन शैली में योग की भूमिका। उसके बाद एक फनकार पे बात, आज का इतिहास, कल के आकर्षण और अंत में अमृतवाणियों। और साथियों, देखते ही देखते समय हो चुका है हमारी आज की अमृतवाणी का। और हमारी आज की अमृतवाणी है, कोई भी व्यक्ति अपने तजुर्बे से बड़ा बनता है, ना कि अपनी उम्र से। एक बार फिर से, कोई भी व्यक्ति अपने तजुर्बे से बड़ा बनता है, ना कि अपनी उम्र से। मित्रों, यह था हमारा आज का कार्यक्रम। वैसे तो आज का कार्यक्रम

समाप्त हो चुका है, पर घड़ी की सुइया हमें यह संदेश दे रही है कि अभी कुछ समय बचा हुआ है, तो क्यों ना एक और पत्र ले ही लिया जाए। और हमारा अगला पत्र है महादेव घाट अमलेश्वर से, जिसे भेजा है डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर ने। इनकी फरमाइश है फिल्म हम दोनों से, जिसको आवाज दी है मोहम्मद रफी और आशा भोसले जी ने, लिखा है साहिर लुधियानवी ने, संगीत है जयदेव का। लीजिए, प्रस्तुत है यह गीत।

पसंद आया होगा। आप हमें अपने पत्रों के जरिए भी बता सकते हैं। हमारा पता है आकाशवाणी एक, या फिर आप हमें अपने मैसेजेस के जरिए भी बता सकते हैं। हमारा नंबर है 8602233। साथियों अब

अभी श्रोता सुन रहे थे युवा साथियों का अपना कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से बोल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, इस समय शाम के 6:03 हुए हैं। आइए अब जुड़ते हैं माटी के स्वर से। माटी के स्वर की पहली प्रस्तुति में हम आपको सुनवा रहे हैं राम गोपाल दीक्षित का गाया ये बुंदेली लोकगीत, जो प्रकार है लोक भजन का।

श्रोताओं, आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम माटी के स्वर। आइए माटी के स्वर में अगली प्रस्तुति में आपको सुनवाते हैं ये एक और लोकगीत जो है गारी।

श्रोताओं, आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से आप सुन रहे हैं माटी के स्वर। माटी के स्वर में आइए आपको सुनवाते हैं ये दादरा, जिसे गाया है मन्नूलाल सेन ने।

0: चिंता छोड़, सीधे निधिश्री एकेडमी चल, छिंदवाड़ा की बेस्ट कोचिंग।
1: पर नए बैचेस कब से?
0: नोट्स के साथ आज ही अपनी सीट पक्की करें। पता, निधिश्री एकेडमी, ट्राइबल म्यूजियम के पास, छिंदवाड़ा।
2: कार्यक्रम फौजी भाइयों की खिदमत में आपका खादिम नौशाद आदाब पेश करता है, कबूल फरमाइए।
3: कल और आज के ऐसे ही नामचीन सितारों को आप सुनते हैं विशेष जयमाला में, हर शनिवार और रविवार शाम 7:05 पर। विविध भारती आप सुन सकते हैं देश के कोने कोने में, मीडियम वेव पर, शॉर्ट वेव पर, एफएम पर और 2400 घंटे डीटीएच और आपके मोबाइल पर। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक। विविध भारती पर विज्ञापन बुक कराने के लिए हमारा टोल फ्री नंबर है 15102 या लॉग ऑन करें csuair.org.in या फिर allindiaradio.gov.in। विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
4: श्रोताओं, आइए सुनवाते हैं आपको लोक संगीत में प्रहलाद सिंह टिप्पणियां की गई ये कबीरदास जी की सूक्तियां।

0: श्रोताओं, आकाशवाणी से आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक संगीत।
1: मुझे अपनी मम्मी के जन्मदिन पर आकाशवाणी से बधाई देना है, क्या करूं?
2: नो टेंशन, इसके लिए कुकड़ा हिल्स आकाशवाणी कार्यालय छिंदवाड़ा में संपर्क करो। और हाँ, अगर शादी या शादी की सालगिरह, त्योहारों की शुभकामना या किसी विशेष अवसरों पर किसी को बधाई देना चाहते हो तो भी आप आकाशवाणी कार्यालय छिंदवाड़ा में संपर्क कर सकते हैं।
1: अच्छा, मेरे चाचा बर्तनों की दुकान खोल रहे हैं, उसके लिए भी?
2: हाँ हाँ, अपने प्रतिष्ठान के शुभारंभ पर भी आप बधाई दे सकते हैं या जानकारी दे सकते हैं। तो विज्ञापन के लिए संपर्क करें
1: कुकड़ा हिल्स आकाशवाणी कार्यालय छिंदवाड़ा।
2: हाँ
0: श्रोताओं, आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से आप सुन रहे थे कार्यक्रम माटी के स्वर। हम आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत की पहली प्रस्तुति में हम आपको सुनवा रहे हैं ST बर्मन के संगीत निर्देशन में मजरूह के लिखे शब्दों को। आवाजें किशोर कुमार और साथियों की है। फिल्म का नाम है 3 देवियां। ये है फिल्म संगीत की पहली प्रस्तुति।

फिल्म जुर्माना का ये खूबसूरत सनकमा, जिसमें आवाज़ लता मंगेशकर की और शब्द हैं आनंद बख्शी के और संगीत आर डी बर्मन का है। श्रोताओं, सावन बस कुछ ही पलों में दस्तक देने वाला है, कुछ ही दिनों में दस्तक देने वाला है। और सावन में झूले हमें दिखाई देते हैं, तो आइए सावन में भीगता हुआ झूले पर आधारित ये नगमा सावन के झूले पड़े।

0: Radio Stevie's keep you. Introducing the Maruti Suzuki e-Vitara. With its massive 61 kilowatt-hour battery and a range of 543 kilometer, the horizon is finally yours. Own it for rupees 10.99 lakh with a battery EMI of just rupees 3.99 per kilometer. Backed by India's largest charging network, India Goes Electric.
1: नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें। ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें हैं आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
2: आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं फिल्म परवाना का ये नगमा, जिसमें संगीत मदन मोहन का, शब्द कैफी आजमी के और आवाज किशोर कुमार की है।

श्रोताओं, फिल्म संगीत में आइए अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और भूपेंद्र का गाया ये नगमा। फिल्म है किनारा, शब्द गुलजार के हैं। लीजिए सुनिए ये खूबसूरत नगमा राहुल देव बर्मन के संगीत निर्देशन में, जो एक श्रद्धांजलि भी है लता मंगेशकर जी को।

आइए श्रोताओं, अब जुड़ते हैं फिल्म संगीत की अंतिम प्रस्तुति से, जिसमें आवाजें आशा भोसले और किशोर कुमार के हैं, शब्द राज कवि तुलसी के हैं और फिल्म का नाम है कर्म।

0: श्रोताओं इसी के साथ ही संपन्न हुआ फिल्म संगीत। शाम के 7 बजने को यहाँ ये सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में यह बात कही। प्रधानमंत्री मोदी भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर आदिवासी समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। श्री मोदी ने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से सरकार के पूर्वोत्तर दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया।
2: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास। इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
1: इस दौरान ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम

0: मंगल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
1: आज यहाँ सैकड़ों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास हुआ है। रेल, रोड, कृषि, इससे जुड़ी ये परियोजनाएं बंगाल को नई गति देगी। इन परियोजनाओं से यहाँ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मैं बंगाल के लोगों को इन विकास परियोजनाओं की बधाई देता हूँ।
0: श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान योजना के 23वीं किस्त के रूप में 18,880 करोड़ रुपए जारी किए। इससे देश भर के 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री कोलकाता में कल स्वदेश में निर्मित नौसेना के 3 जहाजों INS दोनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण करेंगे। इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। इनके निर्माण में 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों ने योगदान दिया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम पश्चिम बंगाल के कोलकाता में ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में सामान्य योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। ये राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे से शुरू होगा। सरकार ने जनहित में 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन FDC दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर विशेषज्ञ समिति की समीक्षा के बाद यह फैसला लिया गया। समिति ने पाया कि इन दवाओं के संयोजन का पर्याप्त चिकित्सीय औचित्य नहीं है और इनके उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सकते हैं। भारत सोमवार से शुरू हो रही 2 दिवसीय ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे। बैठक में नई तकनीक से जुड़े सुरक्षा खतरों और आतंकवाद से निपटने के उपायों पर भी चर्चा होगी। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तीर्थयात्रियों का पहला जत्था आज नाथूला दर्रे से होते हुए चीन में प्रवेश कर गया। जत्थे में 2 संपर्क अधिकारियों और 1 चिकित्सा अधिकारी सहित 41 तीर्थयात्री और 4 सहायक कर्मचारी शामिल हैं, जिससे इस दल की कुल संख्या 47 हो गई है। चेन्नई में तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान ने भारत को 219 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 16वें ओवर में बिना किसी नुकसान के 123 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से बोल रहे हैं।
3: Experience grand in every drive with a Grand Vitara, because some journeys deserve more than just movement, they deserve presence. This is your final opportunity to pre-book the Grand Vitara at just ₹8,999 per month. Yes, ₹8,999 per month. And not just that, enjoy all at an effective price starting at ₹9.82 lakhs. Step into a world of refining performance and intelligent design. 6 airbags as standard, premium comfort, advanced hybrid technology crafted to stand apart. This month, make it yours. Experience grand in every drive with a Grand Vitara. Visit a near Nexa showroom today. Nexa.
4: मुझे अपनी मम्मी के जन्मदिन पर आकाशवाणी से बधाई देना है, क्या करूं?
5: नो टेंशन, इसके लिए कुकड़ा हिल्स आकाशवाणी कार्यालय छिंदवाड़ा में संपर्क करो। और हाँ, अगर शादी या शादी की सालगिरह, त्योहारों की शुभकामना या किसी विशेष अवसरों पर किसी को बधाई देना चाहते हो तो भी आप आकाशवाणी कार्यालय छिंदवाड़ा में संपर्क कर सकते हैं।
4: अच्छा, मेरे चाचा बर्तनों की दुकान खोल रहे हैं, उसके लिए भी?
5: हाँ हाँ, अपने प्रतिष्ठान के शुभारंभ पर भी आप बधाई दे सकते हैं या जानकारी दे सकते हैं। तो विज्ञापन के लिए संपर्क करें
4: कुकड़ा हिल्स आकाशवाणी कार्यालय छिंदवाड़ा।
5: हाँ।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं। Most TVs keep you tied to the

0: that you deserve the freedom to explore. Introducing the Maruti Suzuki e-Vitara. With its massive 61 kilowatt-hour battery and a range of 543 km, the horizon is finally yours. Own it for Rs. 10.99 lakh with a battery EMI of just Rs. 3.99 per kilometer. Backed by India's largest charging network. India goes electric. Nexa.
1: Prasar Bharati ke paas hai Bhartiya Sanskriti ki anmol dharohar. इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
2: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए।
3: आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: फिल्मी दुनिया का एक बेहद चमकीला स्टार सलमान खान।
2: विविध भारती आप सुन सकते हैं देश के कोने कोने में मीडियम वेव पर, शॉर्ट वेव पर, एफएम पर और 24 घंटे डीटीएच और आपके मोबाइल पर। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक। विविध भारती पर विज्ञापन बुक कराने के लिए हमारा टोल फ्री नंबर है 15102 या लॉग ऑन करें csuair.org.in या फिर allindiaradio.gov.in। विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
4: श्रोताओं, हम आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। आपको एक बार फिर याद दिलाते हैं, शाम 7:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम किसानवाणी और 8 सुनिएगा उद्घोषक पसंद कार्यक्रम मेरी पसंद और 8:30 का वक्त होगा गैर फिल्मी गजलों का। तो अभी वक्त हुआ है 7:09 और 47 सेकेंड। कुछ पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। तो आइए पहले चलें भोपाल।
5: ये प्रादेशिक समाचार।
6: यार, कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ
7: जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
8: PLI है ना?
9: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
10: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सूनी। सबसे पहले अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने 9,44,00,000 से किसानों के खातों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी की। इंदौर में 2,935 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले इंदौर उज्जैन ग्रीन फील्ड कॉरिडोर का हुआ भूमि पूजन। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जबलपुर में आयोजित कार्यक्रम में होंगी शामिल और भोपाल इंदौर समेत 38 जिलों में आंधी गरज चमक और बारिश के का अलर्ट जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के जिला हुगली के तारकेश्वर में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी की। 9,44,00,000 से अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ से अधिक की धनराशि का हस्तांतरण किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस बार पश्चिम बंगाल दिवस की यह तारीख और भी खास है। आज़ादी के बाद बंगाल के उज्जवल भविष्य के लिए जो सपना देखा गया था, बंगाल की महान आत्माओं ने जो परिकल्पना की थी, आज भाजपा सरकार में विकास के महाअभियान की

0: शुरुआत हो रही है।
1: सुपर फास्ट स्पीड से काम करना शुरू कर दिया है, बिजली की रफ्तार से फैसले हो रहे हैं, रुकी हुई योजनाओं पर काम आगे बढ़ने लगा है। इसी कड़ी में आज यहाँ सैकड़ों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। रेल, रोड, कृषि, मछली पालन, इससे जुड़ी ये परियोजनाएं बंगाल के विकास को नई गति देगी।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरांग में मोहन चरण मांझी सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आदिवासी आबादी द्वारा दशकों से झेली जा रही अभावग्रस्तता की जगह शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आजीविका और सामाजिक उन्नति के नए अवसर मिल रहे हैं। इस अवसर पर उन्होंने 47,000 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज इंदौर जिले के सांवेर में इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का भूमि पूजन किया। कॉरिडोर की लागत 2,935 करोड़ रुपए, लंबाई 48 किलोमीटर है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर विकास का पर्याय बनेगा। इससे स्थानीय लोगों के साथ साथ भविष्य की पीढ़ियों को व्यापक लाभ मिलेगा। इस महत्वपूर्ण परियोजना से मेट्रोपोलिटन रीजन के विकास को भी नई दिशा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार किसान हित के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इसी क्रम में दूध, फल और सब्जियां लेकर मोटरसाइकिल से परिवहन करने वाले किसानों के लिए हेलमेट वितरण अभियान शुरू करने का निर्णय लिया गया है।
2: मोटरसाइकिल से दूध, फल, सब्जी लेकर के गांव से जो किसान निकलते हैं उनकी जिंदगी की कीमत भी होना चाहिए, इसलिए हमने अभियान चालू करने का निर्णय लिया कि हम हेलमेट का अभियान चलाएंगे। हेलमेट से व्यक्ति की जान भी सुरक्षित रहती है। प्रतीकात्मक रूप से इंदौर प्रशासन द्वारा कुछ हेलमेट वितरण का कार्यक्रम यहाँ किया जाएगा ताकि हमारे लोगों की जान भी बचे। सुना चाहिए कि उनका आशीर्वाद माननीय मोदी जी के माध्यम से लगातार मिलता रहेगा।
0: इसके पहले मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ने उज्जैन में कान्हा डायवर्जन क्लोज डक्ट परियोजना का निरीक्षण कर विकास कार्यों की प्रगति का अवलोकन किया। यह परियोजना माँ क्षिप्रा के जल को स्वच्छ व निर्मल बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। वहीं केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रायसेन के बाड़ी में आयोजित प्रदेश स्तरीय जनकल्याण शिविर में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। श्री चौहान ने भोजपुर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 31 नई ग्रामीण सड़कों को मंजूरी दी। साथ ही उन्होंने राज्य के किसानों के लिए मूंग खरीदी की औपचारिक स्वीकृति और कम बारिश की आशंका के मद्देनजर केंद्र व राज्य सरकार के साझा कंटिजेंसी प्लान का ऐलान किया।
3: भारत सरकार से मूंग खरीदी की अनुमति मांगी है और आज ही बाड़ी की इस पवित्र धरती से मूंग खरीदी की स्वीकृति मध्य प्रदेश सरकार को दी जाएगी ताकि किसान भाई अपने मूंग को बेच सकें। ये मूंग अपनी तीसरी फसल है और इसलिए मूंग किसान की मेहनत है, उस मेहनत के पूरे दाम दिए जाएंगे, किसान के पसीने की पूरी कीमत दी जाएगी।
0: नीट यूजी पुनर्परीक्षा कल देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित की जाएगी, जिसमें 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा में सीसीटीवी निगरानी, आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन और परीक्षा सामग्री के सुरक्षित परिवहन जैसी विशेष सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं। भोपाल में कल दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होने वाली नीट परीक्षा को लेकर नगरीय यातायात पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। शहर में परीक्षा के लिए 32 केंद्र बनाए गए और मेट्रो निर्माण कार्य के चलते कुछ मार्गों पर यातायात प्रभावित रहेगा। परीक्षार्थियों से कम 30 मिनट पहले केंद्र पहुंचने की अपील की गई है। जबलपुर जिले में परीक्षा के लिए 23 केंद्र बनाए गए हैं, जहां 10,426 परीक्षार्थी शामिल होंगे। समाचारों में अब एक छोटे से विराम का।
4: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर EIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः स्वागत है आपका। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। इस वर्ष 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। यह विषय हर उम्र में योग के महत्व को रेखांकित करता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय देश भर में 100 स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इनमें भारत की समृद्ध विरासत और योग परंपराओं को प्रदर्शित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगी।

0: समारोह सदर के गैरिसन ग्राउंड में सुबह 7:30 बजे से शुरू होगा। योग दिवस कार्यक्रम के बाद राष्ट्रपति मुर्मू रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जाएंगी और 36वें दीक्षांत समारोह मुख्य अतिथि होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण तथा सशक्तिकरण के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर एक विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम सशक्त भारत के संकल्प साकार करने वाली सरकार की परिवर्तनकारी पहलों के बारे में जानकारी देंगे।
1: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने भारत के हाईटेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। सशक्त भारत के 2 महत्वपूर्ण आधार हैं, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। सरकार की नीतियों और फैसलों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनी बल्कि अब निर्माण और डिजाइन से जुड़े कई इकाई भी काम कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। इस योजना के तहत सिलिकॉन फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर इकाई, असेंबली और टेस्ट चिप डिजाइन के लिए 50% तक वित्तीय सहायता दी गई। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया, जिसके लिए 1,000 रुपए का प्रावधान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों के सहयोग से शोध और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, नई तकनीकों का विकास करना और भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना है।
0: केंद्र सरकार ने 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन FDC दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। ये फैसला सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर की गई विशेषज्ञ समिति की समीक्षा के बाद लिया गया। समिति ने पाया कि इन दवाओं के संयोजन का पर्याप्त चिकित्सकीय औचित्य नहीं और इनके उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सकते हैं। प्रतिबंधित दवाओं में त्वचा रोग, दर्द निवारण, ऐंठन और कुछ एंटीबायोटिक दवाएं शामिल हैं। प्रदेश में मानसून 25 जून के आसपास प्रवेश कर सकता है। फिलहाल प्री मानसून गतिविधियों के चलते मौसम में बदलाव बना हुआ है और आज भोपाल, इंदौर समेत कई जिलों में आंधी, गरज चमक और बारिश होने के समाचार मिले हैं। मौसम विभाग ने आज सीहोर और आगरमालवा जिले समेत 38 जिलों में आंधी और बारिश का दौर जारी रहने की संभावना जताई है। वहीं रीवा, सतना, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, मैहर, उमरिया, शहडोल, नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, धार और खरगोन जिलों में तेज धूप और उमस बने रहने के आसार हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मध्य प्रदेश की भावांतर भुगतान योजना को स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है। इंदौर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा 2 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय में नृत्य, गायन और वादन पर केंद्रित गतिविधि संभावना का आयोजन किया जा रहा है। शहडोल जिले में आकाशीय बिजली की चपेट में आकर बीते 2 दिनों में 3 लोगों की मौत हो गई है। झाबुआ में 5 और 15 वर्ष की आयु वाले बच्चों के अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट के लिए स्कूलों में विशेष शिविर लगाए जाएंगे। आगरमालवा में नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत कल मास्टर वॉलंटियर्स को जिला स्तरीय नशा मुक्ति जन जागरूकता प्रशिक्षण दिया गया और झाबुआ कलेक्टर ने जिले में खुले और अनुपयोगी बोरवेलों से बच्चों और पशुओं की सुरक्षा के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं। लीजिए, प्रस्तुत है किसान भाइयों का प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग।
1: आओ आओ किसान जीवन रेखा हो तुम, बरसोगे तो खेतों में होगी हरियाली, बरसोगे तो जीवन मानसून आओ।
2: इन्हीं चंद पंक्तियों के साथ स्वागत है कार्यक्रम किसानवाणी। सुन रहे सभी किसान भाइयों बहनों और श्रोताओं का आज कार्यक्रम में, आपके साथ मैं हूँ शैलेंद्र चौधरी
1: और मैं स्वाति जैन।
2: तो स्वीकार करें
1: हम दोनों की राम राम, राम, राम। शैलेंद्र भैया, इस मौसम के बारे में आपका क्या कहना है?
2: स्वाति बहन, आज है 20 जून, है ना? कहते हैं अधिकतर मानसून 20

0: 20 जून तक आ ही जाता है, मगर गर्मी इतनी तेज़ पड़ रही है कि हम तुम सभी किसान भाई से लेकर पशु पक्षी सभी लोग बहुत परेशान हैं।
1: हाँ शैलेंद्र भैया, हमारे किसान भाइयों की जमीन भी तैयार कर ली है बोने के लिए, और मानसून है कि आ ही,
0: हम क्या कर सकते हैं स्वाति बहन?
1: इसमें हम कुछ भी किसान भाइयों को आज के कार्यक्रम की जानकारी जरूर दे सकते हैं।
0: बिल्कुल, तो आज कार्यक्रम किसानवाणी में होगी आज की बात, योग करें स्वस्थ रहें इस विषय पर,
1: और साथ ही आज की चर्चा भी होगी सांबा की उन्नत खेती इस विषय पर। इसके अलावा मेहमान क्रम भी होंगे शैलेंद्र भैया।
0: बिल्कुल, मेहमान क्रम में होंगे हमारे साथ ग्राम बड़गोना जोशी तहसील मोखेड़ के युवा प्रगतिशील किसान एवं पशुपालक नवीन ठाकरे, और इनसे पशुपालन के अनुभव पर बातचीत की है रजनीश शर्मा ने।
1: और साथ ही मनोरंजन भी होंगे लोकगीत भजनों के साथ, और इसके अलावा महत्वपूर्ण विषय पर संदेश भी होंगे।
0: बिल्कुल, तो चलिए स्वाति बहन कार्यक्रम के किसानवाणी की शुरुआत करते हैं सुंदर से भजन से जिसे गाया है चंद्रभूषण पाठक ने।
1: चलिए सुनते हैं।

0: चलिए किसान भाइयों, इस सुंदर से भजन के बाद अब जुड़ते हैं हमारी आज की बात से, जिसमें आज हम बात करेंगे योग के बारे में। योग करें, स्वस्थ रहें। श्रोताओं, हमारे भारतीय इतिहास में योग एक ऐसी विद्या है जो कई हजार वर्षों से चली आ रही है और आज भी इसका उतना ही महत्व है। योग शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल ठीक कहा शैलेंद्र भैया आपने। योग शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए किया जाने वाला प्राचीन अभ्यास है, जो एक तरह से हमारे शरीर को लचीलापन तो बनाता है और हमारे शरीर का आंतरिक संतुलन भी इसमें बना रहता है।
0: बिल्कुल। और श्रोताओं, इस योग की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि योग करने से हमारे शरीर में होने वाली बीमारियों से बचाव कर हमारे शरीर को निरोगी भी बनाता है और शरीर को बीमारियों से बचाने और निरोगी रखने का यह सबसे अच्छा और प्रभावी तरीका भी है।
1: हाँ, इसके नियमित अभ्यास से तनाव और चिंता दूर होती है और मन बेहतर होता है। रक्त संचार बेहतर होने के साथ ही साथ शरीर वो कम
0: किसी प्रकार की बीमारी है, उन्हें भी कुछ विशेष आसन करने से राहत मिलती है। जैसे जिन लोगों को कमर का दर्द या गाठिया की शिकायत रहती है, उनके लिए कुछ विशेष आसन काफी फायदेमंद भी होते हैं।
1: हाँ भैया, इसके साथ ही जिन लोगों को नींद देखते हैं कि लोगों को नींद की समस्या बनी रहती है, तो ये इसे

0: श्वास और ध्यान, इन्हीं तीनों को साधने साधना करने से हमारे शरीर को बल मिलता है और शरीर निरोगी भी रहता है।
1: हाँ, और श्रोताओं, योग

0: श्रोताओं, एक शोध के अनुसार योग करने से कई स्वास्थ्य लाभ होते हैं, जैसे हृदय में सुधार होता है, मांसपेशियों में वृद्धि होती है, रक्तचाप का सामान्य होता है, तनाव के स्तर में कमी आती है, खुशी एवं कल्याण की भावना की वृद्धि भी हमारे शरीर में होती है।
1: हाँ बिल्कुल, और साथ ही किसान भाइयों, योग की तकनीक जो है वो 5000 वर्ष से भी इतना इसका जो अर्थ होता है योग
0: संतुलन और शक्ति को प्रदान करता है तो है ही, साथ ही इसके श्वास लेने के तरीके से मन शांत भी रहता है और हमारे दैनिक जीवन में होने वाले तनाव से भी मुक्ति मिलती है।

0: छोटे छोटे आसान क्रियाओं से करें, बाद में इसको कठिन साधन की तरफ ले जा सकते हैं। आसान करते समय, जो आसन आप करते हैं उसके समय दर्द नहीं होना चाहिए, है ना? जब आप योग कर रहे हैं तो दर्द नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो आसन को थोड़ा धीमा करें, या अपने चिकित्सक या योग शिक्षक की सलाह पर ही करना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति का शरीर अलग-अलग होता है।
1: बिल्कुल ठीक कहा शैलन भैया आपने। तो श्रोताओं, आप भी योग को शुभकामनाओं के साथ कि आप स्वस्थ रहें, और शैलन भैया
0: बिल्कुल
1: आगे
0: बिल्कुल स्वाति बहन, अब आज की बात के बाद अब एक बार फिर से मनोरंजन से जुड़ते हैं और
1: हाँ
0: एक चौकड़िया गीत सुनाते हैं अपने किसान भाइयों को, देशराज पटेरिया की आवाज में।
1: बिल्कुल।

0: चलिए किसान भाइयों, इस लोकगीत के बाद हम जुड़ते हैं हमारे मेहमान क्रम से, और मेहमान क्रम के अंतर्गत ग्राम बरगोना जोशी तहसील मोखेड़ के युवा प्रगतिशील किसान एवं पशुपालक नवीन ठाकरे से
1: किसान भाइयों को रजनीश भैया की राम राम। किसान भाई किसान नवीन ठाकरे से, जो तहसील मोखेड़ के अंतर्गत आने वाले ग्राम बरगोना जोशी में खेती के उनके अनुभवों को हम नवीन भैया से जानते हैं। तो नवीन भैया, आपको हमारी ओर से और हमारे सुनने वाले सभी किसान भाइयों की ओर से राम राम।
2: सभी किसान भाइयों को मेरी ओर से राम राम।
1: नवीन भैया, काफी अच्छी और व्यवस्थित आपकी ये पशुशाला हमें नजर आ रही है। तो कितना समय हो गया आपको पशुपालन करते हुए?
2: पशुपालन करते हुए मुझे करीब 4 साल हो गए।
1: तो नवीन भैया, इसके पहले आप क्या करते थे?
2: इससे पहले मेरी एजुकेशन चल रही थी, प्लस खेती में ध्यान देता था, तो खेती से जो आमदनी होना चाहिए हो नहीं पा रही थी। इस वजह से मैंने पशुपालन सहायक रूप में इसका आरंभ किया। काफ़ी संघर्ष के बाद में ऐसा हुआ है, शुरुआती टाइम में 2 गाय थी, फिर धीरे धीरे 2 से 3, 4, फिर बढ़ते बढ़ते आज 15 गाय हो गई है, और आगे भी बढ़ाने का सिलसिला करते रहेंगे आगे।
1: बहुत अच्छी बात है। तो आज ये जो हम देख रहे हैं कि आपकी पशुशाला में काफ़ी पशु हमें नज़र आ रहे हैं, तो ये लगभग कितनी संख्या होगी इनकी?
2: इनकी संख्या 15-16 है अभी, करीब
1: 15-16 पशु आपके पास हैं। तो ये गाय
2: भैंस दो ही है, भैंस ज़्यादा नहीं है, गाय है 15-16।
1: तो ये जो हम गाय देख रहे हैं कौन सी नस्ल की है?
2: HF की है, कुछ गिर की है दोनों,
1: और भैंस?
2: भैंस दो ही है, मुर्रा है दोनों।
1: अच्छा नवीन भैया, आपको इनसे कितने दूध की प्राप्ति हो जाती है?
2: इनसे मुझे करीब 1 गाय से 8 से 9 लीटर दूध निकाल लेते हैं हम।
1: तो कुल उत्पादन की अगर हम बात करें तो?
2: कुल उत्पादन की बात करें तो करीब अभी 50 से 55 लीटर हो रहा, कुछ गाय जनी है, कुछ अभी जनने वाली है, इस वजह से 50-55 लीटर दूध की प्राप्ति हो जाती है अभी।
1: और लगभग कितनी आय प्राप्त हो जाती है आपको दूध के विक्रय द्वारा?
2: दूध से आय का तो ऐसा है, करीब 25 से 30 हजार रुपए महीने की बचत हो जाती है।
1: यानी आपने जो सहायक धंधे के रूप में पशुपालन का जो चुनाव किया, आपके लिए काफी फायदेमंद रहा है?
2: हाँ, मेरे लिए काफी फायदेमंद रहा है, फिर मेहनत भी करना पड़ता है उसके लिए।
1: पशुओं के लिए आप चारे का प्रबंध कैसे करते हैं?
2: पशुओं के लिए चारा ऐसा रहता है कि समय समय पे चारा डालना पड़ता है, गर्मी के समय में गर्मी वाला चारा, बारिश में बारिश वाला।
1: अच्छी आय आप प्राप्त कर रहे हैं पशुपालन द्वारा। नवीन भैया, ये बताइए कि पशुओं को आप आहार किस तरह देते हैं, आप उन्हें क्या खिलाते हैं जिससे आपको पशुओं से अच्छी मात्रा में दूध की प्राप्ति हो?
2: तो गाय को तो सबसे शुरू में खली, चूनी, तेल वगैरह पिलाना पड़ता है, गुड़ वगैरह, गेहूं का पिसा हुआ आटा, कैल्शियम चारा रहता है खेती से आया हुआ हरा चारा, मक्का का आटा, बाकी सोयाबीन वगैरह, ये सब मिक्सर करके खिलाते हैं उनसे, ताकि दूध की अधिक प्राप्ति हो। और इनको समय समय पे नहलाना, देखभाल करना पड़ता है, कोई जानवर बीमार हुआ तो उनसे पहले वो उनको देखते हुए समय के साथ साथ पहले ही उनकी आयुर्वेदिक दवाई करना पड़ता है। कुछ ऐसी समस्या आई गाय के साथ में तो नज़दीक में पशु अस्पताल भी है जहाँ डॉक्टर आते हैं, घर पे इलाज करके चले जाते हैं, उससे काफ़ी हमको राहत मिलती है, इलाज वगैरह हो जाता है उनका टाइम टू टाइम। साथ में एक बात और, जो हम कैल्शियम खिलाते हैं गाय को, तो उससे क्या रहता है, जनते वक्त गाय को परेशानी नहीं होती, दिक्कत नहीं होती, और उसके साथ साथ दूध में अधिक प्राप्ति होती है, उनका जो शरीर है बना रहता है, कमजोरीपन दूर रहता है। इस वजह से कैल्शियम, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि सभी को कैल्शियम खिलाना चाहिए अपनी गायों को, कम से कम जनने के 2 महीने पहले से स्टार्ट कर देना चाहिए खिलाना, तो ताकि गाय का शरीर बना रहे, शरीर बना रहेगा तो उसमें दूध की प्राप्ति अधिक होगी।
1: खेती में आप
2: गेहूँ, मक्का, मौसमी फसल और अपना सब्जी वगैरह रहती है।
1: अच्छा उत्पादन मिल जाता है आपको इनका?
2: हाँ, अच्छा उत्पादन मिल जाता है पशुओं से जो...

0: गोबर हमको प्राप्त होता है उससे खाद बनती है, और वो खाद से सब्जियों में काफ़ी उत्पादन बढ़ता है, काफ़ी प्रॉफिट होता है उससे, ज़मीन की उपजाऊ क्षमता बनी रहती है उससे, और उत्पादन बढ़ के मिलता है।
1: नवीन भैया, बहुत ही अच्छी चर्चा आप पशुपालन के अनुभवों पर हमसे कर रहे हैं। चलते चलते आप हमारे किसान भाइयों से क्या कहना चाहेंगे?
0: किसान भाइयों से मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि अगर सभी किसान भाई खेती करते हैं तो उसके साथ साथ में पशुपालन ज़रूर करें। पशुपालन करने से साथ साथ हमें अपने आय में भी वृद्धि होगी, और हम अपने पशुओं से जो हमको गोबर प्राप्त होता है और उससे जो खाद हम खेत में डालते हैं उससे खेत में काफ़ी उत्पादन की बढ़ोतरी होगी, जिससे हमें काफ़ी लाभ होगा। और मैं यही कहना चाहूँगा कि खेती के साथ साथ पशुपालन भी स्टार्ट करें।
1: तो नवीन भैया, आपने अपने पशुपालन के अनुभवों पर हमसे चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।
0: राम राम सभी किसान भाइयों को, मेरा राम राम।
2: चलिए किसान भाइयों, इस मेहमान क्रम के बाद अब एक बार फिर से जुड़ते हैं मनोरंजन से, और आपको सुनवाते हैं चैतराम परस्ते और साथियों की आवाज में ये कर्मा गीत।

0: चलिए किसान भाइयों, इस लोकगीत के बाद हम जुड़ते हैं हमारी आज की चर्चा से, सांवा की उन्नत खेती। किसान भाइयों, सांवा यह नाम तो आपने सुना ही होगा। सांवा पौष्टिक और मोटा अनाज है और सबसे
1: दूसरी फसल की अपेक्षा कम होती है। सांबा की खेती मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में इसकी खेती विशेष तौर पर की जाती है।
0: किसान भाइयों, सांबा

0: किसान भाई जून से जुलाई के बीच सांभा कोदो जैसे मोटे अनाज की खेती करके अच्छा खासा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। और किसान भाई अभी अच्छा समय भी है सांभा की उन्नत खेती करने का।
1: तो शैलेंद्र भैया, हम आज की चर्चा इसी विषय पर कर रहे हैं।
0: हाँ स्वातिबेन, किसान भाइयों, सांभा की उन्नत खेती में भी भूमि की तैयारी, बीज बोने का सही समय, उन्नत किस्में, खाद, उर्वरक, कीट रोग, सिंचाई, इन सब का भी बड़ा ध्यान रखना आवश्यक होता है।
1: और तभी
0: खेती से अच्छे उत्पादन के लिए उन्नत किस्मों का चुनाव करें। खेत में कतार से बुआई करना है तो बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होना चाहिए।
1: और भैया, छिड़काव पद्धति से
0: पंद्रह जून से 15 जुलाई तक का होता है और अभी सही समय है बुआई का।
1: किसान,

0: दूरी 25 सेंटीमीटर रखनी चाहिए और बुआई के पहले फफूंदनाशक दवा कार्बेंडाजिम या फिर कार्डोकिक्सिन का 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से बीजोपचार बहुत जरूरी होता है।
1: किसान भाइयों, सांवा की आय

0: प्रबंधन बहुत जरूरी है। 50 से 100 क्विंटल कंपोस्ट खाद के साथ साथ 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 20 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटास के रूप में प्रति हेक्टेयर देना चाहिए।
1: और फास्फोरस

आप उपयोग करना चाहते हैं तो जैव उर्वरक में एग्रो बैक्टीरियम रेडियो वेक्टर और एस्परजिलस आवामूरी से बीज उपचार 10 ग्राम प्रति बीज की दर से करना चाहिए।

0: और कार्बोकिक्सन फफूंद नाशक दवा से उपचारित करना चाहिए। इसमें कंडवा रोग की रोकथाम की जा सकती है।
1: इसके अलावा किसान भाइयों सांवा की फसल
0: उपज को नुकसान पहुंचाते हैं कीट, और ये कीट की इल्ली तना के मध्य भाग से पहुंचकर तना

0: गाते अपने किसान भाइयों को राम प्रसाद अहिरवार और साथियों के आवाज में सुंदर सा सहरा गीत, मगर उसके पहले सुनते हैं कुछ महत्वपूर्ण संदेश।
1: मैंने 2015-16 से हम की खेती की है और इससे

0: कौन पंप लगता है? इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है।
1: ऑयल पंप का खेती के लिए मुझे सरकार

0: तो स्वाति बहन, अब देखिए अब घड़ी की सुइयां बता रही कि अपने किसान भाइयों से विदा लेने का समय हो गया है। तो मैं शैलेंद्र भैया
1: और मैं स्वाति बहन
0: कहते हैं।

एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग। अभी श्रोता सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी। हम आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। श्रोताओं, शाम के ठीक 8 बजे हैं। आइए अब जुड़ते हैं कार्यक्रम मेरी पसंद से।

शुभ संध्या साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी बेहद ही सकुशल होंगे और खुश होंगे। साथियों, आइए हम चलते हैं एक ऐसे संगीत के सफ़र में, जहां मेरी पसंद के एक ऐसे यादगार सफ़र में, जहां कभी आप घोड़े के टांगे की आवाज़ सुनेंगे तो कहीं साइकिल की घंटी बजेगी, कभी रेलगाड़ी की सीटी सुनाई देगी तो कभी कार की खिड़की से झांकते हुए सपने दिखाई देंगे, तो कभी बाइक की रफ्तार के साथ गीतों का कारवां आगे बढ़ेगा। जी हाँ साथियों, आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा साप्ताहिक कार्यक्रम मेरी पसंद, जिसमें मैं हूँ आपका हमसफर, आपका मेजबान विजय शर्मा। स्वीकार है मेरा स्नेहिल अभिवादन। साथियों, मेरी पसंद का यह पहला रंग है टांगे की सवारी का। पुरानी फिल्मों में टांगा एक रोमांटिक और शाही अंदाज का प्रतीक माना जाता था। टांगे पर फिल्माया की शायद आपको याद होगा, फिल्म थी नया दौर, अभिनेता दिलीप कुमार साहब और अभिनेत्री वैजंती माला पर इस टांगे पर फिल्माया गया ये नगमा, जिसमें मशीनों की प्रतिस्पर्धा और कहानी का मुख्य आकर्षण था।

साथियों, मेरी पसंद का ये दूसरा रंग है साइकिल के सफ़र का। अभी हमने इसी महीने 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया था। साइकिल केवल एक सवारी नहीं, बल्कि बचपन, दोस्ती और प्यार की कई खट्टी मीठी यादों का प्रतीक भी रही है। अब देखिए ना, मेरी पसंद का ये गीत आप सुनिए, जो है फिल्म पड़ोसन से। इसमें शायरा बानो अपनी सहेलियों के साथ मस्ती में साइकिल चला रहे हैं। तो श्रोताओं, हम तो आपसे बस यही निवेदन करेंगे कि हम सभी कल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने वाले हैं, तो साइकिल चलाना भी एक अच्छे व्यायाम और योग के अंतर्गत आता है। तो यदि रहना है निरोग तो करें योग और साइकिल चलाएं और स्वस्थ रहें। साथ ही पर्यावरण संरक्षण की तरफ भी हम ध्यान दें। आइए सुनते हैं फिल्म पड़ोसन का ये खूबसूरत सा नगमा, मेरी पसंद का।

दोस्तों, मेरी पसंद का तीसरा रंग है रेलगाड़ी के रोमांच का। भारतीय फिल्मों में रेलगाड़ी केवल परिवहन का साधन नहीं, बल्कि मिलन, बिछड़न और नई मंजिलों का प्रतीक भी रही है। अब फिल्म दोस्त का ये गीत सुने। जीवन अवसरों को अपनाने की प्रेरणा है, और यदि ट्रेन के सफर में हम थोड़ा सा अलग चलें तो आपको याद होगा एक रोमांटिक फिल्म थी आराधना। इस गीत में पर्दे पर थे राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर। दार्जिलिंग की टॉय ट्रेन में फिल्माया गया यह गीत आज भी उतना ही लोकप्रिय और प्रासंगिक है। और सपनों में मिलन पर केंद्रित मेरी पसंद के इस गीत को हम आपको सुनवाते हैं, जो कि है हमारा मेरी पसंद का तीसरा रंग, और खूबसूरत से ट्रेन पर फरमाया गया है। तो आइए आपको कराते हैं ट्रेन की सवारी इस गीत के माध्यम से, और लिए चलते हैं उन्हीं पुरानी यादों में।

मेरी पसंद का ये चौथा रंग है बाइक के सफर का। खुली सड़क और खुले रास्तों का अपना अलग ही मजा होता है। दुनिया में असली सिकंदर या असली विजेता वही है जो हर परिस्थिति में मुस्कुराते हुए जीवन का सामना करता है और अपने दुखों को भुलाकर दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाता है। और मेरी पसंद का यही है अगला गीत, जो कि एक ऐसा संदेश देता है जो कि सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए, आपके रेडियो सेट पर हम सुनवा रहे हैं मेरी पसंद का ये अगला संदेश देता हुआ, जीवन के सफर में आगे बढ़ता हुआ ये नगमा।

0: साथियों, मेरी पसंद का ये पांचवा रंग है कार के सफ़र का। 1958 की एक क्लासिक फिल्म थी चलती का नाम गाड़ी, उसका एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत है।
1: बाबू समझो इशारे और
0: ये गीत हमें सिखाता है कि जिंदगी की गाड़ी को हमेशा आगे बढ़ाते रहना चाहिए और निरंतर गतिशीलता और कर्म ही जीवन है। इस गाने में तीनों गांगुली भाई अशोक कुमार, अनूप कुमार और किशोर कुमार एक पुरानी 1928 की ए रोस्टर कार में मुंबई की सड़कों पर घूमते हुए दिखाई देते हैं। और मेरी पसंद का ये जीवन का खुलकर जीने का संदेश देता हुआ गीत है जो आ रहा है आपके रेडियो सेट पर।
1: पुकारे बम बम बम यहाँ।

0: क्या चलने का नाम हाड़ी।
1: दोस्तों, हर सफ़र में यात्राएं अक्सर नए लोगों, नई जिंदगियों और नई कहानियों, नए अनुभवों से भरी होती हैं और हमें बहुत सारी यात्राओं से, जीवन में कभी साइकिल की यात्रा हो तो उसकी धीमी सी चाल होती है, कभी रेलगाड़ी की रफ्तार होती है, कभी कार की उड़ान होती है, तो कभी टांगे की शान होती है, तो कभी बाइक की धूम होती है। इन्हीं सफ़रों में हमें कई सारे फिल्म गीत मिलते हैं और हम यूं कहें कि हजारों मीलों की यात्रा भी एक छोटे से कदम से शुरू होती है। तो पैदल चलना सबसे आसान व्यायाम और सबसे सस्ता और सबसे असरदार व्यायाम होता है। तो आइए चलते चलते सुनते हैं ये प्यारा सा आखिरी नगमा मेरी पसंद का।

तो श्रोताओं, चलते जाने के इसी विचार के साथ ही, इसी गीत के साथ ही, मैं आपका रेडियो मित्र विजय शर्मा आज के मेरी पसंद कार्यक्रम से विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे एक नए विषय, नए गीतों और नई यादों के साथ। तब तक आप ध्यान रखें आपका और आपके अपनों का। और हाँ, सफ़र जब भी करें तो एक बार, बस एक बार विजय शर्मा को या आज के उद्घोषक को ज़रूर याद करें, क्योंकि आज का सफ़र आपके साथ बेहद ही यादगार था। अब अनुमति दें अपने रेडियो मित्र विजय शर्मा को। आप ध्यान रखें आपका और आपके अपनों का। शुभ रात्रि, शब आखैर।

अभी श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम मेरी पसंद। हम आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। श्रोताओं, आइए अब जुड़ते हैं गैर फिल्मी गजलों से। गैर फिल्मी गजलों की पहली पेशकश है सरोज नंदा की मौसकी में। कलाम इब्राहिम अश्क का है और गुलकार है अनुराधा पोडवाल और चंदन दास। ये है गैर फिल्मी गजलों की पहली पेशकश।

श्रोताओं, आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से आप सुन रहे हैं गैर फिल्मी गजलें, और गैर फिल्मी गजलों में आइए आपको सुनवाते हैं रूप कुमार राठौर की गाई एक गजल जिसमें कलाम है सागर का, और ये है दोस्ती पर केंद्रित। क्योंकि दोस्त ऐसे होते हैं जो कि दिल की धड़कन जैसे होते हैं, जो रहते हैं और हर बार हर धड़कन में धड़कते हैं।

में आइए आपको सुनाते हैं रूप कुमार राठौर की गाई ये गजल, जिसमें कलाम है सागर का और ये है दोस्ती पर केंद्रित। क्योंकि दोस्त ऐसे होते हैं जो कि दिल की धड़कन जैसे होते हैं, जो रहते हैं और हर बार हर धड़कन में धड़कते हैं।

0: मुझे अपनी मम्मी के जन्मदिन पर आकाशवाणी से बधाई देना है, क्या करूं?
1: नो टेंशन, इसके लिए कुकड़ा हिल्स आकाशवाणी कार्यालय छिंदवाड़ा में संपर्क करो। और हाँ, अगर शादी या शादी की सालगिरह, त्योहारों की शुभकामना या किसी विशेष अवसरों पर किसी को बधाई देना चाहते हो तो भी आप आकाशवाणी कार्यालय छिंदवाड़ा में संपर्क कर सकते हैं।
0: अच्छा, मेरे चाचा बर्तनों की दुकान खोल रहे हैं, उसके लिए भी?
1: हाँ हाँ, अपने प्रतिष्ठान के शुभारंभ पर भी आप बधाई दे सकते हैं या जानकारी दे सकते हैं। तो विज्ञापन के लिए संपर्क करें
0: कुकड़ा हिल्स आकाशवाणी कार्यालय छिंदवाड़ा।
1: हाँ,
2: अभी श्रोता सुन रहे थे गैर फिल्म गजल। हम आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब सुनिए समाचार संध्या दिल्ली से।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत को शांति और सहयोग का पक्षधर बताया। कहा, वैश्विक संकटों और युद्ध जैसी परिस्थितियों का समाधान संवाद और कूटनीति से ही संभव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनजातीय समुदाय देश के विकास में महत्वपूर्ण भागीदार बन रहा है। ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त जारी की। 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों के खातों में अंतरित। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व करेंगे। नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा कल, परीक्षा केंद्रों पर कड़े सुरक्षा प्रबंध। ईरान ने युद्ध विराम उल्लंघन के बाद होर्मुज जल डमरू मध्य फिर से बंद किया। और चेन्नई में तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीती। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है।
4: देशर प्रधानमंत्री भाव्य दायित्व ग्रहण करिवा दिनरु
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पदभार संभालने के बाद से राष्ट्रीय हित में कई कदम उठाए हैं। इस महीने उन्होंने लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने का रिकॉर्ड बनाया। मैं सभी नागरिकों की तरफ से इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई देती हूं। मैं कामना करती हूं कि वे देश के लोगों के हित के लिए निरंतर काम करते रहें और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार करने में राष्ट्र का नेतृत्व करते रहें।
4: यह मोर आंतरिक कामना।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया।
6: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास। इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो

0: का प्रवेश द्वार बन रहा है।
1: इस दौरान ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त के रूप में 18,880 करोड़ रुपए जारी किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा।
0: साथियों, आज पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में पैसे भेजे गए हैं और पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए एक और खुशी की खबर है, आज से राज्य में पीएम फसल बीमा योजना शुरू की जा रही है।
1: प्रधानमंत्री कोलकाता में कल आईएनएस दुनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय का अनावरण करेंगे। इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल विश्व भर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा।
2: संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और योग परंपराओं को जोड़ते हुए देश भर के 100 विशेष स्थानों पर योग के विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस पहल के तहत 12 प्रमुख स्थलों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नई दिल्ली में लाल किला, उत्तराखंड में हरिद्वार, उड़ीसा में कोणार्क, कर्नाटक में हम्पी, तमिलनाडु में महाबलीपुरम, महाराष्ट्र में मुंबई, बिहार में नालंदा, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, लद्दाख में लेह, तेलंगाना में हैदराबाद और असम में सिलचर शामिल है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के साथ मिलकर विदेशों में मौजूद 210 से ज्यादा भारतीय मिशन लगभग 2,500 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। वहीं दिल्ली में शांति पथ, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कर्तव्य पथ, न्यू मोतीबाग, सेंट्रल पार्क और तालकटोरा गार्डन जैसे प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल श्रीनगर में डल झील के किनारे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में विशेष योग दिवस समारोह आयोजित करेगा। इस आयोजन में लगभग 1,500 वरिष्ठ नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। इसी कड़ी में आकाशवाणी समाचार आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव का विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा। आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज चैनल पर यह साक्षात्कार आज रात 9:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। श्री जाधव ने बताया कि कामकाजी लोगों के लिए सरकार ने वाई ब्रेक ऐप भी शुरू किया है।
3: लोग दिन भर चेयर पे बैठे के काम करना पड़ता है, वो लोग भी जब लंच ब्रेक होता है तब तक बहुत सारी थकान वो लोगों में आती है, तो वो थकान दूर करने के लिए भी उनके लिए वाई ब्रेक नाम का एक हमने ऐप निकाला है कि उसमें 10 मिनट में तुम चेयर पर बैठे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, करने से जो भी तुम्हारा थकान आई होगी वो दूर हो जाएगी।
1: दुनिया भर में भारतीय दूतावास और राजनयिक मिशन कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आज नेपाल में भारतीय दूतावास ने लुम्बिनी में योगासन कार्यक्रम आयोजित किया। चीन में भारतीय दूतावास ने पेइचिंग में आयोजित योग कार्यक्रम की झलकियां साझा की। उधर जापान में भारतीय दूतावास ने कल सुकिजी होंगन जी मंदिर में योग दिवस कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले संयुक्त अरब अमीरात में भी कई कार्यक्रम आयोजित हुए। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026

0: पुनर्परीक्षा कल आयोजित की जाएगी। परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश में 14 शहरों में होगी। इसमें 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल आयोजित की। एक रिपोर्ट।
1: परीक्षा के सुरक्षित, पारदर्शी और सुचारू संचालन के लिए पर्यवेक्षकों, समन्वयकों, पुलिस बलों और प्रशासनिक अधिकारियों सहित 2,00,000 से अधिक कर्मियों की तैनाती की गई है। निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। एनटीए भ्रामक सूचनाओं पर रोक लगाने और किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी सक्रिय रूप से निगरानी कर रहा है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएगी। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा कल संयुक्त अरब अमीरात में 3 निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज जानकारी सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने वाली सरकार की परिवर्तनकारी पहलों के बारे में।
2: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने भारत के हाईटेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। सशक्त भारत के 2 महत्वपूर्ण आधार हैं, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। सरकार की नीतियों और फैसलों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनी बल्कि अब निर्माण और डिजाइन से जुड़े कई इकाई भी काम कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। इस योजना के तहत सिलिकॉन फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर इकाई, असेंबली और टेस्टिंग सुविधाओं तथा चिप डिजाइन के लिए 50% तक वित्तीय सहायता दी गई। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया, जिसके लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों के सहयोग से शोध और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, नई तकनीकों का विकास करना और भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मिशन 1.0 ने इस जटिल उद्योग की मजबूत नींव रखी है।
3: हम अपने सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में ये हासिल कर पाए हैं। 75,000 से ज्यादा इंजीनियर इस क्षेत्र में प्रशिक्षित हो चुके हैं। 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज छात्रों को चिप डिजाइन करना सिखा रही हैं और भारत में 2 नैनोमीटर चिप्स डिजाइन की जा रही हैं, जो दुनिया की सबसे एडवांस चिप्स हैं। इनमें एनवीडिया और इंटेल की चिप्स भी शामिल हैं और ये सभी अब भारत में ही डिजाइन की जाती हैं।
2: भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरी तरह काम करने की अनुमति दी है। अब निजी संस्थाएं रॉकेट लॉन्च, उपग्रह निर्माण और संचालन, डेटा संग्रह और वितरण तथा ग्राउंड स्टेशन जैसी गतिविधियां कर सकती हैं। इस नीति के बाद भारत में स्पेस स्टार्टअप्स की संख्या 2014 में केवल 1 से बढ़कर 400 से अधिक हो गई है। इससे देश की निजी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग $8 अरब से अधिक की है और अगले 8 से 10 वर्षों में इसके 4 से 5 गुना बढ़कर $40 से $45 अरब तक पहुंचने की संभावना है। आकाशवाणी के साथ बातचीत में अनिल प्रकाश, स्पेस इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक ने बताया कि भारत में अब 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप्स हैं।
4: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पेस सेक्टर रिफॉर्म, स्पेस की स्थापना और प्राइवेट पार्टिसिपेशन में को बढ़ावा देने वाली नीतियों ने एक नई क्रांति की शुरुआत की है। आज भारत में 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप कार्यरत है, जो सैटेलाइट, लॉन्च व्हीकल, अर्थ ऑब्जर्वेशन और डाटा सर्विस जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन कर रहे।
2: सेमीकंडक्टर मिशन की उपलब्धियों और तेजी से बढ़ती निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के माध्यम से भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान की संयुक्त सैन्य कमान ने आज घोषणा की है कि होर्मुज जलडमरू मध्य को एक बार फिर बंद कर दिया गया है। यह फैसला लेबनान में इसराइल की सैन्य कार्रवाई का हवाला देते हुए लिया गया है। सरकारी टेलीविजन पर प्रसारित बयान में ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर इसराइल के हमले जारी रहे तो वह और कड़े कदम उठा सकता है। उधर दक्षिणी लेबनान में इसराइल

0: हवाई हमलों में 2 बच्चों सहित 16 लोगों की मौत हो गई। ये हमले संघर्ष विराम की खबरों के कुछ ही घंटों बाद हुए। कैलाश मानसरोवर यात्रा के तीर्थयात्रियों का पहला जत्था आज नाथुला दर्रे से होते हुए चीन में प्रवेश कर गया। इस दल में 47 लोग हैं। चेन्नई में भारत ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। भारत ने 29वें ओवर में 1 विकेट पर 224 रन बनाकर जीत हासिल की। 5 विकेट लेने वाले प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत को शांति और सहयोग का पक्षधर बताया। कहा, वैश्विक संकटों और युद्ध जैसी परिस्थितियों का समाधान संवाद और कूटनीति से ही संभव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनजातीय समुदाय देश के विकास में महत्वपूर्ण भागीदार बन रहे हैं। ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त जारी की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व करेंगे। नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा कल, परीक्षा केंद्रों पर कड़े सुरक्षा प्रबंध और चेन्नई में तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को हराकर श्रृंखला 3-0 से जीती। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, लीजिए सुनिए केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने पर विशेष द्विभाषीय कार्यक्रम।
2: ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए सशक्तिकरण से समृद्धि की ओर बढ़ते भारत पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार नीलू रंजन और सर्जना शर्मा। परिचर्चा का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
3: 12 वर्षों के कार्यकाल में वर्तमान सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सभी को भागीदार बनाकर राष्ट्र विकास का जो मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, उसके तहत उन्होंने जो एक लक्ष्य रखा है 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने का भारत को, उसमें उन्होंने 4 जो स्तंभ है उनकी पहचान की है, जिसे ज्ञान भी कहा जाता है, गरीब, युवा और अन्नदाता यानी कि हमारे किसान और नारियां। तो इन 4 जो वर्ग हैं उनके सशक्तिकरण पर सरकार ने लगातार बल दिया है। अगर हम हर बजट में देखें, जो भी प्रमुख संबोधन होता है प्रधानमंत्री जी का, उसमें इन वर्गों को सशक्त करने की बात की जाती है। और आज हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट सर्जना शर्मा जी और नीलू रंजन जी जुड़े हैं। इनसे हम समझना चाहेंगे कि इन 12 वर्षों में जो ये 4 वर्ग है, इनको सशक्त करके कैसे जो देश को समृद्ध करने का सपना है उसको साकार करने की तरफ हम बढ़े हैं। सो आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम।
4: थैंक यू सोनी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
5: बहुत बहुत धन्यवाद।
3: सर्जना जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं, लेडीज फर्स्ट कहा जाता है। सो आपसे मैं महिलाओं की ही बात करना चाहूंगी। जिस तरह का विकास महिलाओं का हुआ है और जो सरकार का मूल मंत्र रहा है कि विमेन्स डेवलपमेंट से आगे बढ़कर हमें विमेन्स लेड डेवलपमेंट यानी महिलाओं के नेतृत्व में विकास जो है उसकी ओर बढ़ना है, हमें बताएं कि इन 12 वर्षों में कौन से ऐसे परिवर्तनकारी रिफॉर्म्स हैं जो महिलाओं के लिए लाए गए हैं, जिनको आप सबसे महत्वपूर्ण मानती हैं।
4: सोनू जी, देखिए, महिला जो है वो कोई भी परिवार है, परिवार की धुरी महिला है, और जो एक अच्छा परिवार है वो एक अच्छे समाज का और एक अच्छा समाज अच्छे राष्ट्र का निर्माण करता है। अगर महिला सशक्त है, अगर महिला समृद्ध, मेरा मतलब खाली पैसे से नहीं, और भी बहुत सारी चीजें होती है जिसको समावेशी विकास कहते हैं, अगर महिला उस तरह की है तो वो पूरे अपने परिवार को बढ़िया करेगी, समाज को अच्छा बनाएगी और फिर राष्ट्र को। तो इसका मतलब धुरी जो है परिवार से लेकर राष्ट्र तक महिला के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता। भले ही आज से कुछ साल पहले तक महिलाएं बहुत घर से बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन घर में रहते हुए भी जो उनकी अर्थव्यवस्था है, जो उनका मनी मैनेजमेंट है, जो उनका रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, पुरुषों को तो शायद बहुत चीजें घर की पता भी नहीं होती जितना वो खुद सब मैनेज कर लेती हैं। आपने देखा होगा कि कोविड में पूरी दुनिया की इकोनॉमी ध्वस्त हुई, लेकिन भारतीय महिलाओं को जिस तरह की ट्रेनिंग है पैसे को जोड़ने की और आत्मनिर्भरता का जो उनका मूल मंत्र है, तो उसके कारण हमारी

0: अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी रही, क्योंकि सेविंग की बहुत आदत है हमारी महिलाओं को। तो मोदी जी ने जो ये सोचा, तो उसमें देखिए दो तीन चीजें तो मैं कहूंगी कि जो सबसे अच्छी रही, एक है उज्ज्वला योजना और एक है हर घर नल हर घर जल। तो ये जो दो चीजें सुलभ हुई हैं महिलाओं को, उससे उनकी जो फिजिकल लेबर है वो कम हुई है, उनकी एफिशिएंसी इम्प्रूव हुई है। आपको लकड़ियां बिनने जंगल में नहीं जाना और धुएं में काम नहीं करना। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आपको सब्सिडाइज सिलेंडर मिल रहा है, तो आप सोचिए उसकी कितनी मेहनत कम हुई। खाना अच्छा बनेगा, वो भी खुद भी रिलैक्स रहेगी। दूसरा है, अगर हम देखें कि हमारे भारत में बहुत सी ऐसी जगहें थी जहां पे महिलाओं की आधे से ज्यादा एनर्जी पानी लाने में भी लगती थी
1: जी,
0: तो ये जल मंत्रालय ने जो काम किया है, हर घर नल जो पहुंचाया है, हर घर जल पहुंचाया है, उसका भी बहुत लाभ हुआ है। फिर आपने इनको कहा है कि जरूरी नहीं कि आप 10 से 5 की जॉब करने जाओ, अगर आपके घर के आसपास या अपने घर में बैठे आप क्रोशिया भी बुनते हैं, आप स्वेटर भी बुनते हैं, आपको सिलाई भी आती है, या आपके आसपास जैसे कि मखाना की खेती में आपने देखा होगा मशरूम खेती, बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो लखपति दीदी बनी है उन्हीं चीजों से। जरूरी नहीं कि आपके पास बीए एमए की डिग्री हो, ऐसा भी नहीं है। तो जो इस तरह की योजनाएं हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो बनाए जिसमें कि लगभग 91 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं और 10 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन गई हैं
1: जी,
0: तो इस तरह की जो योजना है। और दूसरा मुद्रा योजना जो है कि अगर अपने घर में मुझे कोई काम शुरू करना है, मुझे लगा कि मुझे एक सिलाई स्कूल खोलना है, मुझे लगा कि मुझे क्रोशिया सेंटर बनाना है अपने घर में, मुझे लगा कि मेरे पास जो स्किल है जो मुझे किसी स्कूल से नहीं अपनी फैमिली से ट्रेडिशनल मिली है, अगर मैं उसी को आगे विकसित कर, कौशल हुनर जो कि परंपरागत हमारे यहाँ आपने देखा कि कोई साड़ी बनाता है तो कोई लकड़ी का सामान बनाता है, तरह तरह की चीजें हैं, मतलब गिनाना मुश्किल है क्योंकि भारत में इतनी विविधता है। अब कुछ तो महिलाएं जैसे हल्दी उगा रही हैं, कोई मशरूम उगा रहे हैं, तो उनको जो लोन मिल रहा है सस्ती किश्तों पर, मतलब कि उनको बहुत ज्यादा भागदौड़ नहीं करनी, और मुद्रा लोन जो मिल रहा है इससे भी उनका जो लाइफ है वो बहुत आसान हुई है। दूसरा है शिक्षा को लेकर भी बहुत काम हुए हैं, केजी टू पीजी जो है कि आप केजी से लेके पीजी तक बच्चियां जो है वो पढ़ेंगी। और फिर ये है कि सुरक्षा का वातावरण, आप देखेंगे कि कई राज्यों में तो ऐसा था कि 6 बजे के बाद लड़कियां घर से नहीं निकलती। उत्तर प्रदेश का मैं आपको एक उदाहरण दूं जैसे कि, तो अब देखिए वहां बेखौफ लड़कियां रात को 2-2.5 बजे तक भी आराम से घूम सकती हैं क्योंकि सुरक्षा इतनी ज्यादा। जब तक माँ और बेटी को नहीं लगेगा कि वो सुरक्षित है तो बेटी बाहर काम करने उसको कोई जाने नहीं देगा।
1: बहुत इंपॉर्टेंट ये सशक्तिकरण का,
0: ये बहुत सुरक्षा की भावना, वो जो इस सरकार ने सुरक्षा की भावना दी, महिला थाने खोले, महिला हेल्पलाइन खोली कि आप तुरंत फोन कीजिए आपको मदद मिलेगी। और एक और देखिए कि महिलाओं को मैटरनिटी लीव में डबल किया है
1: जी,
0: 3 महीने से 6 महीने किया, ये भी एक बहुत बड़ा सशक्तिकरण है महिला का।
1: बिल्कुल,
0: मातृत्व सुरक्षा योजना है, शिशु योजना है, इन सब योजनाओं ने महिलाओं के जीवन को आसान किया है, सुविधा दी है। मैं बात कर रही हूँ उन महिलाओं की जो की अभी तक बहुत बाहर निकल के काम नहीं करते। अब हम बात करते हैं उन महिलाओं की जो पढ़ लिख के आगे, जैसे कि आपने सैनिक स्कूल लड़कियों के लिए खोल दिया गया, जैसे कि एनडीए खोल दिया गया लड़कियों के लिए, लड़कियां फाइटर पायलट हैं। तो ये जो इस तरह की चीजें भी आई है ना, उससे पूरे देश में बाकी लड़कियों को भी एक प्रेरणा मिली। 26 जनवरी परेड का आपने जो स्वरूप बदलते हुए देखा होगा, आप देखिए कैसे स्वरूप बदला है। पहले आप देखिए किसी भी कंटिंजेंट में लेडी नहीं लीड करती,
1: एकदम गर्व से सर ऊंचा हो जाता।
0: अब आप देखिए अब 26 जनवरी परेड का रूप बदल गया है। तो मुझे लगता है बहुत सारे, और इसका सबका कारण मैं एक समझती हूँ, क्योंकि इस सरकार का जो है अंत्योदय, जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, शुरू से ही भाजपा का ये मूल नियम रहा है अंत्योदय, अंत से उदय करना है। तो ये बहुत सी योजनाएं जो है जो सबसे वंचित वर्ग है वहां से शुरू होती है, और जैसे कि जो अफोर्ड कर सकते हैं एलपीजी, तो उनको अब आप देखिए सबका हटा दिया, हमने भी सरेंडर किया, और वो उन वर्गों तक पहुंचा जिनको उसकी आवश्यकता थी।
1: सो बिल्कुल टारगेटेड जो है, फोकस्ड इम्प्लीमेंटेशन भी हुई है रिफॉर्म्स की। नीलू जी, अगर हम एक बहुत बड़ी जो शक्ति मानी जाती है भारत की, कि भारत एक युवा देश है, यहाँ पे डेमोग्राफिक डिविडेंड है, सो जिस तरह से जो युवा पीढ़ी है उस पर जो ध्यान दिया है सरकार ने और जिस तरह से उनका सशक्तिकरण हुआ है, आप किन पहलों को इन 12 वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं? अगर आप टॉप 2-3 हमें बताएं कि कौन सी आपको पॉलिसी डिसीजंस जो है वो सबसे आपको लगता है कि परिवर्तनकारी सिद्ध हुए हैं या हो सकते हैं।
2: देखिए सबसे बड़ी बात है युवाओं के लिए कि युवाओं में अपनी ऊर्जा बहुत होती है, शक्ति उनकी अपनी बहुत है
1: जी।
2: उस ऊर्जा को अवसर देने की जरूरत है, उसके लिए बहुत

0: कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको
1: जी।
0: ये पहली बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात है। और समस्या ये थी कि युवाओं को अवसर नहीं मिलता था, और वो जीवन के हर फील्ड में, चाहे वो अर्थव्यवस्था के किसी भी फील्ड में चले जाएं, शिक्षा में चले जाएं, खेल में चले जाएं, हर फील्ड में वो काम कर सकते हैं, उनकी एनर्जी है और सबके अपने अपनी खासियत है। तो जो उनकी रुचि है, जो वो कर सकते हैं, उसमें अवसर कैसे दिए जाएं, तो मैं ये कह सकता हूं कि युवाओं के लिए अवसर के ऐसी अनंत संभावनाओं के दरवाजे खुल गए हैं कि हर युवा जो है वो अपने अपने कौशल के विकास में, अपने अपने क्षेत्र में जिसमें करना चाहता है वो कर रहा है। और इसलिए आप देखें, खेल हो, शिक्षा हो, चाहे वो स्वरोजगार हो, चाहे वो साइंटिफिक चीजें डेवलपमेंट हो, नई टेक्नोलॉजी हो, जो अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी है, आईटी से रिलेटेड है, आप युवाओं को देखेंगे पूरी दुनिया में छा रहे हैं भारत के युवा। इसमें दो तीन चीजें महत्वपूर्ण है जो देखने की बात है कि जैसे युवाओं के लिए अवसर की जब मैं बात करता हूं, तो पहले मेडिकल की सीटें जो थी, अगर MBBS के देख लें तो 55,000-56,000 की होती थी। 140 करोड़ के देश में केवल 56,000 MBBS आप बना रहे थे, आज वो 125,000 की सीटें हो गई हैं, डबल से भी ज्यादा हो गई हैं। जो पोस्ट ग्रेजुएट थी वो लगभग 30-32,000 के आसपास थी, वो लगभग 65,000-70,000 हो गई, डबल से ज्यादा वहां भी हुई है। ये यूथ पहले बाहर जाता था, यूक्रेन से कर रहा है, चीन से कर रहा है, नेपाल से कर रहा है, वहां जो यूक्रेन की आपदा में कैसे फंस गए थे सब देख रहे हैं, MBBS कर रहे थे, इंजीनियरिंग कर रहे थे। वैसे यूनिवर्सिटीज जो है, मेडिकल कॉलेजों की संख्या जो है, सीटें बढ़ी हैं, तो मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ी है, वो लगभग 380 के आसपास थी आजादी के बाद, 2014 तक खोली गई थी, वो लगभग 750 के आसपास हो गई है। 50-60 और मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, जो सीटें जो है MBBS की वो 50,000 और बढ़ने वाली है। ये युवाओं को अवसर दिया देश के भीतर कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आपके लिए है। ऐसे यूनिवर्सिटीज, क्योंकि यूनिवर्सिटीज में एडमिशन आप देखते थे कितना मारामारी है, एडमिशन नहीं मिलता था, लोग जो है वो ओपन स्कूलिंग करते थे। ओपन स्कूलिंग अभी भी खुला है और वो एक बढ़िया विकल्प है कि उसमें हम कैसे कर सकते हैं, क्या हम और कोई काम करते हुए भी हम ओपन स्कूलिंग से कोई शिक्षा ले सकते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटीज की संख्या लगभग 800 से बढ़ करके और 1300-1400 हो गई है, वो डबल हो गई है, ये तो उन्हीं के लिए हुआ है। और खेल में प्रतिभाओं को निखारने के लिए सरकार ने पैसे दिए हैं, जो स्कीमें लाई हैं, जो युवा खेल जो प्रतिभाएं हैं उनको कैसे ट्रेनिंग दी जा रही है। तो आप देखें कि ओलंपिक खेल हो, चाहे एशियाड खेल हो, चाहे कोई भी खेल हो, जो भारतीय युवा, जो कहा जाता था कि खेलों के लिए भारत में युवाओं का जो शारीरिक संरचना है वो ऐसे खेलों में कंपटीशन के लिए नहीं है, वो कहीं ना कहीं कम है, वो गलत थी बात, वो कहा जाता था।
1: और ये अपॉर्चुनिटी दी खेलो इंडिया जैसे आयोजनों के,
0: खेलो इंडिया, वही मैं कह रहा हूँ, खेलो इंडिया आयोजन वो तो एक आयोजन है, लेकिन आप जो साई के सेंटर्स हैं, जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो सेंटर्स हैं, वहां पे युवाओं पे जो इन्वेस्ट किया जा रहा है, उनको जो ट्रेनिंग दी जा रही है, उनपे जो खर्च हो रहे हैं, इंटरनेशनल कोचेज अगर युवा को अच्छा कर रहा है, ओलंपिक के और एशियाड के लायक कर रहा हो, तो जर्मनी हो चाहे कहीं भी, सरकार के खर्चे पे ट्रेनिंग हो रही है। तो ये एक बड़ा अवसर जो है युवाओं के लिए है। निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि सारे युवाओं को जो है वो सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है, सारे युवा इस तरफ नहीं जाएंगे, तो वोकेशनल स्टडीज का जो है एक बड़ा उन्होंने किया है ट्रेनिंग, और जो ITI हमारा जो ट्रेनिंग का जो था उसका मॉड्यूल को पूरा चेंज किया है। पहले युवाओं को होता था कि वहीं पे है ITI करो, जो कोर्सेज है वही करो, वो सब पुराने कोर्सेज हो गए, अब उसको रीडिजाइन किया जा रहा है कि हर डिस्ट्रिक्ट में अगर ITI है तो उस डिस्ट्रिक्ट में कौन से उद्योग हैं, वहाँ कहाँ प्रशिक्षित युवाओं की मांग है, तो ऐसे वहाँ पे उसी लेवल पे उनको ट्रेनिंग दें, वहाँ फैसिलिटीज दें। अब कितने ट्रेनर हैं, किस किस फील्ड में हैं, ये नहीं पता था, अब सरकार एक नया बना रही है डायरेक्टरी जिसमें कि किस फील्ड के कितने अच्छे ट्रेनर हमारे कहाँ कहाँ हैं, कहाँ कहाँ गैप है, कहाँ क्या डिमांड है, दे सकते हैं, तो एक बड़ा चीज है। और सबसे बड़ी चीज जो है वो सबसे बड़ी चीज जो सबसे ऊपर जाती है वो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, वो तो बिल्कुल विशुद्ध युवाओं के लिए है
1: और बदलते परिवेश के अनुसार जो जरूरतें हैं उसके अनुकूल है।
0: उसने जो 10+2+3+2 का जो पूरा का पूरा शिक्षा मॉडल था उसका शिकंजे से युवाओं को मुक्त कर दिया है कि आपको 12th करना है, फिर 3 साल जो है आपको BA करना है, फिर 2 साल PG करना है, फिर MPhil करना है, ये करना है, उसके बाद कॉम्पिटेटिव एग्जाम देना है। अगर बीच में आपकी पढ़ाई छूट गई तो छूट गई, आपकी सारी मेहनत खत्म। अब उसमें बिल्कुल फ्लेक्सी कर दिया है कि क्रेडिट सिस्टम होगा, आपने 1 साल पढ़ा, 1 साल के बाद आपकी जरूरत पड़ गई, घर में नौकरी आपको लगा कि वो पढ़ लेते तो मेरा हो जाता, तो जो आपने 1 साल पढ़ा हो, 2 साल पढ़ा हो, वो आपके क्रेडिट में है, वो आप कर सकते हैं। जो सिलेबस चुनने में जो था, जो समस्याएं थी कि

0: बच्चा क्या करेगा, साइंस लेगा तो बायोलॉजी लेगा, केमिस्ट्री लेगा, जब वो कहा होता है मैथमेटिक्स लेगा, फिजिक्स लेगा, मतलब एक था कि आप सेट हैं उसी में हैं। अब कोई बच्चा जो है वो हिस्ट्री भी पढ़ना चाहता है और मैथमेटिक्स भी अच्छा हो, वो क्यों नहीं ले?
1: तो युवाओं के लिए बहुत सारे जो
0: मतलब जितने शिकंजे थे, जो अनंत संभावनाएं, जो अवसर उसके युवाओं के लिए है, वो अवसर के दरवाजे सरकार ने खोले हैं।
1: बिल्कुल,
0: कि आप जो करना चाहे करो, युवाओं में इतनी ऊर्जा है कि वो बाकी सब कुछ कर लेंगे, उनको करने के लिए आपको कुछ सपोर्ट की जरूरत नहीं है, केवल अवसर देने की जरूरत है। और पिछले 12 सालों में वो अवसर मैंने इतने गिनाए आपको कि जो जो करना चाहे, जहां करना चाहे, इस देश में अवसर है, आपको देश छोड़ के जाने की जरूरत
1: नहीं। सरकार का जो ये एक सोच है कि आप जॉब सीकर के बजाय जॉब क्रिएटर बने, आत्मनिर्भर उद्यमी, जिस तरह से अगर हम स्टार्टअप्स की अगर हम जब स्टैटिस्टिक्स देखते हैं कि 350 स्टार्टअप्स थे 2014 में और अब वो बढ़कर जो संख्या है 2.2 लाख हो गई है, आपको लगता है कि ये जो एक इनोवेशन की स्पिरिट, एंटरप्रेन्योरशिप की स्पिरिट, इसको बहुत बढ़ावा दिया गया है इन 12 वर्षों में?
0: बिल्कुल, निश्चित रूप से। स्टार्टअप्स जब शुरू शुरू आया था तो लोग कह रहे थे कि भाई युवाओं को नौकरी चाहिए, स्टार्टअप में क्या कर लेंगे, कैसे कर लेंगे। अब आप देखें कि उसमें जो स्टार्टअप्स हैं वह बड़े बड़े बन रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के रूप में हो रहे हैं। 8,000-10,000 करोड़ का उनका टर्नओवर वो तत्काल हो रहा है। 150-200 स्टार्टअप ऐसे हो गए हैं जिनका टर्नओवर जो आप देखें तो अच्छी अच्छी कंपनियों से बेहतर है। वो तो वो एक अवसर, और स्टार्टअप में सरकार का जो मदद है
1: स्टार्टअप इंडिया द्वारा,
0: कि उसमें आपको ये टैक्स में छूट है, और इसमें आपके जो पुराने इंस्टीट्यूट हैं, IIT हैं, IIM, उन्होंने जिस ढंग से उनको आगे बढ़ाया है, वहाँ उनके टीचर जो मेंटोर हैं, वहाँ पे एक इकोसिस्टम बन रहा है, वो चल रहा है। और अगर स्टार्टअप में देखेंगे तो टेक के क्षेत्र में जो कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में ज्यादातर वो काम कर रहे हैं, बाकी तो नए नए जो वेंचर्स उसमें भी आ रहे हैं, उसमें आप देखेंगे कि पेटेंट की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी, यानी कि जो हमारे यूथ जो कहीं रिसर्च में लगे हुए हैं, कुछ नई चीज ढूंढ रहे हैं, पहले पेटेंट नहीं होता था, पूरा पेटेंट के जो रजिस्ट्री, जो पूरे मैकेनिज्म है वो चेंज किया जा रहा है। लाखों यूथ जो हैं वो अब नए नए पेटेंट के लिए हर साल लाखों अप्लाई हो रहे हैं, और पेटेंट मिल रहा है। पेटेंट मिलने का मतलब यह है कि बिल्कुल नई चीज, नए इनोवेशन करके आप दे रहे हैं। तो ये हर क्षेत्र में यूथ के लिए उन्होंने, चाहे खेल हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे रोजगार हो, अगर आप रोजगार देने वाला स्टार्टअप जैसे अगर आप उद्यमी बनना चाहते हैं तो वो अवसर भी है जो पहले नहीं मिलता था।
1: बिल्कुल। और अगर हम तीसरे स्तंभ की बात करें किसानों की, तो किसानों के सशक्तिकरण का रंजन जी जो एक क्रांतिकारी हमने बदलाव देखा है प्रोडक्शन फिगर्स में, अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो हम top 10 एक्सपोर्टर्स ऑफ द वर्ल्ड में अब शामिल हो गए एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स, और जिस तरह से नई मिनिस्ट्रीज का गठन हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, एलाइड सेक्टर्स के लिए एक अलग मिनिस्ट्री, किसानों के सशक्तिकरण को आप कैसे देखते हैं पिछले 12 सालों में, और इसका आधुनिकीकरण जो हुआ है उसके प्रमुख पहलू आप क्या मानते हैं?
0: देखिए, उसमें पहले आपको समझना पड़ेगा कि जब खेती में दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है, एक तो होता है इनपुट कॉस्ट, कि आप जब खेती करने जा रहे हैं तो आपको क्या क्या उसमें लगाना पड़ेगा, और अगर खराब हो गई फसल, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, कुछ भी हो गया, आपदा आ गई, तो आपका क्या होगा। पहले जो समस्या थी कि इनपुट कॉस्ट की तुलना में जो हम मिनिमम जो गारंटी सरकार देती भी थी कि हम खरीदेंगे, तो कुछ फसलों पे थी, चावल था, गेहूं था, एक दो फसलें और थी, वो नहीं थी कि ये हम आपको खरीदेंगे। अगर आप देखेंगे 12 सालों में तो जो उर्वरक है, जो फर्टिलाइजर है, कीमत उसकी लगभग सेम है, 12 साल में नहीं बढ़ा है, सरकार को सब्सिडी बढ़ रही है, लेकिन वो लगभग 250-300 रुपए की बोरी जो 45 किलो की जो यूरिया की थी आज भी वही है।
1: बहुत बड़ा समर्थन है।
0: इसका मतलब कि जो कॉस्ट आपका है वो उर्वरक वाला वो नहीं बढ़ा है, वो सेम है। दूसरा कि पूरे देश में बिजली जो है वो 24 घंटे उपलब्ध है लगभग, मतलब ग्रामीण इलाकों में कहते हैं कि एवरेज 22-23 घंटे बिजली आज है, पहले नहीं होती, या और किसान अधिकांश जो राज्य है उसमें किसानों की बिजली फ्री है, तो सिंचाई के लिए आपको कोई अलग से कोई कॉस्ट नहीं आ रहा है, और आपके खाद्यान्न की कीमत अगर आप देखेंगे तो कुछ बढ़ा ही है। दूसरी इससे भी बड़ी बात यह है कि सरकार जो सहायता दे रही है 2,000 रुपए का,
1: 6,000 प्रति वर्ष,
0: 6,000 के हैं, तो वो उसका अगर आप समय देखेंगे कि वो उस वक्त दिया जाता है, और छोटे किसान, आपके अधिकांश जो देश में किसान हैं 12 करोड़ छोटे किसान हैं, उनके पास पैसे नहीं होते हैं, जिस वक्त उनको बुआई करनी होती है, जो खेत लगाना होता है, कुछ करना हो तो बीज खरीदने के लिए पैसे नहीं होते हैं, उनके लिए उस वक्त उनको पैसे दिए जाते हैं, वो मदद उनको दी जा रही है।

0: क्रेडिट कार्ड उनको दिया जा रहा है कि लाख
1: बिल्कुल
0: रुपए तक अगर आपका खर्च कोई करना हो तो बहुत सस्ते में, कुछ नहीं देना है आपको, आप उसमें खर्च कर सकते हैं। जो फिशरीज का जो अलग से मिनिस्ट्री बना करके उनका जो ब्लू रेवोल्यूशन जो उनका किया है और जो एक्सपोर्ट बढ़ा है वो आप देखिए, हॉर्टिकल्चर में जो भारत का एक्सपोर्ट जो मेनली जो आपको दिख रहा है एक्सपोर्ट जो कृषि क्षेत्र में, वो उसमें दिख रहा है क्योंकि उसमें 10% 12% का ग्रोथ है, वो एक बड़ी ताकत के रूप में भारत उभर रहा है। तो किसान एज ए होल कह लें आप, बड़ा परिवर्तन हुआ है। और किसान अगर आप कहते हैं ना सिर्फ, तो किसान नहीं होता है सिर्फ, उसी घर में महिलाएं भी, महिलाओं का जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बन रहा है,
1: जैसा अभी सर्जना जी बता रही
0: सर्जना जी
1: थी।
0: बता रही हैं, तो वो भी तो वहीं बन रही हैं। जो 10 करोड़ महिलाएं हैं वो भी तो किसान परिवारों से ही आती हैं, वो किसान परिवार सशक्त हो रहा है। जो मार्केट का डेवलपमेंट, जो आपकी सड़कें बन रही हैं, तो उन सड़कों के बनने से किसान का जो प्रोडक्ट है वो मार्केट तक आसानी से पहुंच रहा है। और आपने आज 20-25 फसलें ऐसी हो गई हैं जिनकी गारंटी सरकार दे रही है खरीदने के लिए कि हम उसको खरीदेंगे, है ना, आप उपजाओ और गारंटी है इस कीमत पे हम करेंगे। कई राज्य सरकारों ने इधर भावांतरण योजना शुरू कर दी है कि अगर आपको मार्केट से कम कीमत में आपको बेचना पड़ रहा है, मार्केट में बेच रहे हैं, तो वो उस कीमत का पैसा हम आपको देंगे, यानी किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा। तो जो अन्नदाता है उसके लिए उन्होंने खोला है, सारी चीजें व्यवस्था हो रही है। जो मतलब जो जो सीधे से किसान से नहीं जुड़ा है, किसान से लगता है कि जुड़ा हुआ नहीं है। अब मान ले कि जो सरोवर बनाने का था कि जीर्णोद्धार करना है, तमाम तालाबों का सब भर गए थे, सब कुछ है, वो किसका पानी का लेवल बढ़ रहा है, वहां सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हो रही है, किसको जा रहा है फायदा, ये कई चीजें सीधे उनसे जुड़ी हुई नहीं है। जो ग्रामीण इलाकों में जो गरीब परिवार हैं उनका जो फ्री में इलाज जो 5 लाख का हो रहा है, उसमें बहुत सारे परिवार ऐसे गरीब हैं जो आयुष्मान भारत योजना के तहत, वो किसान परिवार से आते हैं। जो 55-60 करोड़ लोग हैं, वो कहाँ से 55-60 करोड़ लोग हैं, बहुत सारे वहां से भी हैं। इसीलिए किसानों पे जो इनपुट कॉस्ट है, उनके जो जीवन के लिए जरूरी चीजें हैं, जो खर्चे हैं, सरकार ने उसे कम किया है, उनकी उत्पादकता बढ़ाई है। और अब कोऑपरेशन मिनिस्ट्री अलग से बना करके उनका कैसे वो जो फार्मर का जो प्राथमिक जो है वो संघ बने, कोऑपरेटिव बने, उसकी 1 लाख के आसपास हो गया है, उसमें है कि 2-3 लाख कोऑपरेटिव बनाने हैं। कोऑपरेटिव बना करके सिर्फ कोऑपरेटिव नहीं करना है, इंटरनेशनल कैसे उनका ऑर्गेनिक खेती करें, कैसे वो विदेश में एक्सपोर्ट हो, इसके लिए अलग से कोऑपरेटिव बना दिया है।
1: बिल्कुल,
0: तो हर तरफ से किसानों को सशक्त कर, किसान सशक्त मतलब देश सशक्त।
1: बिल्कुल सर्जना जी, अगर आपके पास आए, जैसा कि अभी नीलू जी कह रहे थे कि सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है, जो सारे चारों स्तंभ हैं ये भी आपस में जुड़े हुए हैं। अगर हम खास तौर से वंचितों की बात करें, जिन्हें मार्जिनलाइज्ड कहते हैं या आर्थिक रूप से कमजोर, इनके बारे में थोड़ा सा बताएं कि इनके जैसे जो जनजातीय समूह के लिए जो स्टेप्स उठाए गए हैं या जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए स्टेप्स उठाए गए हैं, ये मार्जिनलाइज सेक्शन के लिए आप हमें बताएं कि किस तरह के परिवर्तनकारी उपाय हुए हैं।
2: वर्ग में तो एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। वो ऐसे आया है कि एक तो सबसे पहले उस वर्ग में आत्मसम्मान, आत्म गौरव की भावना पैदा करना, जो हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, जिनको पहले आदिवासी बोला जाता है, तभी वनवास, जनजाति जैसे हैं, तो इनके लिए आप देखें कि जो उनके हीरो रहे हैं, बिरसा मुंडा हैं और बहुत सारे, उन सबको इन्होंने निकाला और जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है बिरसा मुंडा जी के नाम से। फिर आदि मेले लगने शुरू हुए और एकलव्य स्कूल बनाए गए हैं इन बच्चों के लिए, उसका नाम है एकलव्य स्कूल, कि इतने ट्राइबल बच्चे हैं, क्योंकि अगर वो रेगुलर स्कूल में नहीं जा पा रहे तो आप उनको, बोर्डिंग स्कूल है ये, उसमें आप उनको पूरी तरह से एक आधुनिक शिक्षा भी दे रहे हैं, आप उनको शिक्षा से जोड़ रहे हैं। दूसरा, जो ट्राइबल्स हैं वो हमारे जल वन के रक्षक और संस्कृति के रक्षक सबसे ज्यादा वो हैं। हम जो पढ़े लिखे शहरी हैं, हम पर्यावरण की उतनी रक्षा नहीं कर सकते जितना वो लोग करते हैं, तो उनके लिए जो वन धन योजना है उससे बहुत लाभ है। उनको कहीं नहीं जाना, नौकरी के लिए एप्लीकेशन नहीं देना, क्योंकि उन लोगों को ये भी मालूम है कि कौन सी जड़ी बूटी का क्या असर है। उन पत्तों को हम, नीलू जी या आप, जंगल में जाके नहीं पहचान सकते। उनको पता है कि कौन सा फूल जब खिलेगा तो उसके बाद कब बारिश होगी, कब आंधी आएगी, तो वो लोग प्रकृति के साथ सहचर हैं, प्रकृति के। ये जो मंत्रालय है, ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री है, तो ये भी आप देखिए कि वैसे तो अटल जी के समय में बना था, लेकिन अब इसमें बहुत सारे परिवर्तन आए हैं। और ये खेलने में बहुत अच्छे हैं, ये हॉकी में है, स्पेशली तीरंदाजी में, कुश्ती में, तो उस पर भी ध्यान दिया गया है। इनके लिए बोर्डिंग्स खोले गए, इनके लिए कोचेज

0: दिए गए हैं इनके लिए,
1: जी
0: इनके लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। और जिस एरिया में जो चीज ज्यादा जो पैदावार हो रही है, अब देखिए कि जैसे मखाना बोर्ड बिहार में बनाया गया है, पहले तो नहीं था। दूसरी बात, खाली मखाना बोर्ड बना देने से काम नहीं होगा, ट्रेनिंग है उनकी, फिर उनकी प्रोडक्ट की कीमत है, फिर उनकी प्रोडक्ट को देश में और विदेश में सब जगह पे उनको मंच मिले, ई कॉमर्स जिसको वो भी चला रहे हैं। अभी जब मोदी जी यात्रा पर गए हमारे प्रधानमंत्री जी, फ्रांस, स्लोवाकिया और G7 में, तो मैं जो लिस्ट देख रही थी, आप सोचिए उसमें वो पिछली बार मखाने लेके गए थे, इस बार वो ठेकुआ भी लेके गए। ठेकुआ भी आप मतलब,
1: हाँ,
0: हाँ
1: उन्होंने सम्मान दिलाया है पूरे,
0: श्री अन्न उसको
1: जी,
0: नाम दिया, जिसको मोटा अनाज सब बोलते थे, अब उसको देखिए मान श्री अन्न, और सब चीजों की कीमतें भी बढ़ गई उसकी वजह से, और उसका किसान को लाभ हो रहा है। आज मखाने का आप रेट देखिए बाजार में, तो वो सारा आप सोचिए कि वो लाभ किसान को जा रहा है। और दूसरा, जैसा अभी नीलू जी ने कहा कि खाली विकास समग्र होना चाहिए, अगर मेरे पास प्रोडक्ट है और मैं मंडी तक ही नहीं पहुंच पाऊं, तो मेरे पास मंडी तक पहुंचने के लिए सड़क नहीं है, साधन नहीं है, तो मेरी प्रोडक्ट का क्या होगा, क्योंकि ये तो पेरिशेबल आइटम जो होती है, तो उनको तुरंत बाजार चाहिए, तो ये भी बहुत सुविधा हुई है उसके लिए
1: जी।
0: और जब ये MSP की बात होती है, तो MSP अब कहा कि आप जाके किसान अपनी फसल, जरूरी नहीं कि किसी को, भाई जिसको जो कीमत दे रहा है किसान को, जितनी दे रहा है, और जिसके पास वो जाके खरीद ले,
1: हो जाता है।
0: नहीं खरीद लीजिए जाके जितना रेट है। तो ये विपक्ष जो कहता रहा, जो किसान आंदोलन हुआ, उन्होंने MSP की बात की, तो वो उससे 4 कदम आगे चले। तो वंचित वर्ग में फिर है कि पढ़ाई है उनकी, पहले लोगों को लगता था कि अगर बेटी पैदा हो गई तो क्या होगा, अब किसी को नहीं लगता। सुकन्या समृद्धि योजना है, लड़कियों को वर्दी है, लड़कियों को सब कुछ। और दूसरा, अगर मान लीजिए अब जो असंगठित क्षेत्र था, जहाँ पर ये वंचित वर्ग जिसकी आप बात कर रहे हैं, क्योंकि उसके पास कोई स्किल, कोई एजुकेशन कुछ नहीं था, या उसके पास अपना पारंपरिक हुनर भी, कौशल भी नहीं है कोई, तो खैर कौशल विकास मंत्रालय भी खोला गया और कौशल विकसित किया जा रहा है। तो अगर उसके पास कुछ भी नहीं, तो वो किसी मान लो फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो ये भी सरकार ने सुनिश्चित किया, जो नए 4 लेबर कोड आए हैं, कि अगर कोई असंगठित क्षेत्र में है और काम कर रहा है, स्पेशली महिलाएं हैं, तो उनका वेजेस तय कर दिए गए हैं कि आप इससे कब वेज पे बिल्कुल काम नहीं करवाओगे
1: जी।
0: तो ये आप देखिए कितनी अच्छी बात है।
1: हाँ।
0: फिर दूसरा, अगर महिला आपके यहाँ काम कर रहे हो, तो आप उसको घर पहुंचाने की व्यवस्था भी करेंगे, फैक्ट्री आपकी करेगी, तो ये भी एक अच्छी बात है। अब सैनिटरी पैड पर देखिए, लड़कियों की जो सबसे बड़ी एक समस्या होती है, कि वैसे इसको कहा गया था कि ये बातचीत करने के, लेकिन ये भी 1 रुपए में जन औषधि केंद्र में सैनिटरी नैपकिन मिल रहा है लड़कियों को, किशोरियों को, तो आप सोचिए महिलाओं को, तो ये भी
1: बहुत बड़ा,
0: हम इसको एक अगर देखे तो एक तरह से ये भी एक सशक्तिकरण की ओर एक बड़ा कदम है। पिंक टॉयलेट्स हैं, महिलाओं के लिए अलग से अच्छे शौचालय बनाए गए हैं, तो ये ऐसी चीजें हैं जो आपको, अगर हम किसी मैनेजमेंट स्कूल की बुक देखें तो उसमें ये चीजें नहीं दिखेंगी, लेकिन पिछले 12 साल में जो इतनी छोटी छोटी चीजों को सोच के समझ के जिनके ऊपर काम किया गया, पिछले 12 साल में जनधन खाते खोले गए, डायरेक्ट बेनिफिट उनको मिल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ उनका कौशल विकसित किया गया,
1: और एक तरह से जो हमारी ट्रेडिशन है हमारे देश की, वो भी अलाइव,
0: मतलब कि हमारी एजुकेशन पॉलिसी जो मैकॉले ने जो लाया था, उसने व्हाइट कॉलर जॉब को बहुत प्रेफरेंस दिया था, पर ये जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जो सरकार की औद्योगिक नीतियां हैं, जो MSME आप देखिए ना, MSME सेक्टर में कितनी चीजें जो महिलाएं घर में बैठे बैठे शौक शौक में बना लेती हैं, जिनको ये शौक है, जिनके पास स्किल है, अपनी दादी नानी माँ से सीखा है, तो उसके लिए भी सरकार लोन दे रही है।
1: बिल्कुल,
0: तो ये बहुत महिलाओं का सशक्तिकरण। दूसरा, मैं आपसे कहूंगी कि जैसे मातृत्व वंदन है, वो योजना कितनी अच्छी है, जो मातृ शिशु रक्षा योजना है, तो ऐसी योजनाएं पहले था कि हाँ,
1: और एक्चुअली वो फिगर्स में दिखाई दे रहा है कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज जो अस्पतालों में अब हो रही हैं, उनका संख्या इतनी बढ़ गई है, 98% पे पहुंच गई है, और भी जो मॉर्टेलिटी रेट
0: जो
1: है,
0: बेसिक मेरी जरूरत है वंचित वर्ग की, अगर हम बात करते हैं कि रोटी कपड़ा और मकान
1: जी,
0: उनको प्रधानमंत्री आवास योजना में घर दिया जा रहा है
1: जी,
0: ठीक है, उनको जो राशन दिया जाता है, एक BPL जो है उससे बिलो में जो राशन मिलता है, ठीक है, वो आज नहीं तो कल कमाने लगेगा, वो भी बाकी समाज के साथ पेश मिलेगा, लेकिन जब उसको अपनी बेसिक जरूरतें पूरी हो रही हैं, तो उसको उसके लिए नहीं स्ट्रगल करना, इसलिए उसका जीवन स्तर आगे बढ़ा, और कितने करोड़ लोग नीलू जी गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं,
2: 25 करोड़
0: गरीबी रेखा से ऊपर उठे, और डिजिटल पेमेंट देखिए।

0: आप सारी दुनिया आज हमसे सीखना चाहती है भारत।
1: और ये जो डिजिटलाइजेशन की आप बात कर रही
0: हाँ,
1: हैं वो पूरे देश में है। आपकी
0: सब्जी
1: पेमेंट
0: वाला भी कहता है जी यहाँ पे पेमेंट कर दो, जो फूल बेच रहा है वो भी कहता है गोलगप्पे वाला
1: जी
0: टिक्की वाला।
1: व्यापक सशक्तिकरण है। अगर हम सामाजिक न्याय की बात करें, समावेशी विकास की बात करें, तो कुछ ऐसे आंकड़े हैं जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 71% बेनिफिशियरीज जो हैं शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ओबीसी फार्मर्स हैं। और मुद्रा योजना की अगर हम बात करें या जनधन योजना की बात करें तो 70% से अधिक जो अकाउंट्स हैं वो महिलाओं के हैं। सो आपको लगता है कि जो स्कीम्स हैं वो अच्छी भी हैं, लेकिन वो ज्यादा जरूरी है कि वो इम्प्लीमेंट बहुत कहें कि सिंसियरिटी से हुई है।
2: निश्चित रूप से मैं ये अनुभव अपना बताता हूँ। जहाँ मैं अभी गया था, पिछले दिनों जगदलपुर गया था, जगदलपुर का नाम सुनते ही बस्तर सोचते हैं लोग नक्सली प्रभावित था। नक्सली इलाके में कोई सरकारी कर्मचारी जा ही नहीं सकता था, स्कूल जला दिए थे, जो जंगल में जो लोग थे उनको सारी चीजें नहीं मिलती थी। अब वहाँ के जो प्रोडक्ट हैं, जो वहाँ ट्रेनिंग दी जा रही थी और बिल्कुल एक संस्थागत रूप में सब कुछ लाया जा रहा है वहाँ पे, कि जो कैंप लगे थे नक्सल समस्या खत्म हो गई, तो जो सुरक्षा बलों के कैंप थे उसको सेवा केंद्र में बदला जा रहा है। अमित शाह जो गृह मंत्री हैं वो खुद हमारे साथ थे, उनके साथ मैं भी था। वहां मैंने देखा कि जो जंगल के प्रोडक्ट हैं, से इमली बहुत होती है, अब इमली वहां पे जो तोड़ा अब वो बिचौलिए सब खाते थे और जैसे थे जाता था। अब वो मशीनें लगी हैं, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है कि इमली को कैसे आप पैकेजिंग करो, 500 ग्राम के, 1 किलो के छोटे पैकेजिंग बिल्कुल एकदम उसको, और उसके बीज हटने चाहिए, उसका ये होना चाहिए और बिल्कुल शुद्ध ऑर्गेनिक बिना किसी केमिकल के, और उसकी बहुत डिमांड है। एक वहां महुआ बहुत होता है, फ्री में चुनते हैं। अब महुआ और बाकी जो श्री अन्न है मिला करके इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बन रहे हैं उसके, तो मार्केटिंग की एक सोच का अंतर आया है,
1: एक अवेयरनेस क्रिएट हुई।
2: अवेयरनेस नहीं, सोच का अंतर ये है कि जब देश आजाद हुआ था तो हमने ये मान लिया था कि ये तो ट्राइब्स हैं, ये जैसे हैं वैसे ही खुश हैं, इनमें हमें छेड़छाड़ नहीं करनी, इनको हमारे डेवलपमेंट जरूरत नहीं, इनको हमारे स्कूल नहीं चाहिए, इनको हमारी बिल्डिंग नहीं चाहिए, इनको गाड़ी नहीं चाहिए, इनको जहाज नहीं चाहिए, इनको कुछ नहीं चाहिए, इनको ये जंगल में ही खुश है। अब आपने उनको छोड़ दिया तो उस जंगल में नक्सली घुस गए। अब जो चेंज आया है कि सारी सुविधाएं वो जंगल में रहे, जहां है जैसे जी रहे हैं रहे, लेकिन सारी सुविधाएं हम पहुंचाएं और उनके जो चीजें हैं वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट तक भी जाए, बाकी जगह भी जाए,
1: विकास और उनके बच्चे पढ़े भी अगर वो चाहे, शिक्षा वहां पे पहुंची।
2: एकलव्य स्कूल का उन्होंने नाम लिया कि आदिवासी बच्चे।
1: अच्छा, आप जो सोच की बात कर रहे हैं नीलू जी, यहाँ पे मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि जो टर्मिनोलॉजी भी यूज की गई है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, कितनी खूबसूरत है कि रिकॉग्नाइज कर रही है सरकार की एस्पिरेशंस है उन लोगों की और उनको पूरा करने के लिए ये पॉलिसी मेजर्स उठाए जा रहे हैं।
2: वो यही है कि जब आप सिंसियरली देखते हो कि जिले हैं तो कौन कौन से जिले देश में जो है वो पिछड़े, पहले होता था पिछड़े राज्य की बात, लेकिन अगर आप देखोगे केरल में भी तो केरल कहें कि वहां बहुत साक्षरता है, वहां महिलाओं का सशक्तिकरण है, ये है, तमाम चीजें हैं, लेकिन वहां भी कुछ जिले जो है पीछे रह जाते हैं। और जब बिल्कुल आप पिछले जो हो गए छत्तीसगढ़ का, तो छत्तीसगढ़ के कुछ जिले बहुत अच्छे हैं। तो जो जिले पीछे छूट गए हैं वो किन किन मापदंडों पे छूटे हैं, वहां क्या क्या करने की जरूरत है। अब वो जब हो गया तो जिले के भीतर ब्लॉक हैं, तो अब 500 ब्लॉक्स के अलग चल पड़ी है वहां पे। यानी कि जब समग्र और समेकित विकास की आप बात सोचते हो कि अंत्योदय, जो उन्होंने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय जी का था कि कोई छूटे न पीछे, ये जब आपकी सोच होती है तो जितने लोग छूटे हुए हैं सबको आप चुनते हो, क्यों छूट गया, क्या कमी है, क्या हम लगाएं कि यहाँ पे आ जाए, वो चीजें हो रही है।
1: सर्जना जी, आप भी कुछ कहना चाहेंगी?
0: देखिए, मुझे जो सबसे अच्छा 2-3 चीजें लगती हैं, एक है विरासत के साथ विकास
1: जी,
0: जो स्लोगन है वो बहुत बढ़िया लगता है मुझे, कि हम अपनी परंपराओं को, अपनी ट्रेडिशंस को बचाते हुए विकास की राह पर चले। ऐसा विकास ना हो जो हमें हमारी जड़ों से अलग कर दे। तो हमारी जड़ों से जोड़ने का जो विकास है वो, ये सोच बहुत अच्छी है। अगर मैं अपनी जड़ से उखड़ कर कहीं बहुत उन्नति करती हूँ, अपने समाज से, अपने रीति रिवाज से, अपनी परंपराओं से, तो वो विकास एक दिन जाकर मुझे दिल को बहुत दुखी करेगा। लेकिन मैं अपनी जड़ों से भी जुड़ी हूँ, अपनी परंपरा से, अपनी संस्कृति से, और उसके साथ मेरा विकास हो रहा है। अब एक चीज मैं और कहना चाहूंगी कि यूनेस्को धरोहर में अब हमारी टेंजिबल एंड इनटेंजिबल कितनी सारी चीजें आ गई। आप सोचिए, हमारा गरबा, हमारी दुर्गा पूजा, हमारी दिवाली, हमारे बहुत सारी चीजें हैं जो अब यूनेस्को की लिस्ट में शामिल होगी। और एक और सोचिए, पर्यावरण की दृष्टि में रामासर

0: जो आर्द्र भूमि जिनको हम बोलते हैं, अब वो 100 होने वाली है,
1: हाँ
0: 99
1: हाँ
0: तो हो ही चुकी, हो गई
1: हंड्रेड
0: शायद,
1: हो
0: 100 हो
1: हंड्रेड
0: गई
1: हो
0: है।
1: गई
0: और ये
1: है।
0: सब चीजें युवाओं को भी
1: हाँ,
0: प्रेरित करती है
1: ये
0: कि हमारा
1: प्रेरित
0: समग्र विकास जो है ना विद मेरे विरासत के साथ, तो ये एक बहुत 12 साल की एक उपलब्धि है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर्जना जी, नीलू जी, आप आए और आपने हमें इतनी खूबसूरती से समझाया कि जो 4 स्तंभ जो माने गए हैं वर्तमान सरकार द्वारा विकास के, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, उनके सशक्तिकरण के लिए क्या क्या किया गया है पिछले 12 सालों में और आगे भी क्या हम उम्मीद कर सकते हैं। बहुत बहुत
0: सोनू
1: धन्यवाद।
0: जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमें आमंत्रित करने के लिए।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे सशक्तिकरण से समृद्धि की ओर बढ़ते भारत पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार नीलू रंजन और सर्जना शर्मा। परिचर्चा का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
4: अभी श्रोता सुन रहे थे केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने पर विशेष द्विभाषीय कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:35 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे विविध भारतीय सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। तो आइए चलें मुंबई।
5: जन्म सन 1934 में कोलकाता में हुआ था। उनका परिवार कासिम बाजार पश्चिम बंगाल का रहने वाला था। बहुत बचपन में जब बासु भट्टाचार्य ने सत्यजीत रे की फिल्में देखी तो उनका फिल्मों से लगाव बढ़ गया। खास तौर पर 1956 में आई फिल्म अपराजितों ने उन्हें बहुत ज्यादा प्रभावित किया था और उन्होंने ये तय कर लिया था कि जीवन में वो कुछ ना कुछ तो ऐसा करेंगे कि फिल्मों में काम करने की स्थिति बन जाए।

बासु भट्टाचार्य जब मुंबई आए तो उनका मकसद था राज कपूर के साथ काम करना, क्योंकि आवारा और श्री 420 जैसी फिल्मों ने उन्हें बहुत ज्यादा प्रभावित किया था।

लेकिन मुंबई आते ही इत्तेफाक ये हुआ कि बासु भट्टाचार्य बिमल रॉय की फिल्म टोली में एज असिस्टेंट डायरेक्टर शामिल हो गए। सन 1958 में आई मधुमती और सन 1960 में आई फिल्म सुजाता में बासु भट्टाचार्य बिमल रॉय के सहायक निर्देशक रहे।

जाहिर है कि अब बासु भट्टाचार्य का फिल्म करियर धीरे धीरे अपनी दिशा ले रहा था। इसी बीच जाने माने गीतकार शैलेंद्र ने फिल्म बनाने का फैसला किया और इसके लिए उन्होंने चुनी एक अनमोल कृति, हिंदी

फिल्म तीसरी कसम का निर्माण शुरू हुआ और इसके लिए बासु भट्टाचार्य को बतौर निर्देशक चुना गया। जो बासु भट्टाचार्य राज कपूर के साथ फिल्में बनाना सीखना चाहते थे, आखिरकार उनकी फिल्म यात्रा एक तरह से राज कपूर

0: फिल्म तीसरी कसम का निर्माण शुरू हुआ और इसके लिए बासु भट्टाचार्य को बतौर निर्देशक चुना गया। जो बासु भट्टाचार्य राज कपूर के साथ फिल्में बनाना सीखना चाहते थे, आखिरकार उनकी फिल्म यात्रा एक तरह से राज कपूर के साथ ही शुरू हुई और उन्होंने फिल्म तीसरी कसम में राज कपूर को डायरेक्ट किया। तीसरी कसम के बनने में कई परेशानियां आईं। इस फिल्म का निर्माण एक तरह से संघर्षों से भरा रहा था, पर यह फिल्म हिंदी की एक कालजयी फिल्म साबित हुई। फिल्म तीसरी कसम को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार भी हासिल हुआ था।
1: चलत

देश विदेश में फिल्म तीसरी कसम की बहुत ज्यादा तारीफ हुई। इस बीच बासु भट्टाचार्य ने सन 1966 में ही एक और फिल्म बनाई, उसकी कहानी। मुख्य कलाकार थे अंजू महेंद्रू और दीना पाठक।

बासु भट्टाचार्य को ये समझ में आ गया था कि उनकी एक खास तरह की शैली है, फिल्में बनाने का उनका अपना एक खास मुहावरा है, और इसीलिए बासु भट्टाचार्य ने अपनी तरह का सिनेमा बनाया। मुंबई में फिल्म फाइनेंस कॉरपोरेशन के जरिए उन्होंने अपनी फिल्म बनाई अनुभव। साल 1971 में आई फिल्म अनुभव के मुख्य सितारे थे संजीव कुमार और तनुजा। बासु भट्टाचार्य की खासियत रही है वैवाहिक रिश्तों की जटिलता, और वैवाहिक रिश्तों के तनाव पर वो बहुत बारीक काम अपनी फिल्मों में करते रहे हैं। फिल्मों के जानकार ये कहते हैं कि बासु भट्टाचार्य ने जीवन में वैवाहिक संबंधों की पड़ताल पर एक ट्रायोलॉजी बनाई है, और 1971 में आई फिल्म अनुभव इसी ट्रायोलॉजी का यानी इस फिल्म त्रयी का पहला हिस्सा साबित हुई।

फिल्म अनुभव के गीत गुलजार ने रचे और इसका संगीत कनूर रॉय का था। गीता दत्त की आवाज में इस फिल्म के गाने जैसे दिल को चीर डालते हैं।

सन 1972 में फिल्म अनुभव को दूसरी सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल हुआ था। इस बीच बासु भट्टाचार्य ने एक फिल्म बनानी शुरू की डाकू, पर वो फिल्म पूरी नहीं हो पाई। अनुभव से जुड़ी एक दिलचस्प बात ये है कि शुरुआत में बासु भट्टाचार्य संजीव कुमार की बजाय इस फिल्म में प्राण को लेना चाहते थे। उन्होंने काम भी शुरू कर दिया था, पर उन्हें लगा कि संजीव कुमार इस फिल्म के लिए बेहतरीन साबित होंगे और उनका ये विश्वास रंग लाया। फिल्म अनुभव एक बेमिसाल फिल्म मानी जाती है।

जैसा कि हमने कहा, बासु भट्टाचार्य वैवाहिक संबंधों की जटिलता के एक अनमोल फिल्मकार हैं। अनुभव के बाद वैवाहिक संबंधों पर उनकी एक और फिल्म आई, आविष्कार। आविष्कार बड़े सितारों से सजी फिल्म थी। इस फिल्म में राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर ने काम किया था। एक बार फिर संगीतकार थे कनू।

राजेश खन्ना को इस फिल्म में सर्वश्रेष्ठ अभिनय का फिल्म फेयर पुरस्कार हासिल हुआ था। राजेश खन्ना की करियर की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सार्थक फिल्म मानी जाती है आविष्कार।

सन 1976 में बासु भट्टाचार्य ने फिल्म संगत बनानी चाही। हालांकि ये फिल्म पूरी नहीं हो पाई और सन 1979 में बासु भट्टाचार्य वैवाहिक संबंधों की पेचीदगी पर अपनी तीसरी फिल्म लेकर आए गृह।

अनुभव, आविष्कार और गृह प्रवेश, ये तीन ऐसी फिल्में हैं जिनके जरिए बासु भट्टाचार्य वैवाहिक संबंधों की जटिलता की जांच करते हैं, उसकी पड़ताल करते हैं और उसके अलग अलग आयामों को सामने लाते हैं। संजीव कुमार उनके प्रिय सितारे थे, वही फिल्म गृह प्रवेश में नजर आए, साथ में शर्मिला टैगोर और सारिका। गुलजार ने इस फिल्म के गाने लिखे थे।

वासु भट्टाचार्य की फिल्में अपनी कहानी, अपनी जटिलता और अपने संगीत के लिए खास तौर पर याद की जाती हैं। वासु भट्टाचार्य ने बहुत ज्यादा फिल्में नहीं बनाई, लेकिन उन्होंने जो फिल्में बनाई वो अपने आप में संपूर्ण हैं। वो ऐसी फिल्में हैं जो जीवन के यथार्थ को दर्शाती हैं। सन 1986 में उनकी एक फिल्म आई पंचवटी। पंचवटी में दीप्ति नवल और सुरेश ओबेरॉय मुख्य सितारे थे। सार्थक फिल्मों की दुनिया में फिल्म पंचवटी एक महत्वपूर्ण फिल्म के तौर पर याद की जाती है। यहां एक बात और आपको बता दें, सन 1979 में वासु भट्टाचार्य निर्माता बने और उन्होंने सई परांजपे की फिल्म प्रोड्यूस की स्पर्श। नसीरुद्दीन शाह और शबाना आजमी के बेमिसाल अभिनय वाली फिल्म स्पर्श समानांतर सिनेमा आंदोलन की एक बेहतरीन फिल्म मानी जाती है।

0: सच आपकी संस्था से जो मैंने पाया है वो मैं कभी बता नहीं पाऊंगी।
1: और आपका आना संस्था के लिए कितना फायदेमंद हुआ है ये मैं आपको बता नहीं सकता। बहुत खुश हैं आजकल बच्चे, जैसे पहली बार उन्हें ममता मिली हो।
2: सन 1997 बासु भट्टाचार्य ने अपनी आखिरी फिल्म बनाई आस्था। मुख्य सितारे थे रेखा, ओमपुरी और दिनेश ठाकुर।

20 जून 1997 को इस असार संसार को छोड़कर एक लंबी यात्रा पर चले गए बासु भट्टाचार्य। बासुदा इस दुनिया से विदा हो गए, पर रह गया उनका सिनेमा, उनका वो सिनेमा जो मानवीय संबंधों की पड़ताल करता है। ये वो सिनेमा है जो अपनी तरह से निराला है और इसीलिए लोग इन फिल्मों को खोज खोज कर देखते हैं और एक फिल्मकार के रूप में बासु भट्टाचार्य को याद करते हैं। वैसे बासु भट्टाचार्य का सबसे बड़ा योगदान कुछ फिल्म समीक्षक तीसरी कसम को मानते हैं। तो अब आपसे विदा लेने से पहले तीसरी कसम में कही गई ये

0: पास जाना है।
1: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था जानी मानी निर्माता निर्देशक बासु भट्टाचार्य पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान।

0: उत्पादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

नमस्कार साथियों, मैं हूं आरती श्रीवास्तव। प्रस्तुत है छाया गीत। हवा के साथ नींद करवटें बदलती है, आंखों आंखों में बात करती है, जर्द पत्तों के बीच ढूंढती है खुशबू वो, फूल तो सूख गए वो कहाँ समझती है, मन की दहलीज पर रखकर चराग यादों के, खत वो चुपके से अंधेरे में रोज पढ़ती है। वो कोई शोक हसीना नहीं है, पर यूं ही कभी कभी उदासियों के बीच हंसती है। ये अभी कौन सा मौसम जगा गया उसको, गुलाबों इत्र की खुशबू से वो महकती है। दर्द से इश्क लड़ाने की उसको आदत है, गम के सहरा में खड़ी तितलियां पकड़ती है।

मुलाकातों का ये मौसम, तेरी आंखों में डूब जाने का मौसम, रंगों में सिमटी हुई तू जब आती है मेरे सामने, तो कायनात में बिखर जाता है बहारों का मौसम। और जब दिल की वीरानियां तेरे ख्यालों से गुलजार होती हैं, तो बहुत भाता है तेरी यादों का मौसम। मेरे इश्क के तमाम रंगों को ओढ़कर जब तू आती है सामने, तो मेरी नजर का ख्वाब बन जाता है तेरी खूबसूरती का मौसम।

स्याह रातों में, दिन के उजालों में, एक तेरा चेहरा ही नजर आता है सभी नजारों में। हर तरफ यही अफसाने हैं कि हम तेरी अदाओं के दीवाने हैं। कभी काली घटा को ओढ़कर दिन में तू निकलती है, तो कभी झिल मिलाती हुई शब में तू चांदनी सी बिखरती है। वो तेरे पैरहन के अंदाज, वो तेरे हुस्न के जलवे, तेरे कदमों पर सिर झुकाकर चांद भी करता है तेरे सजदे। बेनूर सी है मेरी जिंदगी तेरे बिना, करता हूँ मोहब्बत तुझसे मैं बेपनाह।

अंतराल के बाद एक बार फिर से स्वागत है छाया गीत में। कुछ कहानियां अधूरी सी, चंद मुलाकातें पूरी सी, बड़े हसीन दिन थे वो, खूबसूरत सी थी वो रातें, हाथों में हाथ डाले करते थे हम जब ढेर सारी बातें। चांद का नूर तुम्हारी आंखों में झलकता था, काली घटाएं लहराती थी जुल्फों में, ढलते ढलते शाम कुछ यूं तुमसे लिपट जाती थी, जैसे रात की आगोश में कोई कली सी खिल जाती थी।

अदाएं भी हैं तुझ में, है अंदाज भी सबसे जुदा। हुस्न की मूरत है तू, तू ही है मेरा जहां। कभी बेमौसम बरसात सी तू मेरे वजूद को भिगो जाती है, कभी अनकही किसी बात सी तू मुझे मदहोश कर जाती है। खामोशी की भी जुबां होती है, ये सुना था मैंने, तेरी आंखों को पढ़ा जब इस बात को माना मैंने। तेरे होने से ही है फूलों में खुशबू, तेरे होने से ही है हवा में जादू। तू है जैसे एक हसीन गजल या फिर कोई एक महकता सा कंवल।

एक सुबह हो तुम धुली धुली, एक शाम हो तुम मदहोश सी, एक कतरा हो तुम शबनम का, एक सितारा हो कहकशा के दामन का, एक मुकम्मल हुस्न तुम्हारा परंपरा में सिमटा हुआ सा, कुछ कुछ हया की चांदनी में लिपटा हुआ सा, दिल लुभा रही है तुम्हारी हर एक अदा, इश्क को जैसे दे रही हो सदा, फूलों की खुशबू हो तुम या कोई फूल ही है मेरे रूबरू, चांद की किरण कहूँ या चांद हो तुम हूबहू।

0: अपनी दोस्त आरती श्रीवास्तव को छाया गीत समाप्त करने की दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: यह है विविध भारती।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारत।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूलें कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का

0: समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है।
1: देशर प्रधानमंत्री भव्य दायित्व ग्रहण करवा दिन
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पदभार संभालने के बाद से राष्ट्रीय हित में कई कदम उठाए हैं। इस महीने उन्होंने लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने का रिकॉर्ड बनाया। मैं सभी नागरिकों की तरफ से इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई देती हूं। मैं कामना करती हूं कि वे देश के लोगों के हित के लिए निरंतर काम करते रहें और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार करने में राष्ट्र का नेतृत्व करते रहें।
1: यह मोर आंतरिक कामना।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया।
3: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास। इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
0: बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त के रूप में 18,880 करोड़ रुपए जारी किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसान को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री कोलकाता में कल INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रह का अनावरण करेंगे। इन पोत में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल विश्व भर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट UG 2026 की पुनः परीक्षा कल आयोजित की जाएगी। ये पुनः परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। इस पुनः परीक्षा में 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। महाराष्ट्र के परभणी जिले के मनवथ तालुका में आज एक निर्माणाधीन मंदिर का एक हिस्सा गिरने से कम 5 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और लगभग 40 अन्य घायल हो गए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने प्रत्येक मृतक के परिवार को 5,00,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। चेन्नई में भारत ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। भारत ने 29वें ओवर में 1 विकेट पर 224 रन बनाकर जीत हासिल की। 5 विकेट लेने वाले प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और मौसम विभाग ने कल पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 2 दिनों तक असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।